0: तो ये सारे चीजें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो

0: खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये
1: मतलब
0: काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। या इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पे आप जाएं, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल सस्मट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा
1: सुरक्षित
0: मजबूत रहेगा
1: रहते
0: और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पे जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है, डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी

0: देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें, ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है। और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पर कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाज़ार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाज़ार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाज़ार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पे करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है।

0: जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए, एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका

0: जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं
0: बिल्कुल
1: होती है।
0: तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
2: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी सलाद सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
2: जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
2: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहां कहां खेती होती है, कहां कहां इसको किसान भाई लगा रहे हैं। तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में भी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
2: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
2: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में

0: में बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तोड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, अच्छा। नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है, तुड़ाई के बाद भुट्टो को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में

पहुंचाएं या जहां भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है।

0: हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयूयू सवौर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबीकॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि,

0: हाय, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए।

0: ये घरेलू उपचार में
1: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
0: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
1: जी,
0: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना?
0: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां दी, उनमें से बहुत सी जानकारियां फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: उन्नत कृषि। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर। आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में। मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर। तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है।
1: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में

0: पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूं के भांति धान को उगाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
1: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
0: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारी धान किसान भाई खेती करते हैं वह पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं। उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है। और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
1: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शस्त्र क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और शस्त्र क्रियाओं के बारे में बताएं।
0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल

0: प्रति हेक्टेयर है, और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो ओजपूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितने बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह हिलाएं। इससे स्वस्थ एवं भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ़ और स्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है, उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद 1/3 जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को बराबर बराबर भागों में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
1: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूद के तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमीडा क्लोरपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा व्यस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरोन 3G या कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है। यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं। ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है। आवश्यकतानुसार किनोलफॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है। यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तिया पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झोलसा रोग है। यह बीमारी

0: जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी की कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें, और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की जो आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग एक माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्कृत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
2: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। अब बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बोने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य की किरणें की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपशील प्रजातियों में गौतम, ऋचार्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है।

0: जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरों के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है। तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपसिल किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है। इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170 से 175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचार्या है। यह बौना प्रभेद 155 से 160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज क्षमता 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है। यह बौना प्रभेद बोरों में 160 से 170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की। अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे। कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
0: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहाँ पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में 1 हेक्टेयर के 10वें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए क्रामेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले पहले पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में 1 दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं कि किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
0: बोरों के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। और बीज दर हम लोग को 1 हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बीज बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 1 वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएँ तो वहीं पुनः रोपनी कर देने चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं शस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह जो रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.125

0: लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बारूद में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखा कर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज के किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है, लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं, उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं, इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी ले के हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं, और ये इस तरह का जो अधिनियम है ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब,

0: उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है?
1: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवांशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवांशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्स है, मिक्सचर है। तो ये उसको भी एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है
0: जी। और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
1: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं, और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है। तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं। सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं
0: जी। अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
1: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला एक है कि एक खेत में से दूसरे खेत के, एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरे, इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे, अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी, एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप

0: इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो, तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं, या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है, तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है।
1: जी
0: तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूंकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात ये है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए, या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन

0: कर सकें।
1: जी, ध्यान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उस उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि उसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे फिर थ्रेश करेंगे उसको अच्छे से सुखा लें। जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हर रोज की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें

0: बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हाँ, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु जी।
0: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसे बता दीजिए।
1: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, धान बिहार की एक प्रमुख फसल है और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा, वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों, हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेके 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है
0: जी।
1: तो इसके अलावा जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है, और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही भंडारण न होने की वजह से हो जाती है
0: जी। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
1: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो, वो है नमी। तो जैसा हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है। अच्छा। तो उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं।

हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे खराब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर

0: कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू का होता है और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में खराब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी
0: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे के धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी ना हो, जिस वजह से फफूंद या कुछ और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो ना पनपे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
0: जी बिल्कुल, नमी देखिए, जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: दूसरे, जो बीज बीज की खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें, क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं। इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें, और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज बीज को अगर हमें भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पर उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से, जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
1: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें?
0: जी बिल्कुल, धान का भंडारण की, जब आप पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है, तो उसके बाद फिर आता है कि धान के भंडार जहाँ पे करना है भंडारण, वो जगह का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमी ना आती हो, थोड़ा ऊंचा उसका फर्श हो, उस तरह की
1: मतलब
0: हम
1: जमीन से थोड़ा ऊपर।
0: जमीन से थोड़ा ऊपर रहे और नमी वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसमें देख लें, उस कमरे में, जिस कमरे में भी आपको भंडारण करना है, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो, उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको, दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो

0: तो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों, खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम जरूरत के हिसाब से उनको जब जरूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पे हमें धान का भंडारण करना है, पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से, अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा, और वहाँ पे साफ सफाई कर लें। बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखें कि जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का, या जो आपको बेचना है बाद में, जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किसमें धान को
1: कंटेनर।
0: रख,
1: हाँ
0: कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप, अगर आपके जूट के बोरे बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें। या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका
1: जी,
0: इस्तेमाल
1: गांव
0: कर
1: में हमने
0: सकते
1: देखा
0: हैं।
1: है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं,
0: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर
1: और
0: सकते
1: आजकल
0: हैं।
1: स्टील के भी है।
0: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है, बिन है, उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे, तो उसकी एक परत लगा देंगे, तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा
1: नहीं
0: नहीं
1: रहेगा
0: रहेगा।
1: जी।
0: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खौलते पानी में डाल दें।
1: अच्छा
0: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म
1: सूक्ष्म
0: जीव
1: जीव वो
0: होंगे
1: मर
0: वो ख़त्म हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसका उनको उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
1: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस
0: हाँ,
1: बोरों का।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से, जैसे मैंने बताया खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है, टंकी होता है, उसमें एक एक लेयर डालते जाएं और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते
1: और
0: हैं।
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है
0: हाँ,
1: भंडारण।
0: आयुर्वेदिक गोलियां भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो इस हमें
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
0: हाँ, कर्पूर की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियां हैं, माचिस की डिब्बियां हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये माचिस की तिल्लियां ले लें, तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
0: बीच
1: डाल
0: बीच
1: सकते
0: में अगर टंकियों में रखेंगे तो, क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो
1: बाद
0: कीड़ों
1: में
0: को
1: जी।
0: लगने से बचाता है, और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है।
1: जी
0: तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: जी तो किसान

0: डॉक्टर साहब, हमने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
1: जी किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन हम
0: रेडी टू फूड यार,
1: रेडी टू, हाँ मतलब वो खाने के लिए
0: रेडी टू ईट कह सकते हैं,
1: रेडी टू ईट। तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहाँ पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट। उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा। तो बीज में भ्रूण सही भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका सही नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई एक चीज और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसके उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं। उसमें फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई
0: धान के
1: भंडारण के लिए, जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पे, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से इससे बीज को हम बचा सकते हैं
0: जी।
1: और इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी कर, फ्यूमिगेशन भी किया जाता है जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का। उसके लिए धूमीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं। और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि धूमीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका

0: 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें, और ध्रुवीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल खराब नहीं होगा और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा
1: सुरक्षित
0: रहेगा,
1: रहेगा। जी
0: सुरक्षित भी रहेगा।
1: जी तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं, तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए अपने इन धान को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें, पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें, बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन। और साथ ही हर रोज़ की तरह हम एक और खास विषय लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हाजिर हैं, वो है हमारा धान में समेकित कीट प्रबंधन। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर किरण कुमारी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि धान जो है, अगर खाद्यान्न की बात करें, उसमें प्रमुख फसल है। हमारे बिहार की बात करें तो लोग जो है चावल बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो जहां तक बात होती है खेती की, धान की खेती उसी अनुसार करना होता है जहां पर मांग कितना है, जितना मांग हो उतना ही खेती हो। तो हमारे बिहार में इसका मांग ज़्यादा है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत मात्रा में की जाती है। और जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो ज़रूरी होता है कि हम अपने फसल को कीट पतंगों से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे फसलों को हानि पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय, जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाज़ार में से ले जाकर, वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार हमारा विषय है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम से कि धान में लगने वाले हानिकारक कीट कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो सभी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और सभी फसलों की तरह धान फसल पर भी कीड़ों का प्रकोप होता है। और जो जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है, वही कीड़ों के बढ़ने में भी सहायक होता है। और कीड़ों की संख्या जुलाई महीने के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर महीने में इनकी संख्या बहुत चरम पर पहुंच जाती है, और फिर नवंबर महीने के बाद से धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। धान के प्रमुख जो कीड़े हैं जो धान फसल को हानि पहुँचाते हैं, वे हैं तना छेदक, केसवर्म, गंधी कीट, पत्ती लपेटक, हरा एवं भूरा मधुआ, सैनिक कीट एवं ग्रास हॉपर।
0: जी, तो मैम तना छेदक कीट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये किस प्रकार हानि पहुंचाता है धान की फसल को, और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं?
1: जी, तना छेदक कीट का पिल्लू गंदापन लिए हुए उजला रंग का होता है, और या पीला हरा भी होता है। तितली जो इसकी वयस्क होती है वो तितली होती है, और उसका अगला पंख नारंगी पीला रंग का होता है। उन पंखों पर एक एक काला धब्बा होता है। इस कीट के पिल्लू धान के पौधों में छेदकर उसकी गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिसे पौधे का गाभा सूख जाता है एवं खींचने से आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत

0: केंद्र भी कहते हैं। बालियां निकलने के समय भी ये भी तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, और जब बालियों के अवस्था में इस कीट का प्रकोप होता है तो बालियां केवल सफ़ेद नज़र आती हैं और दाने खखड़ी हो जाती हैं। इस कीट से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 FS का 5 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। साथ ही खेत की सफाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। जड़ की सफाई करने से भी कीट की संख्या में कमी हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप 10 या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप, जिसे प्रकाश प्रपंच भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन ट्रैपों पर, यानी फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप पर, वयस्क मॉथ जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, इसमें फंसकर वो मर जाते हैं।
1: जी,
0: रोपनी के पहले पत्तियों के ऊपरी छोर को काटकर खेतों में रोपनी करना चाहिए, जिससे तना छेदक के कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
1: जी,
0: ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार धान के पत्तियों पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों का अधिक प्रकोप होने पर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
1: तो ये बातें हो गई हैं श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, तना छेदक कीट की, कि आप कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप की बात की मैम ने, और इसके साथ ही कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे ये हानि पहुंचाता है, इसके बारे में भी बात की मैम ने। मैम, अब आते हैं केश वर्म, जो कि आपने बताया कि मुख्य ये कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं। तो केश वर्म कीट कैसे हानि पहुंचाता है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे, ये भी बता दें, और साथ ही साथ इसका प्रबंधन हम कैसे करें।
0: जी, केशवर्म कीट, इसे बुढ़िया कीट भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे बुढ़िया कीट भी कहते हैं, और भनभनिया कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये पानी लगे खेतों में ज़्यादा लगते हैं और पत्तियों की हरियाली को खा जाते हैं। कभी कभी पत्तियों को लपेट कर नली जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर उसकी जो क्लोरोफिल हरियाली होती है उसको खाते रहते हैं, और ज़्यादा प्रकोप होने पर खेत बिल्कुल उजला दिखने लगता है। क्योंकि ये हरियाली खा जाते हैं इसलिए वो उजलापन जैसा हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए एक बड़ी रस्सी लेकर उसे किरासन तेल में डुबा देना चाहिए। फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर धान के खेत में एक तरफ से दूसरे तरफ तक पौधे से सटाकर चलाना चाहिए, जिससे केशवर्म कीट खेत के पानी में गिर जाते हैं, और फिर पानी को खोलकर बहा देना चाहिए, जिससे कीट वो खेत से बाहर आ जाते हैं।
1: जी, तो केशवर्म कीट के बारे में आपने जाना, और अब बात करते हैं मधुआ कीट और पत्र लपेटक कीटों के बारे में मैम, कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी, मधुआ कीट दो तरह का होता है, एक तो हरा मधुआ और दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जब इनका अधिक आक्रमण हो जाता है तो इनके पौधों से रस चूसने के कारण पौधे सूख जाते हैं। भूरा मधुआ पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं। ये पौधों की धड़ से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी नजर आती हैं और दूर से जला जैसा दिखता है, और जिसके कारण इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, यानी दोनों हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ दोनों के प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, और रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या कोई भी नीम आधारित दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्र लपेटक कीट पिल्लू, इसके पीले हरे रंग के होते हैं। ये कीड़े पत्तियों के किनारे को रेशम जैसे धागों से लपेटकर अंदर ही खाते रहते हैं, और जब इनकी अधिक प्रकोप होता है

0: तो पौधे ठूंठ और बीमार जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सभी पौधों को ये खा जाते हैं। इस कीट से प्रभावित खेत के फसल की ऊपरी पत्तियों की कटाई कर देना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव फसलों पर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपरी छोर पर ही ये ज़्यादा खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट कीटनाशिका 1.5 ml प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 50 cc का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी, तो मधुआ कीट के बारे में आपने जाना, साथ ही पत्र लपेटक कीट के बारे में, और अंत में कुछ और कीट बाकी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं मैम। जैसे कि गंधी बग के बारे में आपने कहा था, सैनिक कीट के बारे में आपने कहा था, और ग्रास हॉपर, ये भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं धान की फसल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही हानि और प्रबंधन के बारे में जानकारी दें।
0: जी, अभी तक तो जो भी कीट मैंने बताया, तना छेदक, केसवर, मधुआ कीट, पत्र लपेटक, ये सब ज़्यादातर पौधों के पत्तियों को खाते हैं। और अगला है गंधी कीट। गंधी कीट ये जो है, जब बाली लग जाती है तो दुग्धावस्था में ही ये बालियों से उसमें जो दूध बनते हैं उस दूध को चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। और गंधी कीट जो है वो हरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जहाँ पर ये दानों में रस चूसते हैं वहाँ पर भूरा दाग दिखाई पड़ता है। इसे हम वो पहचानते हैं कि गंधी कीट का आक्रमण हो गया है, और इससे जो है विशेष प्रकार का दुर्गंध तो निकलता ही है, वो भी ये इसका यह पहचान है। और इस कीट से प्रबंधन हेतु नीम बीज चूर्ण का जो है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे गंधी कीट या का उसका जो है प्रबंधन हो जाता है। और बहुत प्रकोप की बहुत अधिकता में इमिडाक्लोपीड 17.8 ml का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी,
0: और सैनिक कीट है, सैनिक कीट भी जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बाली लग जाते हैं, तब ये जो बालियों पे ऊपर चढ़कर इनको काट गिराते हैं। और सैनिक कीट जो है इनको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। इस कीट के जो पिल्लू होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क पतंगा जो होता है मौथ, जिसे मौथ भी कहते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। और ये जो कीट होते हैं अंधेरा होने पर पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और दिन में ये पौधों की जड़ों में या जमीन के जो दरार होते हैं उसमें छिपे रहते हैं। और इसके नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 sg का जो दानेदार कीटनाशी है उसका 2 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रास हॉपर जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं, 40 से 50 ml लंबा होता है। इसका प्रकोप अगस्त से अक्टूबर महीने में देखा जाता है। ये पत्तियों को किनारे से काट कर खाते हैं। ग्रास हॉपर के प्रबंधन हेतु खेत में पानी भर देने से इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। मेढ़ की खुदाई कर देने से भी इसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो नीम बीज चूर्ण है उसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। टीन पर कोल्टार लगाकर भी खेतों में चलने से ग्रास होपर टीन पर, वो जो कोल्टार लगा रहता है उस पर आकर सड़ जाते हैं, जिससे वो कुछ तो मतलब सटकर मर भी जाते हैं, और जिससे कि इनकी संख्या भी कम हो जाती है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की कि आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ध्यान रखिए कि आप फसलों से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की देखभाल करें, और उस समय जो कीट लग रहे हैं आप उन्हें पहचानें और उसका तुरंत से तुरंत प्रबंधन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: उन्नत कृषि। श्रोताओं, स्वागत है आपका 90.8 FM ग्रीन में और मैं लेकर आई हूं आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान बहुत सारे यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो आसानी से अपनी खेती कर सकें। तो आइए आज इसी यंत्रों के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर बात करें एक यंत्र यानी कि धान की कटाई के लिए जो बेहतर यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, आज उनकी बारे में बात करेंगे हम। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंकज कुमार जी। ये हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि अभियंत्रण और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी कटाई के लिए जो बेहतर मशीनें, आज का हमारा जो विषय है, इसके लिए मशीनों के प्रकार कितने होते हैं?
1: ये जो धान काटने के लिए जो मशीनें अभी आ रही है उसमें तीन तरह का मशीन है। जैसे एक स्वतः चलने वाली मशीन, जिस मशीन पर अपना इंजन लगा हुआ होता है, 5 से 5.5 HP का इंजन उस पर लगा हुआ रहता है, जो वह स्वतः चलती है और उससे 1 घंटा में 1 एकड़ की कटाई आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसका मूल्य लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अलग अलग कंपनी के हिसाब से आता है। और इस मशीन से हम 1.25 मीटर चौड़ाई का फसल काट करके, जैसे मजदूर एक खेत में पत्तन लगाते हैं, उसी ढंग से एक लाइन से पत्तन लगा देता है ताकि मजदूर बाद में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में वो अपना धान को उठा सके। और दूसरा मशीन है किसानों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, रीपर कंबाइंडर। रीपर कंबाइंडर का क्या है कि कटाई भी करे और धान का बंधाई भी करे। जैसे मजदूर को काटने के बाद बांधना पड़ता है, उसमें अलग मजदूर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि काटने के साथ साथ वो मशीन बंधाई का भी कार्य करता है। और इसका मूल्य लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है। और इस मशीन से भी आप 1.25 मीटर चौड़ाई का आप कटिंग एक कर सकते हैं और 1 घंटा में ये भी मशीन 1 एकड़ की कटाई करती है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर हमने इन मशीनों के बारे में जाना सर। और इसके बाद अगर छोटे किसान, बड़े किसान और मंझोले किसानों को 3 भाग में बांटा जाता है तो इनके लिए मुझे लगता है कि लागत के अनुसार जो अलग अलग मशीन अवेलेबल होंगे तो उनके बारे में हम आपसे जाना चाहेंगे।
1: छोटे किसान के लिए जो ये रीपर स्वतः चलने वाली मशीन है, इसको रीपर भी कहते हैं, हार्वेस्टर भी कहते हैं, ये एक छोटे किसानों के लिए है जो कि छोटे छोटे खेत में आसानी से इसका ये कार्य करता है। और रीपर कंबाइनर भी छोटे किसान के लिए है। और मध्यम किसान के लिए जैसे ट्रैक्टर चालित रीपर या हार्वेस्टर कह सकते हैं, इससे आप 1 घंटा में आप 2 एकड़ से 3 एकड़ तक आप इसका कटिंग आप कर सकते हैं। ये भी मशीन लगभग 7 फीट चौड़ाई को काटते हुए एक लाइन में पत्तन, जिसको आप कहते हैं धान का जो पत्तन लगाते हैं आप अपने खेत में, वो आपको लगा देगा। अच्छा। और इस मशीन से आप ट्रैक्टर के आगे ये मशीन लगा हुआ रहता है और ये जिस टाइप से आप कल्टीवेटर को उठाते हैं और गिराते हैं उसी ढंग से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि फसल कहाँ से काटना है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और बड़े किसान के लिए जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर भी 2 तरह का होता है। जैसे एक कंबाइंड हार्वेस्टर है जो ट्रैक्टर चालित होता है और दूसरा होता है क्या कि स्वतः चलने वाली, उस पर 110 HP का इंजन लगा हुआ होता है। तो इस मशीन से अगर आप कटिंग करते हैं तो लगभग 7 फीट से 8 फीट का चौड़ाई का ये मशीन आता है, इससे आप फसल काट सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर का जो चक्का होता है वो कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन में लग जाता है नीचे, और उस मशीन को ट्रैक्टर के इंजन को हार्वेस्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और वो ट्रैक्टर चालित हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और इससे आप, इस मशीन से जब आप कटिंग करेंगे तो इसमें आप 3 से 4 हेक्टेयर

0: यानी कि पर डे आप उससे आप कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कटाई भी कर सकते हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर का मतलब होता है एक साथ फसल की कटाई, थ्रेसिंग और क्लीनिंग, यानी कि तीनों काम एक साथ करके आप सिर्फ भूसा जो है वो खेत में वो डंठल के नुमा वो गिरा देता है। और ट्रैक्टर चालित होने के चलते इसका थोड़ा कार्य क्षमता कम है, क्योंकि स्वतः चलने वाली जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है वो 110 एचपी का होता है। इससे 13 फीट से लेकर के 14 फीट तक कटिंग एक समान इससे किया जा सकता है। ट्रैक्टर चालित रीपर से आप जो है 60-70% लेबर आप जो है बचा सकते हैं। 40-50% आप अपने जो मैनुअल जो आप माने कटाई करते हैं उससे आप जो है इसके कंपेरिजन में आप 40-50% कॉस्ट को कम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है, जो ट्रैक्टर ऑपरेटर कंबाइंड हार्वेस्टर जिसको आप कहते हैं, वो 3-4 हेक्टर पर डे आप इसे कटाई करिएगा। और सेल्फ प्रोपेल जो कंबाइंड ये होता है कंबाइंड हार्वेस्टर होता है जिसको कहते हैं आप स्वतः चलने वाली मशीन, इससे 5-6 हेक्टर पर डे आप उससे कटाई कर सकते हैं। कटाई, थ्रेसिंग और क्लीनिंग यानी सफाई आप कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अभी हम जानना चाहेंगे कि अगर कार्य क्षमता की बात आती है तो 1 घंटे में इन मशीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी?
0: 1 घंटे में जैसे कि आप हम बताए ना 5-6 हेक्टर पर डे, यानी कि पर डे का मतलब होता है 8 घंटा में आपको 5-6 घंटा 5-6 हेक्टर आपको 8 घंटा में आपका इसको कटाई करेगा।
1: अच्छा।
0: और इसका इस मशीन का मूल्य लगभग 16-17 लाख रुपया होता है। और ट्रैक्टर ऑपरेटेड में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर होता है इसका थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि आपको 6-7 लाख रुपया ट्रैक्टर का होता है और लगभग और 8-9 लाख रुपया तक कंबाइन हार्वेस्टर का होता है। अगर दोनों को अगर आप लगा देते हैं तो लगभग उतना ही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब भी आप फसल की कटाई करेंगे, रबी या खरीफ या जो भी गर्मा में आप मक्के का, तो आप बीच में जो आप समय बचता है जब कटाई नहीं होता है, तो ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर को अपने शेड में रख करके और ट्रैक्टर को नीचे उतार करके आप सालों भर उससे आप काम ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप 6-7 लाख जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है वो आपका काम करता रहेगा, और लगभग 7-8 लाख रुपया में जो कंबाइन हार्वेस्टर उस पर है वो आपको सिर्फ कटाई में ही काम करेगा।
1: तो यहाँ पर धान की कटाई के लिए जो मशीनें हैं उनके बारे में जाना, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई और इसके कार्य क्षमता के बारे में बताया, और छोटे और बड़े किसानों के लिए कौन कौन से मशीन हैं अवेलेबल हैं बाजार में वो बताया, इसके परिचालन मूल्य के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे जुड़े किसान भाइयों बातें हम लेकर हमेशा आते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और आगे किसान भाइयों आपसे मुलाकातें होंगी, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि। उन्नत कृषि।
1: किसान भाइयों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ, लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि, और आज भी आप सभी के लिए कुछ उपयोगी बातें होंगी यहां पर, और आप सभी को कुछ अच्छी बातें कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मैं लेकर आई हूं यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार जी को, जो है सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब हमेशा देखा गया है जब खेती की बात आती है और कहीं ना कहीं जल उसका एक मुख्य यूँ कहें जैसे हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो खेती का कहीं ना कहीं ये एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो रही है, और इस सिचुएशन में जल जो है प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सर सबसे पहले तो जल प्रबंधन के तरीके हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो उन सारी बातों

0: को हम यहाँ पर रखेंगे, अपने किसान भाइयों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जल प्रबंधन होता क्या है?
1: जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
0: जी।
1: जल पौधों की समस्त जीवन क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में फसलों की सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है। हम अगर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन का तात्पर्य असिंचित क्षेत्रों में अब जो अपवाह जल नियंत्रण है, जल संरक्षण, जल भंडारण तथा उचित कृषि विधियां अपनाकर इसके दक्षतापूर्ण उपयोग करने से है। वहीं जहां पे वर्षा अधिक हो रही है या वाटर लॉक सिचुएशन है, वहां पे अधिक पानी के निकास एवं उचित कृषि पद्धति अपनाने से है तथा सिंचित क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने, अंतःस्रवण, अपवाह एवं बाष्पन से होने वाली जन हानि के नियंत्रण से है, जिससे लगातार सिंचाई से भूमि पर विशेष कुप्रभाव हुए बिना उपलब्ध जल से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। और ये हम कह सकते हैं कि सिंचाई जल की व्यवस्था वास्तविक रूप से मृदा पर निर्भर करती है। मृदा किस तरह से गठित है, मृदा की संगति क्या है, मृदा में पोरोसिटी क्या है, सिंचाई हमें कितनी सिंचाई देनी है, सिंचाई की क्या गहराई होनी चाहिए एवं सिंचाई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जल का प्रबंधन निर्भर करता है।
0: तो सर ने बताया कि सिंचाई की विधि भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जल प्रबंधन के लिए। तो सर आपने बताया जल प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर कि जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, जल प्रबंधन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जल ऐसा चीज है जो पौधों को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति हम करते हैं उस पौधे को सूखे से बचाने के लिए, अगर ठंडा का दिन है तो उसे पाले से बचाने के लिए, मृदा एवं वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, एवं वो मिट्टी जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है उस मिट्टी को लवण से दूर, लवण की मात्रा को कम करने के लिए भी हम जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं, जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से, हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, जिस तरीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
1: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूअस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ, और जहाँ जल निकास नहीं होती है, वहाँ अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो, लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है, लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है। विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है।

0: मिलती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूअस सैचुरेशन का, जहाँ पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है। और श्रम की मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है, लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो, वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है।
1: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये। और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य, बातें जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए, जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है
1: जी।
0: और ये अनौक्षीकृत स्थिति होती है, इस कारण स्फूर, लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है, तो ये देखा गया कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था, उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब की, हमें जल की मात्रा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं?
0: देखिए, क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेष कर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
1: नमी रहना अनिवार्य है
0: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांतिक अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये 4 अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30 से 40% की कमी आती है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप

0: धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
1: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं, जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या

0: जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाउ से एक जुताई एवं डिस्क हैरो से दो बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल रहना रखें अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है, जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है, जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से। अगले विषय, अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ, और हर रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सभी के सामने हाजिर होता है तो डेफिनेटली आप सभी के लिए कुछ खास बातें हाजिर होंगी। तो आज ऐसे ही एक विशेष जो हमारा विषय है वो है धान में खरपतवार प्रबंधन। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और वैसे मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोतागण, आप सभी को बता दें कि जब हम खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपने फसलों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें, और ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अपनी फसलों को खरपतवार से कैसे बचाएँ और किस तरीके से बचाएं, तो इसे ही कहते हैं खरपतवार प्रबंधन। और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर एस के चौधरी। तो सबसे पहले जब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है, परंतु यहाँ इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर औसत से बहुत कम है, और तो और बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है इस खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी। धान की खेती प्रायः 3 प्रकार की जमीन में की जाती है। बिहार में इस खेती 25% ऊपरी जमीन में, 25% मध्यम जमीन में और 40% निचली जमीन एवं 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी होने के कारण या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है, तथा किसान सही समय सही किस्म के चुनाव, बिचड़े की तैयारी इत्यादि ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है तकनीकी ज्ञान से कि किस जमीन में किस प्रकार की किस्म का चयन करें, कितना खाद दे, कितनी पानी की व्यवस्था करें, उसका कीट व्याधि का सुरक्षा किस प्रकार करें, इस सब में तकनीकी किसान को अभाव रहता है। और तो और मेरा आज का विषय है खरपतवार प्रबंध।

0: खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा है जो अगर नहीं करेंगे, अगर समय से नहीं किए तो इसमें उपज में बहुत कमी हो सकती है। और तो जो धान सीधी बुआई होता है उसमें 100% तक का यील्ड जो उपज है वो कम हो जाती है,
1: मतलब कि जो 100% यील्ड है वो
0: कम
1: उपज
0: हो
1: कम हो जाती है अगर इसका प्रबंधन ना करें तो।
0: तो
1: और इसलिए हमारे किसान भाइयों को घाटा भी हो सकता है अगर ये व्यवसायिक तौर पर अगर फसलों को बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं बाजारों में तो। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इसलिए 100% यील्ड के लिए आपको खरपतवार प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप आगे भी कुछ कह रहे थे।
0: बोल रहे अभी जो खरपतवार प्रबंधन है इस पे अगर समय से कर लिए तो उपज बढ़ेगा ही, साथ साथ इसका क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है।
1: हाँ।
0: जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस
1: कम
0: दूसरे से
1: हो,
0: हाँ कम हो जाएंगे।
1: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है, जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
0: तो हमारे बिहार में मुख्यतः दो प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथिलीन, जो कि ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप उसमें डाल दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम 35-30 ईसी के नाम से मिलता है।
1: अच्छा।
0: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में नमी होने पर छिड़काव अवश्य रूप से करें, या अगर ये दवा अगर बाजार में नहीं उपलब्ध है तो इसका एक अलग है ऑक्सीड्राइजिल जो मार्केट में टॉप स्टार या रेफेट नाम से मिलता है, ये 50 ग्राम प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें, इससे बहुत हद तक खरपतवार नहीं निकलेंगे खेत में। उसके बाद धान जब अंकुरण हो गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक यह है जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है, तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद 4-5 खरपतवार नाशी है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है बिस पेरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट में नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है, ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80-100 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15-20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 ईसी के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सी सल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर, ये चौड़ी पत्ती या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरान, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है, ये 1820 ml प्रति एकड़ नहीं तो 50 ml प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ मोथा कुल के लिए है, ये भी 25 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब तो थोड़ा दवा महंगा होगा, एक

0: सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा है 2,4-D इथाइल ईस्टर, जो मार्केट में 38 EC के नाम से मिलेगा। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए है। इसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए 20 से 25 दिन के बाद। ये जितने भी दवा के नाम बताएं, ये धान में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है।
1: सीधी बुआई के लिए,
0: उस सीधी बुआई कहने का मतलब इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, चाहे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, बस धान में ये प्लॉइंग करके आप उसमें या तो चाहे लाइन स्वइंग से या नहीं तो स्प्रे मतलब छिड़काव विधि से आप धान लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: धान की दूसरी विधि है लगाने की, नर्सरी पहले लगाइए 20 से 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग करिए, जो कि कदवा करके खेत में लगाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग में 20 से 25 या 25x25 या 15x25। इसी हिसाब से दूसरा विधि है धान के नर्सरी विधि से लगाने के लिए, खरपतवार नाशी अलग है। अगर आप धान को नर्सरी लगा लिए हैं, 20 से 25 दिन हो गया है, तो आप उसको उखाड़ के और मेन फील्ड जो कदवा किए हैं उसमें आप लगाएंगे, उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग अलग होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो मार्केट में मीचेट नाम से मिलता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 EC के नाम से मार्केट में मिलेगा। मीचेट 50 EC, इसका जो दर है 1.5 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये आप स्प्रे करिए 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 4 से 5 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब आप चार ट्रांसप्लांटिंग कर देने के 4 से 5 दिन के बाद आप इसको बालू में मिक्स करके और अच्छे तरीके से मिला के इसको खेत में छिड़काव करें। और ये ध्यान रखिएगा जो खेत में 1 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तब इसको आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बहुत सारे जो खरपतवार है वो इससे नहीं निकलेंगे, इसके निकलने से बाद। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं मिले तो पेट्राक्लोर है, जो मार्केट में रेफेट नाम से मिलता है, 750 ग्राम AI है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर को। ये भी 3 से 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, धान का 3 से 7 दिन के बाद लगाने के बाद इसका स्प्रे करिए। दूसरा तीसरा दवा है ऑलमिक्स, जो कि इसमें 2 खरपतवार नाशी का कॉम्बिनेशन है, पहला क्लोरीमिरॉन और दूसरा मेट सल्फिरॉन। ये एक जो डब्बा में आता है 4 यूनिट का रहता है, वो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 15 से 20 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग में स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और ये भी बताया कि कब करना चाहिए, दवाओं के बारे में बताया कि कौन कौन से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि बिस्पैरबिक सोडियम के बारे में कहा, इथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में कहा। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं इसका लाभ हम जानना चाहेंगे। आपने बताया जैसे कि 100% यील्ड होता है, इसके अलावे कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: खरपतवार नियंत्रण करने से बहुत से ही लाभ हैं। खरपतवार क्या है, जो किसान भाइयों नहीं लगाते हैं वो अपने आप जो उपज जाता निकल आता है उसको खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार खेत में रहेगा तो इसका एक तो लाभ ये है, सबसे जो प्रमुख लाभ है इसका उपज बढ़ेगा। दूसरा अगर लाभ देखेंगे तो दूसरा जो आप खाद देते हैं, जो आप उर्वरक देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो क्या होता है, अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो खरपतवार का नेचर या चाहे आदत होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने का। तो आप जो खाद देंगे धान के लिए वो क्या करेगा, खरपतवार ले लेगा। तो आपको समुचित जो उपज होना चाहिए जितना खाद देने से, उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है और तो और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट, धान को नहीं जाके चल जाएगा खरपतवार में। तीसरा फायदा ये है, जो धान में प्रमुख जो होती है उसका नेचर होता है टिलरिंग देने का। टिलरिंग तभी देगा जब उसमें स्पेस होगा, जगह होगा। और खरपतवार क्या करता है, जो बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई खेत में बहुत तेजी से होता है, तो वो धान को बहुत कम स्पेस देता है, जिससे कि टिलर निकलने का जगह ही नहीं छोड़ता है। और उसके अलावा बहुत सा है, जैसे पानी दिए, पानी की जो धान को चाहिए वो खरपतवार ले लेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फायदा है, अगर खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो ये सारे जितना भी लाभ है वो खरपतवार को न जाके धान को, धान अगर धान में

0: अगर आप खाद देंगे अगर बिना खरपतवार का नियंत्रण किए हुए, तो उसमें कंट्रोल नियंत्रण होने के बजाय ज्यादा और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इसीलिए ज़रूरत है खरपतवार प्रबंधन की, और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप खरपतवार प्रबंधन यानी कि आप फसल लगाते हैं तो आप टाइम टू टाइम समय पर आप देखते रहें कि फसलों में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए इसका प्रबंधन ज़रूर करें और ख़ास ख्याल रखें अपने फसलों की सुरक्षा का। तो और भी बातें और भी विशेष चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के सामने, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं कि इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी, या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से ज़रा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानी

0: परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं।
1: माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव, जो कि जागरूकता

की कमी की वजह से होती है और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं, जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गाँव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गाँवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।
वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में

0: बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव, फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से डीपीएस की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से राजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, राजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचे। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं। आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं जो जीवित चीज़ें हैं उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह एआई का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो एआई एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में एआई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो एआई है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में एआई का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए पहले की बात कि एआई का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: मतलब उसमें अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
2: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो एआई जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए एआई नया है तो उनके बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन ना समझे तो चीजें आसान हो जाएगी।
2: बिल्कुल, ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था, पिछले

0: 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर अलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो, तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो

0: सीरियल क्रॉप, यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईटी के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनी हो या गूगल का एआई मोड पे आप जाएं, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो एआई जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा एआई जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पे जो खेती कर रहे हैं वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है, डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में

0: लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पर पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AI कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये AI आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में AI को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने AI के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो AI के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। AI यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाजार में मांग आने वाली है। AI चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स

0: आधार पर करते हैं। तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो,

मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान

0: अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं
1: होती। बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
0: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
2: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं। और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
0: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
2: जी जी।
0: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
2: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं।

0: हैं 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए।

0: बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से, एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी।

0: लिखते हैं,
1: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
1: जी।
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
1: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
1: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
1: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
1: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
1: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
0: जी वो तो है,
1: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
1: जी,
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
1: जी।
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
0: क्या बोलेगा?
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं, इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं
1: जी।
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए मोबाइल आपका सेवक है।

0: मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त ये है के अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए

0: सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज, इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
1: चल चल चल गेंद रोक।
2: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो और तेज दौड़ो।
3: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
4: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, बस गोल हो गया,
6: दिल खुश हो।
0: कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: अरे कहाँ फंस गई?
9: ए, इधर क्या देख रहे हो?
8: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
10: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
11: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
9: चलो,
8: लेकिन
10: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
12: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
8: हाँ, ठीक है,
12: कोशिश करते हैं।
8: हाँ,
12: निकल गया।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
8: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
12: जी बाबा।
8: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
12: तो क्या इनाम देते हो?
8: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे, पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
12: पूरा एक महीना हो गया है।
13: हाँ,
12: आज फैसला।
13: तुम्हें क्या लगता है?
12: महाराज आ रहे हैं।
13: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।

0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
1: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
2: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बहुत।
1: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
3: सही बात है।
1: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
3: बिल्कुल सही कहा,
1: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
3: उनका अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
0: देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
2: बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
4: महाराज की
5: जय हो,
4: महाराज की
5: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए

0: वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा, सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा, सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो, साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते।

0: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
1: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
2: चूहे भाई,
3: क्या
2: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
2: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है, उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
2: चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
2: चलो।
1: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
0: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
0: ठीक है, जल्दी करो, जल्दी।
1: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
8: जी
7: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
8: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
7: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें, पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें, बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों

0: दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा।
3: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
4: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है। और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं। और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है। बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है। और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है। और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है। ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
3: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
4: बैंगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और 2 जो जैसे क्यारी बनती है तो 2 लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज, क्योंकि बैंगन की बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है, और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौध है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में।

0: यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रोपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में इसकी बुआई करते हैं, और एक महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रोपाई करते हैं।
1: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रोपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटाश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
1: जी। और रोपाई की विधि क्या होती है?
0: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाते हैं, उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रोपाई करते हैं। तो रोपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है, तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं। और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रोपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की

0: भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं दो, उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे। और जब शरतकालीन जो फसल होता है, जब हार्वेस्ट होने लगते हैं, फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है, उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को 1-1 सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर 1-1 सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद 1 सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव

0: खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
0: बैंगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते

0: होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो
1: जी
0: उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उसकी उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है उसके लिए दूरी कम होती है, और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूंकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो अब जितनी भी है किस्में जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात ये है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग है तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए

ना रखें, और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी, पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उस उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए।

0: के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें

0: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास

अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंतसी और पंजाब लाल। वही मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती है, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिए रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। अगर बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे

0: को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं, लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपने खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
1: बिल्कुल, तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
0: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है, तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में, और वो मिट्टी कहाँ है जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं, तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं, और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़, ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
1: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रासायनिक

0: की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घनजीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है, जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
1: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: बाढ़
1: का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचे। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा

0: द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फ़िलहाल रवि फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रवि फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हां, दलहनी फसलों की आज बात होगी और ख़ास तौर पर आपकी आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवि दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपने मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
3: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दोगुना किया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व तो जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व तो हमने जाना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें, तो उन्हें जो अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है?
3: यदि हम उन्नत तकनीकों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीजोपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रवि दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं?
3: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
0: जी।

0: स्तर पे की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
1: अच्छा।
0: तथा उत्पादकता में स्थायित्व आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
1: तकनीक
0: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबुली चना।
1: अच्छा।
0: मसूर में यदि हम छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186 एंड PUSA 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
1: अच्छा। और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ।
0: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हों तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों, चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
0: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे PSB कहते हैं 15-20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवि दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका।
0: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध, रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90-95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियाँ जिनके 100 दाने का वजन 12-15 ग्राम होता है की बीज दर 50-60 केजी प्रति हेक्टेयर होती है, तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियां जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80-85 केजी प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का

0: दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में यह मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में उटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15-20% बढ़ा देनी चाहिए।
1: अच्छा, इन फसलों की सस्ती क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
0: जी, सस्य क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33-40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की। तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15-20 किलोग्राम, फॉस्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15-20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1-1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैंडी मिथिलिन 1-1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1-2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है।
1: अच्छा।
0: संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है।
1: जी।
0: यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फॉस्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फॉस्फोरस और PSB के प्रयोग से फॉस्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी। तो इसका महत्व तो क्या है इसमें?
0: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
1: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर मतलब नहीं, हमारे छोटे किसान
0: ये कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
1: अच्छा।
0: और इसकी बुआई क्षमता केवल 2 व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर। और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 केजी प्रति घंटा है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद बिनुअर आता है, सक्शन बिनुअर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 केजी प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल, मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट

0: प्रबंधन, जिसमें रोग रोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कृषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोग रोधी प्रजातियों का चयन करें। सूत्रकृमि, जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 kg प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 gram कार्बेंडाजिम प्लस 2 gram थीरम प्रति किलोग्राम सीड, अथवा ट्राइकोडर्मा 4 gram और 1 gram कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। निमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4 to 5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें, इसमें 35 to 40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अभिप्राय यह है कि 1 to 2 लार्वा प्रति मीटर पक्ति में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें, और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकटा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतःशस्य क्रियाएं एवं मिश्रित खेती से उकटा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.2 to 0.3% अथवा मैंकोजेप 0.02% का छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। आदि इन सभी उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि कैसे आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं रवि दलहन फसलों की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।
2: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information,

0: About vaccination, visit your nearest health facility center.
1: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक

0: हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
11: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
13: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने

के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांधकर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: देश जीतेगा।
1: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
3: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा

कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60

0: दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। खुद का कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: आप सभी बच्चों को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे इस समय मजे कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले रहे होंगे और अपने घर परिवार में रहकर अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ खूब सारी बातें करते होंगे। मजा आ रहा है ना आपको? हमें भी मजा आता है जब हम आपसे बात करते हैं। पता है बच्चों, आज हमारे साथ कौन है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हालांकि मेरा मन नहीं है ये बताने का कि कौन है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। पता है बच्चों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आस्तिक स्कूल में पढ़ते हैं जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आस्तिक की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आज वे आपके साथ मजेदार बातें करने के लिए

0: स्कूल बहुत ज्यादा।
1: अच्छा ये बताइए कि आपको अपने स्कूल की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आ रही है?
0: अपनी टीचर्स और वहाँ का प्लेग्राउंड।
1: प्लेग्राउंड की बात आई है तो फिर खेलों की बात भी याद होगी।
0: हाँ
1: तो आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है?
0: बर्फ पानी।
1: अच्छा बर्फ पानी, पर ये कौन सा खेल हुआ?
0: इसमें एक पकड़ने वाला होता है
1: और वो
0: बर्फ होता है और हम उससे बच के भागते हैं। और अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो वो बोलेगा बर्फ, तो वो जम जाएगा वहाँ पे, जब तक उसे पानी नहीं बोलेगा वो वहाँ से नहीं हिल सकता।
1: यानी कि जब कोई बर्फ बन जाएगा और स्टैचू फॉर्म में हो जाएगा और जब कोई दूसरा व्यक्ति आके उसे छू कर पानी ना बोले तब तक वो स्टैचू बना रहेगा।
0: हाँ, और जब कोई बच्चा 3 बार बर्फ बन जाता है तो उसके बाद उसकी बारी आ जाती है।
1: यानी कि दूसरे बच्चों को छूने की उसकी बारी आ जाती है। ये तो बहुत मजेदार खेल है। अगर हमारे बच्चों ने इस खेल को बहुत ध्यान से सुना है तो अपने घर में इस खेल को खेल सकते हैं। तो इस खेल को खेलने के लिए हमें शायद किसी मैदान की जरूरत ना पड़े। हम अपने घर में यूं ही वैसे ही बहुत भाग दौड़ करते हैं, तो ये बर्फ पानी का खेल भी हम अपने घर में आराम से खेल सकते हैं। अच्छा बच्चों पता है, जब स्कूल की बात आती है तो प्लेग्राउंड की बात आती है, यानी कि खेल के मैदान की बात आती है, और जब खेल के मैदान की बात आती है तो तरह तरह के खेलों की बात आती है। तो हमारे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर आप बच्चे भले ही न देख पाए लेकिन मैं और आस्तिक कोशिश करेंगे कि आपको उस खेल के मैदान में अपनी बातचीत के जरिए ले चलें। तो आस्तिक आप हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को ये बताइए कि इस तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यानी कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं?
0: 3 बच्चे लंगड़ी टांग नामक खेल खेल रहे हैं।
1: यानी कि लंगड़ी टांग का खेल वह खेल है जिसमें हम एक पैर पर दौड़ते हैं, है ना?
0: हाँ जी।
1: और
0: 2 बच्चे बातें कर रहे हैं। एक बच्चा ताली बजा रहा है।
1: शाबाश।
0: 5-6 बच्चे छुप रहे हैं।
1: हाँ, और इस छुपने वाले खेल को हम क्या कहते हैं?
0: छुपन छुपाई।
1: वेरी गुड, तो 5-6 बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अच्छा आस्तिक ये बताइए कि आखिर ये बच्चे कहाँ कहाँ छिप रहे हैं?
0: ये बच्चे दरवाजे के पीछे, झाड़ी के पीछे और पेड़ के पीछे छिप रहे हैं।
1: तो यानी कि हमारे प्लेग्राउंड में, यानी कि खेल के मैदान में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके पीछे हम छिप सकते हैं। तो ये तो बात हुई छुपन छुपाई के खेल की, लेकिन इस तस्वीर में और भी बहुत कुछ है। तो आस्तिक क्या आप हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को बताएंगे कि खेल के मैदान में और क्या क्या हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, खेल के मैदान में यहाँ पे एक पक्षी उड़ रहा है और 2 पक्षी दाना चुग रहे हैं।
1: तो ये जरूर कबूतर होंगे।
0: नहीं, ये मैना भी हो सकती है।
1: हाँ, ये गौरैया भी हो सकती है।
0: और ये मुनमुन भी हो सकती है।
1: मुनमुन दरअसल इनके तोते का नाम है। तो आस्तिक को अपने तोते की याद यहाँ स्टूडियो में भी आ गई। बहुत प्यार करते हैं आप अपने तोते से। अच्छा आस्तिक और बताइए कि इस तस्वीर में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं?
0: इस तस्वीर में एक बच्चा नल चला रहा है और दूसरी बच्ची पानी पी रही है।
1: और इस नल चलाने वाले उपकरण का नाम है हैंडपंप। इसे हम कहते हैं हैंडपंप, ठीक है? तो हैंडपंप को हमें चलाना पड़ता है, उसका एक डंडा सा होता है जिसे हमें उसे नीचे ऊपर करना पड़ता है और तब जाकर पानी निकलता है। तो 2 बच्चे हैंडपंप पर हैं, एक लड़का हैंडपंप चला रहा है और एक बच्ची पानी पी रही है। अच्छा हमारे खेल के मैदान में बच्चों के अलावा एक तो चिड़िया थी, ठीक है आस्तिक? और कोई और भी है जो चुपके से सब बच्चों को देख रही है। क्या आप बता पाएंगे कि ये कौन है?
0: ये बिल्ली है।
1: बिल्ली को भी बहुत मजा आ रहा होगा यूं बच्चों को खेलते हुए देखकर। अच्छा अगर मान लीजिए कि हम खेल में हार जाएं, आस्तिक आप कभी खेल में हारे हैं?
0: कभी कभी।

0: हारता हूँ।
1: और जब आप हार जाते हैं तो क्या आप रोते हैं?
0: नहीं।
1: ईमानदारी से बताइएगा।
0: नहीं।
1: कभी नहीं रोए?
0: नहीं।
1: अच्छी बात है। तो अगर हम कभी किसी खेल में हार जाएं तो हमें रोना चाहिए या नहीं?
0: नहीं रोना चाहिए। हमें हार ये कहता है कि और मेहनत करो, जीतोगे किसी दिन।
1: वेरी गुड, शाबाश। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हार ये बताती है कि हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो हमें खेल को खेल भावना के हिसाब से ही खेलना चाहिए। खेलना जरूरी है। अब आप खेल में फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए कि आप अपने किन दोस्तों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मैं अपने 3 दोस्तों के साथ खेल खेलता हूँ। पहले का नाम है गौरी, दूसरी का नाम है ओजस्वी, और तीसरे का नाम है वैभव।
1: अच्छा, और आप इन सब के साथ कौन से खेल खेलते हैं?
0: मैं इन सब के साथ छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और बर्फ पानी खेलता हूँ।
1: तो आप जब छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं तो आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में कहाँ जाकर छिपते हैं?
0: मैं अपने स्कूल के मैदान में ज्यादातर पार्क में छुपता हूँ।
1: लेकिन पार्क तो बहुत बड़ी सी जगह होती है। पार्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ आप जाकर छिप जाते हैं?
0: हमारे पार्क में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एक छोटा सा घर है। मैं कभी कभी उसके अंदर छुप जाता हूँ।
1: और कोई आपको पकड़ नहीं पाता?
0: नहीं।
1: कभी आप पकड़े नहीं गए छुपन छुपाई में?
0: नहीं।
1: तो छुपन छुपाई एक ऐसा मजेदार गेम है जिसमें हमें छिपना पड़ता है। पता है आस्तिक, एक बहुत मजेदार बात हुई। हमारे घर में 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मेरे भतीजे हैं। तो जो 2 भतीजे हैं, ये एक दिन मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तो जो सबसे छोटा वाला विशाल है, मुश्किल से 4 साल के हैं, और उन्होंने कहा हमें कि बुआ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ छिपना है, आप दोनों इधर आइए और यहाँ छिप जाइए। मुझे तो हंसी आई विशाल की बात पर कि इन्हें पकड़ना है और यही जगह बता रहे हैं कि हमें कहाँ छिपना है। लेकिन हम भी चतुर थे, जहाँ विशाल ने जगह बताई छिपने के लिए, हम वहाँ छिपे ही नहीं और हम जाकर छिप गए एक कमरे के दरवाजे के पर्दे के पीछे। और दरवाजे में था गुप्त अंधेरा और हमें ये पता था कि विशाल को अंधेरे से डर लगता है। अब विशाल इस कमरे में आए नहीं, क्योंकि अगर लाइट चली होती, रोशनी होती, तो वो कमरे में आते, दरवाजे के पीछे तुरंत हमें पकड़ लेते। क्योंकि सारे बच्चे अक्सर ये जानते हैं कि छुपने की कौन कौन सी जगह होती है घर में, लेकिन विशाल जो थे वो अंधेरे से डरते थे और इसलिए कमरे में नहीं आए। पता है आस्तिक फिर आगे क्या हुआ?
0: नहीं।
1: आगे इससे भी मजेदार किस्सा हुआ। विशाल अपने पिताजी के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि पापा आप उस कमरे में चलिए। तो पापा ने पूछा कि उस कमरे में क्यों जाना है, वहाँ तो कोई नहीं है, पापा आप चलिए तो सही। और विशाल अपने पापा के साथ कमरे में आए। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने अपने पापा से कहा पापा लाइट जलाइए। तो पापा ने कहा लाइट क्यों जलानी है, हम इस कमरे में रहने वाले थोड़े हैं। तो विशाल ने फिर जोर देकर कहा नहीं पापा आप लाइट तो जलाइए। पापा ने लाइट जलाई और तब विशाल ने तुरंत हमें दरवाजे के पीछे पड़े हुए पर्दे के पीछे हम खड़े थे और हमें तुरंत पकड़ लिया। पर हमने विशाल से कहा विशाल ये तो चीटिंग है, आपने पापा का सहारा लिया, आपको खुद ढूंढना चाहिए था। तो ये तो था हमारा खेल छुपन छुपाई का। आपके साथ भी ऐसे बहुत मजेदार किस्से हुए होंगे और जो हमारे नन्हे श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, वे भी अपनी पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई की जो गतिविधियां होती हैं, जो खेल होते हैं, जो तरकीबें होती हैं, उनके बारे में याद कर करके मुस्कुरा रहे होंगे। हम भले ही अपने नन्हे मुन्ने श्रोताओं को न देख पाए, लेकिन हाँ ये तो जानते हैं कि इस समय वे क्या कर रहे होंगे। तो ये तो थी खेल की बात, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें भागना दौड़ना पड़ता है। अच्छा, और कभी आप जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो थकते नहीं है क्या?
0: कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थक जाता हूँ।
1: और अगर हमें ये थकान महसूस होती है तो हमें अपने खाने पीने पर, यानी कि भोजन

0: ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए कि हम ऐसे कौन से खेल हैं जो हम कमरे के बाहर यानी कि आउटडोर गेम है बाहर खेलते हैं, और ऐसे कौन से खेल हैं जिसे हम अपने घर के भीतर भी खेल सकते हैं, तो मैं पूछूंगी और आज हमारे साथ हमारे जो अतिथि आए हैं आस्तिक जी वे बताएंगे। तैयार है आस्तिक?
1: बिल्कुल।
0: तो आस्तिक ये बताइए कि हम जब सांप सीढ़ी खेलते हैं तो इसे घर के अंदर खेलते हैं घर के बाहर खेलते हैं?
1: घर के अंदर खेलते हैं।
0: और जब हम लूडो खेलते हैं तो घर के अंदर खेलते हैं या बाहर खेलते हैं?
1: घर के अंदर खेलते हैं।
0: जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो घर के अंदर खेलते हैं घर के बाहर खेलते हैं?
1: हम घर के बाहर खेलते हैं।
0: कभी आपने घर के अंदर क्रिकेट खेला है?
1: नहीं।
0: नहीं। और अगर कभी खेलने की कोशिश भी की होगी तो कांच टूट जाएगा, खिड़की टूट जाएगी, सामान टूट जाएगा, इसकी डर की वजह से आस्तिक ने कभी घर के अंदर क्रिकेट खेलने को ट्राई नहीं किया। तो हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं वे कभी घर के अंदर क्रिकेट ना खेलें, बहुत सारा सामान टूटेगा और उषा दीदी की डांट पड़ जाएगी कि हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि क्रिकेट का खेल घर के अंदर खेलिए। डांट मुझे भी पड़ सकती है और डांट आपको भी पड़ सकती है। अब डांट किसी को भी पड़े बुरा तो लगेगा, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अब अगर हम बात करते हैं स्टापू की, तो इसे हम घर के अंदर खेल सकते हैं या बाहर खेलेंगे?
1: इसे हम घर के बाहर खेलते हैं।
0: अगर हम इस टापू को घर की छत पर बना लें तो हम घर में रहकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये घर के अंदर खेलना तो ना हुआ क्योंकि हम छत पर खेल रहे हैं। आस्तिक एक और मजेदार बात मुझे याद आई, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं?
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: तो हुआ यूं कि बहुत समय पहले की बात है, तो एक बार मैं और भाव्या खेल रहे थे। भाव्या 5 साल की बच्ची है और बेहद पतली दुबली है। तो एक दिन मैं और भाव्या खेल रहे थे और इतने में नित्या भी आ गई। तो नित्या ने कहा कि हम भी खेलेंगे। हमने कहा हम तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो नित्या ने कहा कि हम भी छुपन छुपाई खेलेंगे। इतने में आर्यवीर भी आ गए, आरना भी आ गई और रोहित भी आ गए। तो हमने कहा ठीक है तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो हम 5-6 बच्चे सब मिलकर छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। अब बाजी देने की बारी थी, यानी कि जिनकी बारी थी गिनती गिनने की और छुपे हुए बच्चों को खोजने की, वह बारी थी नित्या की। अब भव्या को छुपने की कोई जगह नहीं मिली, तो पता है हमने क्या कहा? हमने कहा भाव्या आप हमारे पीछे छिप जाइए, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और भाव्या पतली दुबली से हमारे पीछे छिप गई और नित्या उन्हें देख ही नहीं पाई। और जैसे ही नित्या हमारे पास से निकली और भाव्या ने नित्या की पीठ पर एक हाथ लगाया और कहा धप्पा, और नित्या फिर आउट हो गई। तो ये था मजेदार खेल छुपन छुपाई का। मैं जानती हूँ हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं वे भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आप बच्चों को करना क्या है, आप हमें अपने पसंद के खेल के बारे में लिखिए और हमें भेज दीजिए। भेजने का पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। मैं एक बार पता फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो आस्तिक ये तो बात हुई खेलों की, और स्कूल के खेल के मैदान में जो बच्चे अक्सर खेल खेलते हैं ये बात उसकी हुई, लेकिन हमारे पास दो बच्चों के खेलने की एक और कहानी है, आप सुनना पसंद करेंगे?
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों आज मैं अभी जो कहानी कहने जा रही हूँ और आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है गिल्ली डंडा। आस्तिक आपने कभी गिल्ली डंडा खेल का नाम सुना है?
1: नहीं।
0: कभी गिल्ली डंडा देखा है?
1: नहीं।
0: तो आस्तिक जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ना तो कभी गिल्ली डंडा खेल देखा और ना ही कभी गिल्ली डंडा को देखा। बच्चों गिल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें दो चीजें चाहिए, एक गिल्ली और एक डंडा। डंडा तो आप सब बच्चे जानते होंगे, यानी कि बांस का लंबा सा टुकड़ा जो बहुत मजबूत होता है। इस डंडे के साथ हमें चाहिए गिल्ली। गिल्ली एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, एक ढोलक नुमा टुकड़ा जिसके सिरे बहुत पतले होते हैं और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। पता है आस्तिक, इसमें

0: करना क्या होता है?
1: नहीं,
0: इसमें हम क्या करते हैं, गिल्ली को एक जगह रखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम गिल्ली जहाँ रखी जाती है उसके नीचे एक गड्ढा कर देते हैं। अब उस गड्ढे के ऊपर हम टिकाते हैं गिल्ली को और फिर हम उस गिल्ली के नीचे लगाते हैं अपना डंडा और गिल्ली को उछाल देते हैं और गिल्ली को उछालने के बाद हम उसे डंडे से मारते हैं और गिल्ली बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, गिल्ली को हम रखते हैं जमीन पर और जमीन पर रखने के बाद गिल्ली का जो सिरा होता है, जो पतला होता है, उस पर हम मारते हैं डंडा, गिल्ली उछलती है और उस उछलती हुई गिल्ली पर हम फिर से एक डंडा मारते हैं और गिल्ली को बहुत दूर फेंक देते हैं। जो हमारे बाकी साथी होते हैं, बाकी दोस्त होते हैं, वे सब इतनी दूर जाकर खड़े होते हैं ताकि वे गिल्ली को पकड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट के मैदान में हम गेंद को लपकने के लिए खड़े होते हैं। तो ये होता है हमारा गिल्ली डंडा का खेल। तो आज तक हम अपनी कहानी शुरू करें?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो बच्चों, ये कहानी है जीत और बबली की और उनके दोस्तों की। वे क्या खेल खेल रहे हैं? गिल्ली डंडा। एक दिन सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत ने गिल्ली को उछाला। पता है उसके बाद क्या हुआ?
1: नहीं।
0: उसके बाद सब लोग उसे पकड़ने दौड़े। गिल्ली तालाब के पार चली गई। गिल्ली बबली के पास जा गिरी। बबली ने गिल्ली उठाई। बबली उसे तालाब के पार फेंकने लगी। तो आज तक ये बताइए कि बबली ने गिल्ली को तालाब के पार क्यों फेंका?
1: बबली ने ऐसा इसीलिए करा जिससे कि वो गिल्ली उनके पास पहुंच जाए।
0: लेकिन पता है क्या हुआ आस्तिक? गिल्ली तालाब में ही गिर गई।
1: ओ।
0: गिल्ली तालाब में गिर गई। अब उस गिल्ली को कौन उठाए? सब गिल्ली को लेकर बहुत परेशान हो गए। बबली को तैरना आता था, तो बबली कहाँ गई होगी?
1: तालाब में।
0: शाबाश, वह तालाब में कूदी और गिल्ली ले आई। सब खुशी से चिल्लाने लगे। तो सब खुशी से क्यों चिल्ला रहे थे?
1: क्योंकि बबली ने उनके लिए तालाब में छलांग मार के गिल्ली उठा ली।
0: शाबाश, बिल्कुल सही बताया। बबली सबके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगी। बबली को गिल्ली डंडा खेलना आता है। बबली ने जोर से डंडा घुमाया और फिर क्या हुआ, गिल्ली फिर तालाब के पार चली गई। तो अब इसके बाद क्या हुआ होगा?
1: इसके बाद कोई गया, बबली फिर से तैर कर गई होगी। हाँ,
0: क्योंकि बबली को ही तालाब में तैरना आता था। तो बबली ने जैसे ही देखा कि गिल्ली वापस तालाब में चली गई है, तो उसने कहा, ओह, अब मुझे वापस तालाब में कूदना होगा, गिल्ली निकालनी होगी ताकि हम सब बच्चे मिलजुल कर गिल्ली डंडा खेल सके। तो अब आज तक ये बताइए कि अब आप गिल्ली डंडा का खेल खेल लेंगे?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और क्या आप गिल्ली बना भी लेंगे?
1: कोशिश करूँगा।
0: गिल्ली को छीलना पड़ता है, यानी लकड़ी के एक टुकड़े को हमें छीलना पड़ता है और उसे ढोलक की शक्ल देनी होती है, यानी उसके सिरे पतले होंगे और बीच का हिस्सा मोटा होगा। तो आप गिल्ली बना सकते हैं, डंडा आपके पास होगा और आप यह गिल्ली डंडा का खेल घर में तो बिल्कुल भी मत खेलना, बहुत डांट पड़ेगी। आपने जोर से डंडा घुमाया और गिल्ली गई बर्तनों के अंदर और फिर जो बर्तन एक एक करके गिरेंगे, उसके बाद आपकी अम्मा आप पे इतना चिल्लाएंगी कि ये क्या किया है, सारे बर्तन गिर गए, लाओ मैं तुम्हारी खबर लूं। तो फिर आप आगे आगे और आपकी अम्मा आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएंगी। ये सीन देखकर तो मुझे बहुत मजा आने लगा है अभी से कि क्या नजारा होगा कि बच्चा आगे आगे और उनकी माँ पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है। तो बच्चों, गिल्ली डंडा हमेशा घर के बाहर खेलिएगा और ऐसी सुरक्षित जगह पर खेलिएगा ताकि अगर गिल्ली किसी जगह पर गिरे तो किसी को चोट ना लगे, ठीक है? और गिल्ली डंडा कहाँ नहीं खेलना? तालाब के पास नहीं खेलना, क्योंकि अगर गलती से भी गिल्ली तालाब के अंदर चली गई तो वहाँ आपकी गिल्ली निकालने के लिए बबली तो होगी नहीं। तो अब आपको खोजना पड़ेगा एक ऐसे बच्चे को जिसे तैरना आता है, और अगर किसी बच्चे को तैरना नहीं आता तो फिर आपकी गिल्ली तो गुड़ुप करके तालाब के अंदर ही रहेगी, है ना? तो ये थी हमारी कहानी जो बहुत मजेदार थी, जिसका नाम था गिल्ली डंडा। अच्छा, आज से ये

0: बताइए कि अगर बबली को तैरना नहीं आता तो क्या होता?
1: अगर बबली को तैरना नहीं आता तो फिर गिल्ली पानी के अंदर डूब जाती।
0: और क्या बच्चे गिल्ली डंडा खेल पाते?
1: नहीं।
0: अगर बबली को तैरना नहीं आता तो गिल्ली तालाब के अंदर ही रहती और बच्चे नहीं खेल पाते। अगर आस्तिक मैं ये कहूँ कि तालाब के अंदर गिल्ली चली तो गई और बाहर नहीं आई, लेकिन तब भी बच्चे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, भले ही थोड़ी देर बाद खेलें, लेकिन वे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, ये कैसे होगा?
1: बहुत आसान है, वो किसी मोटी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसे गिल्ली की आकार में छील देंगे।
0: बहुत चतुर हैं आस्तिक। मैं भी यही सोच रही थी कि हम एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाएंगे, उसे छीलेंगे, ढोलक की आकृति जैसा बना देंगे और फिर हमारी एक नई गिल्ली तैयार हो जाएगी। आस्तिक, बहुत चतुर हैं आप। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी? और अगर आप बच्चों के पास भी अपने खेलों को लेकर कोई मजेदार किस्से हो तो हमें जरूर लिखिएगा। एक बात और वो ये बात है कि जब आप अपने खेल के बारे में लिखें तो उसकी तस्वीर बनाना न भूलें, ताकि हम भी तो देखें कि आपका खेल का मैदान कैसा है या आप कहाँ खेलते हैं। इस बहाने हम आपकी जगह को देख भी लेंगे, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: तो आपको आज की बातचीत में मजा आया?
1: बिल्कुल।
0: और हमें मालूम है कि आस्तिक के साथ साथ हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत मजा आया होगा। अब स्कूल की याद आ रही होगी, खेल का मैदान याद आ रहा होगा और याद आ रहे होंगे अपने प्यारे दोस्त। तो आज आस्तिक भी आपके दोस्त बन गए। तो यूं धीरे धीरे हम सारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे और आपस में खूब बातें किया करेंगे। प्रॉमिस? ठीक है, तो आपकी तरफ से मैं वादा करती हूँ आस्तिक के साथ, और आस्तिक अपना वादा खुद कहेंगे। आस्तिक, आप हमारे स्टूडियो आएंगे ना?
1: बिल्कुल।
0: तो आस्तिक ने भी आप बच्चों से वादा किया और हमसे भी वादा किया कि वे स्टूडियो जरूर आएंगे। तो हम अपनी आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, और जाने से पहले, विदा लेने से पहले हम आस्तिक जी का धन्यवाद देते हैं। आस्तिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: और हम विदा लेते हैं अपने नन्हे मुन्ने श्रोताओं से। अगली बार एक अच्छी कहानी, एक मजेदार कहानी और खूब मजेदार बातों के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे आस्तिक के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। होमवर्क भी कभी कभी कर लिया कीजिए, लेकिन खूब खेला कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहयोग विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
0: टीनू, मीनू,

0: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
14: नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सके, क्योंकि उन्हें पालने में लागत

0: ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे। और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें, आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के उपाय। जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है। उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है और उनके रोगों का उपचार कैसे करें उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान विभाग से और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीमार बकरी की जहाँ तक बात आती है तो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हम आदि तो नहीं होते हैं कि हम जैसे मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य कह देता है कि भाई मुझे बुखार लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे है, लेकिन बकरी बोल नहीं पाते हैं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये बकरी बीमार है और ये बकरी स्वस्थ है?
1: देखिए, पशुपालकों के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे ही आप पशु की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, आप खाना लगाते हैं, पानी देते हैं, उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुँह उधर सूख जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा, आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है, तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नजर आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था, जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड करते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
0: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं, इसके अलावे उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
1: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंड हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीजन में, ठंडे के सीजन में, और नाक से पानी आने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन ठंडी के दिनों में अधिकांश

0: बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है, और बहुत सारी बीमारी है। आप उसको शुरू से उस पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फूट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी है, तो उसको फूट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में। जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा। और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सबसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रत्येक 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
1: मतलब और जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावा भी कुछ और?
0: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, स्केरिस है, एक हिमोंकस कंटोर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है। तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डीवर्मिंग कीजिए। प्रत्येक 3 से 4 महीने पे इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप उसको डीवर्मिंग कराएं नियमित रूप से। पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डीवर्मिंग से बचा जा सकता है।
1: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
0: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप अब चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला बरसीम, काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा। और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसको 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीज़न में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप टीडेर या टिनिडाजोल के नाम से दवा आती है, तो उस दवा को, टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेवलॉन पाउडर आता है, नेवलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे, चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उस

0: को अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरेपी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, पेड़ के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी। तो ठंड हवा से बचाएँ, डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंडा हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताज़ी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
1: बाहर जानी चाहिए
0: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज़्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर पर्दा लगा दे लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
0: देखिए प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड। आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेटुंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फट गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेटुंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं। उसकी दवा आती है टॉपिक्योर हिमैक्स, यदि वो आप सही सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप ज़रूर अपने पशु को दिखवा लें, जांच करवा लें। और अभी जो है कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है। ठंडी से पहले ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फ़र्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जाना चाहिए?
0: देखिए फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया कहीं, हाँ, खून बह रहा, हाँ, है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए,
1: अच्छा,
0: बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को तो मीठा सोडा खिला सकते हैं, मीठा सोडा खिलाएंगे, आपको जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए,
1: अच्छा,
0: और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
1: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
0: देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
1: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते,
0: बीमार रहते हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आसातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुँच पाया। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपये का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आप अधिक 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
1: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब, आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी पशुपालक भाइयों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं लेकर आऊँगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही लाभ कई। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास

0: वेस्ट ना करें, पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें, बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरी बेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरे जोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती।

और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: करें तो हम सभी वाकिफ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है। पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का। अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में, और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं।
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
0: जी।
1: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया ऑयस्टर्स प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू, तो ये डेजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में
0: जी। तो ये तो होगी प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, ये अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है?
1: खास बात इसमें होती है इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं, और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूमों से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है, और अगर तत्व की बात की जाए प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है
0: जी। मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
1: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
0: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
1: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सोजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
0: जी,
1: बिना कोई रुकावट किए हुए।
0: जी मैडम, मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
1: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
0: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करें हम?
1: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की खेत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए। झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग में इसकी खेती की जाती है ऑयस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया तो गेहूं, मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
0: जी।
1: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल जब हम सुखाने के बाद कितना हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया है, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को,

0: तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली एक केजी बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 45 सेंटीमीटर लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 केजी भूसा आएगा, तो 3 केजी भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
1: जी।
0: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह से बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देख रेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
0: अगर प्रबंधन की बात किया तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 मीटर तक चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अगर 50 केजी भूसा को हमको भिगोना है तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसीलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को 1000 के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़ एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियां
1: तो ये कुछ सावधानियां हैं, प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरे।

0: दूसरा जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
12: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
11: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
15: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
16: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में

0: फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए। और यह कैसे हो सकता है, इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
1: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबिये छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबिये छिड़काव यंत्र के तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों, पेड़ों, बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
0: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड है

0: यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं उसमें, छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए, आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
1: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
1: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको डस्ट फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
0: जी,
1: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
0: जी,
1: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
0: जी,
1: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुड़काव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुड़काव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से

0: एक और नली लगी होती है जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहां पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं। जी
0: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है, दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है।
1: जी
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को जरूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता
0: है, हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
1: जी।
0: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए, ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
1: जी। डब्बे पे भी लिखा होता है, उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए।

0: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने में उसको कोई
0: इसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
1: जी।
0: कभी भी मुँह से फूंक मार कर इन यंत्रों को
1: जी ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो हाँ, किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
1: जी। तो किसान भाई ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए भी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
1: जी,
0: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
1: जी।
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
1: जी,
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें, और दवा को हमेशा ही छान कर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
1: जी।
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वॉशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से पहले भी मैंने बताया था 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा
1: जी।
0: ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के 2 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी।
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे, अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद कर देगा।
0: ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें
1: जी।
0: शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी
1: जी।
0: जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें। ठीक है, अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहां भी जरूरत है, जब भी 2 भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ

0: मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पैक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियाँ जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
1: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रखरखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रखरखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
0: जी।
1: फिर छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपके कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनका आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
0: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है, ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। खांसी खो खो खांसी। टीबी रोग हवा में फैले रखो।

0: अपना, औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: की शुरुआत भागलपुर से माना जाता है।
1: कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त माँ। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए ज़रूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिए रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के

0: दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते, अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। और बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं, या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए ज़रूरत है।
1: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है, ये हमारे पुराने पद्धति हैं जो कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो कि गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज़ को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो, देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। ये सारे चीज़ों को जब हम अपने खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
1: बिल्कुल, तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
0: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज़ स्वस्थ हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को

0: मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है, तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है, जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं, तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं, वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं और वहाँ के

0: मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
1: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम, कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज़्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका DAP के रूप में घनजीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है, जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
1: सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्र

यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, डी 96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें,

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कर

0: करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना है?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरकुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में आया हुआ हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। आज मैं अनुषा दीदी से पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। तो अनुषा दीदी, आप यह बताएं कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाते हैं और पोषण तत्वों को शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। पोषण को
0: हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं?
1: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। सभी पोषक तत्व शामिल करें। अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन को शामिल करें। पानी पीते रहें। शरीर के कार्यों के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फूड से बचें। शक्कर, नमक और वसा वाले प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, नियमित भोजन समय पर भोजन और स्वास्थ्य स्कीम चुने। इस प्रकार पोषण आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
0: जी दीदी, ये तो हो गई, हम पोषण को प्राप्त कर लिए। अगर दीदी कोई दवाई ना ले, दवाई के अलावे पोषण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग कर सकता?
1: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए संतुलित आहार अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फलियां और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, जैतून का तेल शामिल है।
0: जी दीदी, अगर आदमी सही से पोषण

0: बीवी को अगर सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या परेशानियां हो सकती
1: ना हो तो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है। शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं।
0: जी दीदी, महिलाओं को पोषण से संबंधित क्या उपयोग करनी चाहिए?
1: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें आयरन से बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए और फोलिक एसिड प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है। खासकर गर्भावस्था और मानसिक धर्म के दौरान जो उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
0: जी दीदी, तो बच्चों को आप पोषण के लिए क्या सुझाव देना चाहते?
1: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, अंडा, दाल, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
0: जी दीदी, इन सभी बातों में मैंने एक चीजों को बार बार नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीन प्रोटीन नाम का वर्ड आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण श्रोता लीन प्रोटीन वर्ड को नहीं जानते हैं, तो लीन प्रोटीन आखिर क्या होता है दीदी?
1: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को खास रख रखाव में मदद करता है।
0: जी दीदी, तो इसी प्रकार से हम पोषण को प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि अभी अनुसार रंजन दीदी ने बताया, और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज एक मुहिम भी चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो दीदी, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में?
2: आप अगर
0: अपने घर के आसपास ही कोई क्यारी लगाते हैं जिसमें कि आप फल सब्जी अपना उपजा सकें या खा सकें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, वसा वगैरह दे देती है, क्योंकि वो आपके सामने उपजा हुआ क्या कहता फल या सब्जी है जो कि पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक होती है। तो इनमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज सभी ग्रामीणों को भी सहायता करती है, और आप लोग भी ये बताएं कि अगर कोई

0: खाने के रूप में उपयोग करता है तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा, ये करना है सभी को करना चाहिए कि अपने पास जो भी थोड़ा जगह हो उसमें कुछ भी ना कुछ लगाए जिससे कि हमें प्रोटीन कुछ भी पोषक तत्व तो आसानी से मिल सके।
0: जी दीदी धन्यवाद, धन्यवाद दीदी आपने इतना अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसलिए 90.8 FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।
2: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा।

0: का सरल है उपाय।
1: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। यहाँ कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से डीपीएस की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण

0: भीड़ अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आर्य टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करे तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी, ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास ना जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर ना रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि,

उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि REWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान REWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की REWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्निल ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर ए.के. शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर.एन. सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से REWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि REWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा। किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि REWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और
किसान के खेत पर उसके

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: See you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खास विषय को लेकर आ चुके हैं, और पिछले साल से, पिछले कुछ दिनों से हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना जो है वो हमारे साथ चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया जो पौधा है वो है तुलसी। आप देखेंगे उसके बाद से हर घर में इस पौधे को लगाया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, फ़ायदा भी हुआ इसका। तो आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ, बहुत बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। पुराने ज़माने से बात करूँ तो मैं इसकी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती थी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती थी। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो मैं आज आपको बता दूँ कि हमारा जो विषय है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती एवं विपणन। तो आज खेती के बारे में जानेंगे इसकी, क्योंकि बहुत जगह पर खेती की जा रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टि से भी आजकल। तो मैं बता दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनाथ दास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद मैडम। हमारे 90.8 एफएम के श्रोताओं, आज जो कोरोना समय में जो महामारी चल रही है उसमें आज औषधीय पौधे का जो डिमांड है उसका महत्व काफी बढ़ा है
11: जी।
12: इसी के क्रम में आज तुलसी की खेती बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इस पे विस्तृत जानकारी

0: आप लोग को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वह औषधीय सगंधीय पादप परियोजना के तहत कार्य पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में चलता है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का एक इकाई है। तो चले तुलसी की खेती। किसान भाइयों, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं उसका रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने जमाने से और गांव ग्राम से लेकर के शहरों में भी तुलसी हरेक घर के आंगन और बालकोनी का शोभा बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उसका सेहत का भी ध्यान रखता है। तुलसी मुख्य रूप से ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, मलेरिया और डेंगू में भी काम आता है, और तक कि अगर 12 पत्ते तुलसी का अगर आप च्यूइंग करते हैं एक दिन में, तो आपको वो स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है और आपका मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप जिंजर और हनी और तुलसी का पत्ते के साथ अगर काढ़ा बनाते हैं तो आपको अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, कफ और सर्दी से आपको निजात दिलाती है।
1: जी।
0: अगर तुलसी के लीव्स का जो जूस और हनी के साथ अगर रेगुलरली 6 महीने तक अगर लेते हैं, तो आपको जो रेनल स्टोन जो होता है, जिसको आप पथरी कहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो खत्म करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तुलसी कहती है कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं है, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध है, जैसे कि प्रोटीन उसमें उपलब्ध है, आयरन 17% है, कैल्शियम 17% है, विटामिन सी 30% है, विटामिन ए 105% है, विटामिन बी 6-10% है, मैग्नीशियम 16% है, इवन की पोटेशियम 295 मिलीग्राम है।
1: अच्छा।
0: और कोलेस्ट्रॉल 0 है, यानी कि इतने पोषक तत्व के रहने के कारण कोरोना में तुलसी का डिमांड और उसका महत्व काफी बढ़ा है।
1: जी।
0: और इसीलिए भारत सरकार और ये खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और जिसमें कि 10,000 हेक्टेयर में खेती करने का योजना तैयार किया है हर्बल खेती के तहत। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का एक संस्था होती है, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो उसमें हमारे बिहार के भी हिस्से में कुछ आने वाला है, खास करके के जो गंगा के किनारे है।
1: जी।
0: बिहार के किसान भाइयों को मैं जानकारी दे दूं कि बक्सर से लेकर के भागलपुर में गंगा का जो लंबाई है 450 किलोमीटर है, तो जो गंगा के किनारे वाले किसान है वो औषधीय पौधे लगाकर खास करके तुलसी का खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं इस योजना से।
1: जी।
0: अब देखें तुलसी कितने तरह का होता है।
1: जी, वैरायटीज के बारे में।
0: वैरायटी हमारे किसान भाई प्रायः मुख्य रूप से तुलसी एक स्वीट वासिल कहते हैं, जिसको कि राम तुलसी आप लोग कहते हैं, या ओसिमम बैसिलिकम, और दूसरा होता है ओसिमम सैंक्टम, इसको सेक्रेट वासिल या होली वासिल कहते हैं, अर्थात क्रिस्प तुलसी इसको बोलते हैं।
1: जी।
0: और इसके अलावे भी इसका सेंटेड के आधार पर, आने की उसका सगंध के आधार पर लेमन तुलसी होता है, कपूर तुलसी होता है, तो आप इस तरह से इसका सगंध हो, औषधीय महत्व हो, इस चीज को ध्यान में आप रखते हुए आप कैसे खेती करेंगे, उसके लिए आप कैसे चुनाव करेंगे, ये आपको देखना है। क्योंकि सीमैप लखनऊ के माध्यम से बहुत सारे तुलसी की प्रभेद का इजाद किया गया है, जिसमें सीम सौम्या है, सीम सनिग्धा है, सीम तुरावी है, सीम अंजना है, सीम आयु है, ये सब जो 4-5 प्रभेद हैं, चाहे सौम्या हो, सनिग्धा हो, या सुरभी हो, या अंजना हो, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सब काफी इसका हार्वेस्ट यील्ड है, इसमें काफी तेल की मात्रा होती है। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी एक वैरायटी है गैब 1, इसका भी काफी यील्ड है, और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी एक तुलसी का प्रभेद, अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पाइपलाइन में है, जो कि अंजना तुलसी से अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम है सबौर OS1, जो श्याम तुलसी का एक प्रभेद है, जो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के हर्बल गार्डन में लगा हुआ है। आप हमारे बिहार के

0: भाई वहाँ विजिट करें और वहाँ तुलसी का जो प्रक्षेत्र पर लगा हुआ है आप उसका अवलोकन कर सकते हैं
1: जी।
0: अब इसकी खेती की बात करते हैं कि तुलसी की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल, जितने भी तरह का सॉइल हो, चाहे रिच लॉन्ग हो या पुअर लेटेराइट हो या सलाइन सॉइल हो या अल्कलाइन से मॉडरेटली एसिडिक सॉइल हो, हर एक तरह के मिट्टी में ये तुलसी का खेती आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इसके लिए मौसम है, खास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है सियारे प्रोग्राम के तहत, तो मैं आपको बता दूं ये फेयरली हाई रेनफॉल एरिया या फिर ह्यूमिड कंडीशन है, जहां की तापमान या सूर्य का प्रकाश काफी हो, हाई टेम्परेचर हो, वैसे कंडीशन के लिए तुलसी का खेती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर तुलसी में जो ऑयल प्रोडक्शन में वो मदद करता है। लेकिन पार्शियल शेड कंडीशन में तेल की मात्रा को घटा देता है, इसीलिए जो ठंडा प्रदेश है खासकर या गैंगटोक हो, वैसे इलाके में तुलसी की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ शेडिंग कंडीशन रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ तेल की मात्रा और क्वालिटी अच्छी नहीं पाए जाते। इसलिए बिहार चूंकि सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, लॉन्ग डे लाइट भी मिलता है, इसलिए आपका तेल की मात्रा काफी बढ़ेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, जब भी तुलसी की आप खेती करेंगे, आपको तुलसी का नर्सरी प्रिपरेशन पर काफी आपको ध्यान देना है, कि अगर आप नर्सरी के माध्यम से अगर खेती करना चाहते हैं तब आपको ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको रेज बेस्ड सिस्टम के माध्यम से, यानी जमीन ऊपर उठा हुआ है होना चाहिए, 15x4x9 feet का बेड बना लीजिए और उसमें 200 से 10 ग्राम तुलसी का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अगर एक हेक्टेयर में आपको खेती करना है तो आपको 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज का भुरकाव कर देना है वो बेड पर। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब नर्सरी पे आप तुलसी का बीज गिरा रहे हैं तो तुलसी के साथ थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी मिला लें, और गिराने के बाद उसके ऊपर भीगा हुआ पुआल रख दें, और प्रतिदिन आपको 3 से 4 दिन सुबह और शाम में स्प्रिंकलिंग विधि से, यानी कि फुहारा विधि से उसमें पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8 से 12 दिन में आपका तुलसी का बीज का जर्मिनेशन हो जाता है
1: जी।
0: और जर्मिनेशन होने के बाद जब आपका तुलसी 6 सप्ताह का 4-5 लीव स्टेज का हो जाता है तो आप मेन प्लॉट में जाकर के आप इसकी लगा सकते हैं। लेकिन आप जब लगाएंगे खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूरी होगा 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर आप लगाएंगे, यानी कि पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब तुलसी आप लगा रहे हैं तो उस समय इमीडिएट सिंचाई करना है फुहारा विधि से, जहां तुलसी लगा रहे हैं उसके जड़ में ही पानी थोड़ा सा देना है ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए, और फिर सेकेंड इरिगेशन जब आप देने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप मुआयना करेंगे, थोड़ा सा आप खेतों को बारीकी से देखेंगे कि कुछ तुलसी के पौधे अगर मर गए हों, स्वस्थ नहीं हो, तो वैसे स्थिति में आप गैप फिलिंग करेंगे
1: जी।
0: ये कंडीशन 1 महीने के बाद आती है। और अब जहां तक सिंचाई की बात अगर करते हैं तो ये सीजन और मॉइस्चर, मिट्टी में जो कितना मॉइस्चर है उसके भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रायः 3 महीने पर एक सिंचाई किसान भाई तुलसी के खेत में जरूर दें, क्योंकि अगर सिंचाई आप देते हैं तो उसका जो ग्रोथ बढ़वार जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा। तो अप्लाई जो करना है आपको पानी का वो 3 इरिगेशन पर मंथ, 1-3 महीने पर 1 इरिगेशन आपको कर देना है। अगर जहां मॉइस्चर की कमी है वहां मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसका हार्वेस्टिंग से पहले आपको सिंचाई

0: करनी है। और जहां तक खाद की बात है कि कितना उर्वरक आप डालेंगे, तो 120/60/60 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है
1: जी।
0: तो लेकिन आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसमें कंप्लीट एनपीके की बात हम नहीं करना चाहेंगे कि तुलसी औषधीय पौधा है, इसलिए आप इंटीग्रेटेड वे में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दें, यानी कि 50-40-30 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्लस 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो तुलसी है वो एक तरह से जैविक उत्पादन के तहत आएगा
1: जी। जी सर।
0: अब ऐसा इसमें देखा जाता है कि इसका इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या वीडिंग ऑपरेशन और अर्दिंग अब मिट्टी को चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं तो ज्यादा हवा आती है या फिर कभी कभार गलती से ज्यादा पानी अगर लग गया तो ऐसे में पौधे आपको गिर सकता है, इसलिए आपको फर्स्ट वीडिंग 1 महीने के बाद और सेकेंड वीडिंग जस्ट दूसरा महीना आपको कर देना। जब दूसरा महीना आता है तब जैसे आप आलू की खेती करते समय मिट्टी को आप चढ़ाते हैं उसी तरह तुलसी में भी आप मिट्टी को चढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग आप नहीं करेंगे तब इसका औषधीय गुण बरकरार रहेगा। चूंकि तुलसी हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो औषधीय पौधे होते हैं उसको इसलिए उसका महत्व रहता है कि उसके पत्ते में या उसके जड़ में या उसके फ्लावर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के चलते इसका औषधीय महत्व है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसमें बिहार के केस में ये भी देखा गया है कि लीफ स्पॉट नाम का एक बीमारी भी लगता है तुलसी के पत्ते में, धब्बे धब्बे छोटा छोटा चित्तीदार टाइप का, अगर इस तरह के किसान भाई आपके अगर तुलसी में लगा रहता है तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का दोनों मिला करके 2% सोल्यूशन प्लांटिंग के समय अगर बीमारी उसमें आ जाता है ऑन एपरियंस ऑफ डिजीज सिम्टम अगर आपका लक्षण दिखाई देने लगता है तब 3 स्प्रे मैंको जेब का करेंगे 0.25% 15 दिन के अंतराल पर, तो आपको ये बीमारी से निजात मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप तुलसी का खेती करते हैं तो आपका अच्छा उपज मिलेगा, तब आपको उपज के क्रम में आपको हार्वेस्ट कब करना है। हमारे किसान भाइयों तुलसी में 2 से 3 कटिंग लिया जाता है, तो पहला कटिंग 90 से 95 दिन प्लांटिंग के बाद आप ले सकते हैं और दूसरा कटिंग पहला कटिंग के ठीक 65 से 75 दिन, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक कटिंग के बाद उसमें इरिगेशन और खाद का उपयोग करना है ताकि फिर से नया फ्लस आ सके। और हार्वेस्टिंग के समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हार्वेस्ट जो करेंगे वो जमीन से सटा के नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करेंगे ताकि अगर उसका जो स्टेबल बचा हुआ रहेगा तब फिर वो स्प्राउट करके नया पौधा फिर बनेगा, तब आप सेकेंड और थर्ड कटिंग आप ले सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर
0: जहाँ तक हाँ बोलिए बोलिए।
1: ये तो यहाँ पर आपने बताई है पूरी नर्सरी से लेकर के ये हार्वेस्टिंग तक की बातें, और जो हमारा ये जो टॉपिक है वो है विपणन की भी बातें करनी है हमें, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी।
0: हमारे 90.8 FM के श्रोता किसान बंधुओं, ये तो अब खेती के बाद हो गई, लेकिन अभी खास करके जो औषधीय पौधे में मार्केटिंग का विपणन का समस्या से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है।
1: मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उसके बाद मार्केट में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है।
0: मांग इतनी बढ़ी है कि मैं किसानों को बिहार के जो मार्केट ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वैसे पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश में एक जगह नीमच है, नीमच मंडी जो औषधीय पौधे के लिए विख्यात है,

वहाँ लगभग 500 प्रकार का औषधीय पौधे का वो बाजार है, व्यापारिक केंद्र है। हमारे किसान भाई, आप नीमच मंडी में भी, जो मध्य प्रदेश के इलाके में अवस्थित है, आप वहाँ भी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ के ट्रेडर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में बरेली, लखनऊ का जो शहादतगंज इलाका है वो बहुत बड़ा

0: पेंटिंग में बहुत बड़ा अपना रोल और कर्तव्य भी निभा रहे हैं, जिसमें एक है विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी। अच्छा। विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी जो कि अहियापुर मुजफ्फरपुर बिहार में इसका ऑफिस है, और इसका जो नंबर है आप किसान भाई नोट कर सकते हैं, 7070894985। फिर से सुने, 7070894985। ये विश्वाक स्नेह हर्बल एरोमेटिक का है, कृष्णा चौधरी जी हैं इसके हेड। आप इनसे संपर्क करके आप विपणन कर सकते हैं और ये खेती भी करवाते हैं। इसी तरह से दूसरा है सबला सेवा संस्था, इनका की हेड अविनाश कुमार है और इनका ऑफिस गोरखपुर में है। इनका जो नंबर है 9430502802। फिर से सुने, 9430502802, जो कि सबला सेवा संस्थान श्री अविनाश कुमार का है। लेकिन इधर ये दोनों के अलावे जो अभी बड़े पैमाने पर औषधीय पौधे की खेती की का विपणन और खेती भी किसानों से करवा रहे हैं, वो है औषधीय खेती विकास संस्थान जो कि बिहार का है और इसका हेड नंदलाल जी हैं जो कि छपरा का रहने वाले हैं। इनका भी आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8292977734। फिर से सुने, 8292977734। अगर इस तरह से आप चाहे औषधीय विकास संस्थान हो या सबला सेवा संस्थान या विश्वाक हर्बल कंपनी हो जो कि अपना बिहार का है, आप या इनसे भी संपर्क करके आप तुलसी का विपणन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो तुलसी बिहार में औषधीय पौधे की जो खेती का जो रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2009-10 में 2600 हेक्टेयर था जो कि अभी चल करके 4500 हेक्टेयर औषधीय पौधे की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ा, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, हमारा जो परियोजना अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं संगंधीय पादप परियोजना चल रहा है बीआरसी इस्लामपुर का काफी बड़ा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि संजय गुप्ता अभी 10 एकड़ में तुलसी का खेती कर रहे हैं, मधुसूदन दुबे 2 एकड़ में कर रहे हैं, ये सब अभी ये रोहतास जिला के किसान है, खास करके नोखा ब्लॉक का है। और आपको मैं बता दूं कि उपेंद्र पटेल जी जो कि राजपुर रोहतास जिला के हैं, वो 1 एकड़ में कर रहे हैं जी। और विकास लाल जो डुमराव बक्सर के रहने वाले हैं, वो 4 एकड़ में श्याम तुलसी का खेती कर रहे हैं। इस तरह से बिहार में किसानों का रुझान बढ़ा है, इसलिए जिन किसान भाइयों को तुलसी का खेती करनी है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन दास जो कि पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में पदस्थापित है, जहाँ के औषधीय पादप गंधीय परियोजना चलता है, जहाँ के एक अच्छा बड़ा हर्बल गार्डन है, जहाँ के लगभग 100 तरह का औषधीय पौधे का संग्रह है, आप उनसे संपर्क करें, आप वो उस हर्बल गार्डन को देखने आए, आपको काफी लाभ होगा
1: जी।
0: इस तरह से जो विपणन का मैंने आपको बताया, इसके अलावे जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो डिजिटल इंडिया का ये युग है, तो आप घर बैठे भी तुलसी का खेती का विपणन कर सकते हैं, जिसमें एक वेबसाइट है कृषक हाट।
1: अच्छा।
0: कृषक हाट एक सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश का है ये, आप इस वेबसाइट पर भी जा करके आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक मजबूत विपणन का प्लेटफॉर्म है ई चरक, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसका वेबसाइट है ई चरक, जो कि ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट प्लेस है मेडिसिनल प्लांट का। अगर आपको तुलसी का विपणन करना है तो आप उसके पोर्टल पर पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना पासवर्ड बना लें, और क्या चीज का विपणन करना है उसमें नाम लिखेंगे, अपना प्लांटिंग मटेरियल का यहाँ तक कि फोटोग्राफ भी डालेंगे। अगर तुलसी का पाउडर बेचना है या तुलसी का लीफ बेचना है या तुलसी का पूरा हार्वेस्ट मटेरियल बेचना है तो उसका फोटोग्राफ डालेंगे और उधर से तुरंत रिप्लाई होगा। जिसको भी खरीदना होगा

0: आपको रिप्लाई देगा कि कितना आप प्राइस रखे हैं, तो आप प्राइस जो दिल्ली या नीमच मंडी का रहता है आप वेबसाइट से देख करके भी आप अपना प्राइस रख सकते हैं, या फिर जो खेती करने में जो आपको ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा है उससे कैलकुलेशन करके कि कितना आपको मुनाफा होना चाहिए। प्रायः जो तुलसी का खेती जो है उसमें 50,000, 75,000, 75,000, 1,00,000 तक का प्रति एकड़ इसमें आता है। इस तरह से अगर आप भौतिक रूप से मार्केटिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं तो नीमच मंडी जाइए, अगर भौतिक रूप से करना चाहते हैं तो बाराबंकी मंडी जाइए, या तबला सेवा संस्था जो बिहार का है उससे संपर्क कीजिए, या फिर कृषि सेवा संस्था जो नंदलाल जी का है आप उनसे संपर्क कीजिए, अथवा ऑनलाइन मार्केटिंग ई चरक के माध्यम से कर सकते हैं या कृषक हाट के माध्यम कर सकते हैं।
1: जी सर, बिहार में कहाँ कहाँ इसकी खेती हम कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ संभावना है इसकी खेती की?
0: बिहार में तुलसी की खेती का संभावना है खास करके जो दक्षिण बिहार का जो इलाका है जिसमें कि नवादा हो सकता है, जम्मू हो सकता है, मुंगेर हो सकता है, आपका रोहतास जिला में तो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, और फिर थोड़ा सा गंगा के उस पार में जो बेगूसराय का जिला है और एक मुजफ्फरपुर जिला है, ये सब तुलसी की खेती करने के प्रति किसानों का रुझान कर भी रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि पूरे भारत वर्ष में जो तुलसी की जो खेती होती है उसके तुलना में बिहार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है तुलसी की खेती की तरफ
1: जी।
0: टोटल पूरे भारतवर्ष में 25,000 हेक्टेयर में तुलसी की खेती होती है जिसमें बिहार में 32 हेक्टेयर खेती होती हो रही है, और अभी लगभग 500 एकड़ का टारगेट कृषि विकास संस्थान जो नंदलाल जी का है और हमारा पान अनुसंधान केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय मिल करके इस एरिया को और बढ़ाने का कर रहे हैं। तो खास करके जो रेनफेड एरिया है जहां बारिश नहीं होती है वैसे इलाके के लिए तुलसी वरदान है उन किसानों के लिए, क्योंकि जहां सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, पानी का उपलब्धता नहीं है, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं वैसे इलाके में तुलसी का खेती आप बड़े ही सुगमता रूप से आप कर सकते हैं और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आपने जाना कि तुलसी की खेती आपको आपके आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करेगी और इसके फायदे भी अनेक हैं। आप चाहे तो एक किचन गार्डन भी बनाते हैं तो आप उसमें भी इसे उगा सकते हैं, अपने घर में अपने परिवार में जो चीज़ें हैं जैसे कि काढ़ा बनाना, तो इन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे ही फायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर यहाँ पर तो हमने खेती की बात की, लेकिन हम इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी पूजा करते हैं तो हर घर में एक ना एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। और किसान भाइयों जी,
0: आप मैडम आप आध्यात्मिक की बातें की, एक तुलसी विवाह होता है
1: जी जी,
0: प्रत्येक साल तुलसी विवाह हमारे हिंदू भाई जो भारतीय हैं वो मनाता है, और खास करके हिंदू जो 11 और ब्रह्मा जो ब्राइट फोर्टनाइट होता है जिसको कि पूर्णिमा का दिन हम लोग कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा उसको बोलते हैं, फुल मून डे, तो उस समय भी विष्णु के अवतार के रूप में कृषि के तुलसी को माना जाता है, और जो तुलसी के नीचे ही शालिग्राम का एक शिला रहता है, कहता है कि जब तक ये शिला तुलसी से नहीं मिलती है तब तक लोगों का जो पूजा होता है वो परिपूर्ण नहीं माना जाता है
1: जी।
0: तो हमारे धार्मिक महत्व का तुलसी में बहुत है, इसीलिए तो इसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है तुलसी को।
1: अच्छा जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको जो धार्मिक तरीके से इसकी जो विशेषता है वो भी बताई आपको, साथ ही खेती के बारे में बताया कि आप कैसे कैसे खेती कर सकते हैं, नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, आपको कौन सी किस्म लेनी चाहिए अगर बिहार में आप खेती कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि आप अगर आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप कहाँ पर बेच सकते हैं इसे, मार्केट कहाँ उपलब्ध है इसके, तो सारी बातें आपको बता दी गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा इस वार्ता को सुनकर। और साथ ही अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम, इसी फ्रिक्वेंसी पर सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।

0: കൃഷി. സാമുദായിക റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ FM ഗ്രീൻ,
1: യാനി കിസാൻ സമുദായ കി ഖേതി കി ബാതേ,
0: മഹിളാഓ കി റോസ്മർറ കി ബാതേ,
1: ആപ്കി സെഹത് കി ബാതേ,
0: ബച്ചോ കി പഠായി ലിഖായി കി ബാതേ,
1: യുവാഓ കി റോജ്ഗാർ കരിയർ കി ബാതേ,
0: വോ സബ് കുച്ച് ഏക് ഹി ജഗഹ പർ.
1: വോ കഹാ പർ?
0: ബിഹാർ കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ സബോർ കെ 90.8 FM ഗ്രീൻ പർ.
1: FM ഗ്രീൻ യാനി ഹരിയാലി സെ ഖുശ്ഹാലി തക്.
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे।

के दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोए और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं

निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट बीएयू सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहे तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, डीएपी, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में। साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज।

0: यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटें, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े, यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
1: जी सर। सर अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी पद बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है, तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगे। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए वह एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और यह दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बूस एंड एबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
1: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
0: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है। जी तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूपेण करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था, लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है। तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे, तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया, तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया, साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है फसल सामान्यतया उसी से पोषक तत्व तो लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
1: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
0: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है सनई का प्रयोग होता है, ढेंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वह ढेंचा का प्रयोग होगा। ढेंचा का प्रयोग सामान्यतः अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढेंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढेंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
1: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
0: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर के 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है, तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है और 3 से लेकर 9% तक फास्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी, 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए। फास्फोरस 0.8 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 10.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है, और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जानकर के 2% के ऊपर ही रहता है।

0: 2% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है। साथ ही साथ इसे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर के 3.5% तक होता है। साथ ही साथ इसे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो बर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
1: जी सर। सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, जैसे पेट ट्रॉफिक झिल्ली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.25% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है। पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा, और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है।
1: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में है। एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो यह ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वह नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वह नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, यह सब खाना नहीं बना सकता है, तो यह बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं।

0: रास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के आधा लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया। अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया। अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है। और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजियोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नई फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो विश्वास पर खाता होगा कि ये बिना जहर वाला है, ये जैविक है। लेकिन आपने खुद खेती किया है, आपको मालूम है ये बिना जहर वाला है या नहीं है। ये सौभाग्य टाटा बिरला अंबानी को भी नहीं होगा, जो सौभाग्य आपको है। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। कितना खाते होंगे भाई मेरे, छोटा सा परिवार चलता है, पहले की तरह 25-30 आदमी का तो परिवार होता नहीं है, मियां बीवी दो चार बच्चे रहते। यदि आप 10 कट्ठा उपजाऊ जमीन अपने लिए चिन्हित कर लीजिए कि हम अपने लिए बिना जहर का पैदा करेंगे, तो आराम से कितना खाते होंगे, 2-3 क्विंटल चावल खाते होंगे, 3-4 क्विंटल गेहूं खाते होंगे, कुछ क्विंटल 1.5 क्विंटल दलहन तिलहन खाते होंगे, वो 10 कट्ठा जमीन में बहुत अच्छी तरह से उपज हो जाएगा। इसलिए उपजाऊ जमीन अपने लिए 10 कट्ठा चिन्हित करें और जरूर से जरूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिना जहर का पैदा कीजिए और उनको खिलाइए। यही मेरा संदेश।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने जैविक खेती के बारे में बताया, उसके फायदों के बारे में बताया, साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो हमारे किसान भाई बहनों को आज के इस चर्चा से काफी कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखिए विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: 3
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90

0: 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
0: जी मैम
2: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है बल्कि वो एक उत्पादन प्रसंस्करण विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन दुग्ध मत्स्य बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
0: मैम आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
2: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसमें कि अगर कहें तो 1,000,000 स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
0: तो मैम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
2: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही हैं आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया वर्मी कंपोस्ट

0: हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात, जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है, वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट की माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें, तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य, या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट, या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है, सामूहिक खेती, इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से हम राज्य से स्तर को देखें, और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षा और शोध है, बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या मधुमक्खी पालन के ऊपर, या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं, और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पे, जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं, तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है, और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं, बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है, और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
0: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति

0: द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुंच है वो बढ़ी है, हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो। और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
0: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फायदे होते हैं उसके चुनौतियाँ भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है, और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
1: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं जी। और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह

0: पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आप

0: आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की,
1: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियां और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था थर्मामीटर या

0: थर्मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गाँव और उसके आस पास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलोदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है।
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए। वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Long Changla, you're very quiet today. Did anything happen in the school? Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
4: Yes.
3: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
4: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
3: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
4: Now, tell me, what do I hold in my hand?
3: How can I? My eyes are closed. I can't see.
4: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
3: It is something soft. A flower.
4: Yes. But what flower is it? Smell it.
3: It is a rose.
4: Good. Now try another thing. What do I hold?
3: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
4: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Ong Shangla touched it.
3: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
3: A glass of water?
4: Are you sure? It could be milk or juice.

0: Song Shangla tasted it.
1: Oh, it is not water. It is orange juice.
2: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
0: She took off the scarf. Ong Shangla blinked and looked at her.
1: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
2: So, Ong Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
1: Yes, Ava.
2: Good girl.
0: Ong Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
2: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एक्सिट नहीं दिखा, और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: आज इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
7: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
8: साथियों नमस्कार।
9: नमस्कार साथियों,
8: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
9: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
8: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
9: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
8: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
10: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
11: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
10: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।

0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
4: 13, 12, 11। ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4।
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, Only 4। ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ।
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी?

0: ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सु कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सु,
0: हाँ?
1: सु, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। सु,
0: जान से।
2: साथियों, सु ने उसे बहुत समझाया। उसे दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की। सू
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी।

0: कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ, दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस।

0: आंसू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
8: जी
7: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
8: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
7: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
13: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
14: उन्नत कृषि।
15: तो नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और मुझे तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, मैं हूँ आरजे अनु, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जहाँ हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की, और इसी में से एक विषय हम लेकर आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, और खाद और उर्वरक बहुत ज़रूरी है

0: सभी फसलों के लिए। इवन मैं दलहनी फसलों की आज बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करें हम, क्या विधि होगी और इसके प्रयोग करने से हमें क्या लाभ होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दलहनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का प्रबंधन। तो इसे लेकर आज हमारे बीच हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, जो कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले सवाल की ओर जाते हैं, जो हमारे किसान भाई अक्सर ये जानना चाहते हैं कि दलहनी फसलों में सामान्यतः रासायनिक उर्वरक की अनुशंसा क्या है, इसकी जानकारी सभी को दे दें।
1: जो रासायनिक उर्वरक है, खास करके दलहनी फसलों की यदि हम बात करें, तो वह सामान्यतः 20 केजी के आसपास नाइट्रोजन डालना चाहिए और 40 से 50 केजी फॉस्फोरस डालना चाहिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही अनुशंसा है।
0: जी,
1: वास्तव में अनुशंसा तो मिट्टी जांच के आधार पर होनी चाहिए। हम मिट्टी की जांच करवाते हैं। अब मान लीजिए यह 20 केजी नाइट्रोजन है और हमारी मिट्टी यदि लो है, एक्चुअली मिट्टी को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, निम्न, मध्यम और उच्च। तो ये जो मैंने कहा 20 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 की जो फॉस्फोरस, यानी मोटे तौर पर 100 केजी डीएपी की बात यदि हम करें तो यदि हम ये बात करते हैं तो यह बात हो गई यदि हमारा मध्यम स्तर का फर्टिलिटी है। तब यदि हमारी फर्टिलिटी लो स्तर की है यानी निम्न स्तर की है, तो वहां पर हमको उस अनुशंसा में कम से कम 25% बढ़ाना पड़ता है। और उच्च स्तर की यदि है तो हम उसको घटा देते हैं, यानी कहने का मतलब उसमें 25% आपको घटा देते हैं। जैसे अब मैं इसको इस ढंग से समझाना चाहूंगा कि यदि 280 से 560 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से कम यदि उपलब्ध नाइट्रोजन उसमें है, अवेलेबल नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब कि वह निम्न है। और यदि 560 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो वह उच्च है। तो यदि 280 केजी से नीचे है, यानी 200 केजी है, 225 केजी है, तो वहां पर आप नाइट्रोजन को भी बढ़ाएंगे। इसी तरह से फॉस्फोरस की उपलब्धता 25 से 50 केजी के बीच में यदि P2O5 है, उपलब्ध P2O5, तो उसको आप कहते हैं मध्यम, यानी कि 25 से 50 केजी। और 25 केजी से कम है तो इसको कहते हैं आप, 25 केजी प्रति हेक्टेयर से कम है तो उसको निम्न कहते हैं, और 50 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो आप उसको उच्च कहते हैं। यानी निम्न होगा तो वहां पर फॉस्फोरस भी जो अनुशंसित मात्रा है, अनुशंसित मात्रा को कम से कम 25% बढ़ा देते हैं। और उच्च में है तो आप उच्च से, यानी कहने का मतलब 50 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो आपको वहां पर जो भी, मान लीजिए 50 केजी आपकी अनुशंसित मात्रा है तो उसमें से आप 25% घटा देंगे। ये तरीका होता है हमको अनुशंसा निकालने की। लेकिन मोटे तौर पर जो मध्यम स्तर की बात है उसके लिए मैंने कहा कि 100 केजी डीएपी डालना चाहिए दलहनी फसलों में।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं यहाँ पर जो हमारे उर्वरक हैं रासायनिक उर्वरक, उनकी अनुशंसा की। आगे बढ़ते हुए अगर हम दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे?
1: देखिए, एक चीज बताएं, इसके बीच में किसानों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है
0: जी,
1: कि जैव उर्वरक जब प्रयोग करते हैं तो जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करें। सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप उसमें जो है, क्या कहते हैं, जितने भी दलहनी फसल हैं उसमें सामान्यतया राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है
0: जी।
1: राइजोबियम एक सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दलहन और राइजोबियम के बीच में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप होता है। दलहन उसको रहने के लिए, उस राइजोबियम को रहने के लिए मकान देता है, खाना देता है, और इसके एवज में वह नाइट्रोजन फिक्स करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। यही यूरिया की फैक्ट्री में यदि आप जाएं तो बहुत हाई टेम्परेचर पर 300-400 डिग्री पर यह काम होता है। लेकिन यदि हम देखें दलहनी फसलों में तो जो आपके खेत का टेम्परेचर है उसी पर यह हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन है। इसमें एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसके चलते यह काम बहुत कम टेम्परेचर पर आपका हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो दलहनी फसल है, ये जो राइजोबियम और दलहन के बीच में जो सिम्बियोसिस है, यह वास्तव में एक यूरिया बनाने की फैक्ट्री है अपने आप में। इसीलिए हर एक किसान को यह अनुशंसा की जाती है कि धान फसलों के बाद आप दलहनी फसल लगाएं। तो दलहनी फसल में यदि हम राइजोबियम का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि 10 केजी बीज ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा जो 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए आधा लीटर पानी में, उसको थोड़ा सा उस गुड़ को गर्म कर लीजिए कि घुल जाए बढ़िया से। जब वो ठंडा हो जाता है तो उस 10 केजी बीज के ऊपर आप डाल दीजिए।

0: और इसको 200 ग्राम उसमें जो राइजोबियम का कल्चर है वह आप मिला दीजिए, और राइजोबियम कल्चर मिला देने के बाद अब हल्के हाथ उसको मिला दीजिए, जिसके उसके ऊपर एक परत सी बन जाए। जब ये परत बन जाएगी तो उसके बाद छाए में उसकी आप बुआई कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो कि आपको राइजोबियम का भी प्रयोग करते हैं, पीएसबी का भी प्रयोग करते हैं, और जो बीज उपचार है, बीज उपचार भी कैप्टन थिराम या ट्राइकोडर्मा से करते हैं। तो मान लीजिए यह तीनों चीज से करता है तब कैसे प्रयोग करना चाहिए? तो पहले उसको करना चाहिए, इसका इसके लिए एक सिद्धांत है, FIR, यानी पहले फंजीसाइड से ट्रीट कीजिए, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कीजिए, फिर फॉस्फेट सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया यानी PSB से आप उसको ट्रीट कीजिए, और अंत में जो राइजोबियम है उसे आप उपचार करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि FIR के प्रिंसिपल के तहत आप इसमें उपचार करते हैं। यदि आजकल बाजार में ये सॉलिड कल्चर के बजाय लिक्विड कल्चर आने लगा है, तो जो लिक्विड कल्चर जहां पर आ रहा है वहां पर आपको 10 ml प्रति kg के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। बहुत सारे किसान हैं जो मान लीजिए बीज उपचार तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बीज उपचार नहीं कर पाए, यदि खेत में वो प्रयोग करना चाहते हैं तो मिट्टी में यदि वो प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर उनको चाहिए कि इसमें 750 ml, यदि लिक्विड प्रयोग कर रहे हैं तो 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उनको उसमें डालना चाहिए। और लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होगा किसान भाइयों जितना फायदेमंद आपको बीज उपचार होगा, इसीलिए बीज उपचार पर ज़्यादा बल दें। और इससे काफ़ी आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपकी मिट्टी में हो जाता है, जो फसल को फायदा तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ आप यदि देखें तो आपकी मिट्टी में भी नाइट्रोजन की स्थिति ठीक ठाक होती है, इसीलिए आपको जो जैव उर्वरक है उस जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई हैं जैव उर्वरक की, और अगर हम रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली क्या है कि आज के तारीख में वर्मी कंपोस्ट, कई तरह के वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं। एक समान वर्मी कंपोस्ट भी बनता है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है वो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट भी बनाता है।
1: अच्छा,
0: तो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट में हम लोग रॉक फॉस्फेट भी मिलाते हैं, उसमें फॉस्फोजिप्सम या जिप्सम भी मिलाते हैं, और जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में आपको सल्फर का बड़ा रोल है। सल्फर यदि आपने प्रयोग किया है तो 10-15% यील्ड आपका वैसे बढ़ जाएगा। और आजकल देखा जा रहा है बिहार में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सल्फर की कमी है, तो ऐसे क्षेत्रों में यदि हम सल्फर डालते हैं तो हमारी तिलहनी फसल में भी ये उत्पादन में हमारी वृद्धि करता है। तो यदि हम देखें तो ये अलग से किसान को डालने में दिक्कत होती है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, जिसको हम लोग इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, संवर्धित वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसमें आपको सल्फर है, फॉस्फोरस भी काफी मात्रा में, क्योंकि दलहनी फसलों में फॉस्फोरस का बड़ा रोल है, और साथ ही साथ उसमें गंधक का भी बड़ा रोल है। तो यदि आप इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा सल्फर होता है, तो वह यदि आप प्रयोग करते हैं तो काफी फायदेमंद रहता है। नहीं, यदि आपने ऐसा नहीं किया और आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो सल्फर आपको अलग से डालना पड़ेगा, सल्फर के खाद के रूप में आपको सल्फर डालना होगा। तो इसीलिए इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय ही डाल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप 20 kg नाइट्रोजन डालते हैं, और हमारे यहाँ जो संवर्धित वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें मोटे तौर पर 2% होता है, तो 2% हो गया, यानी 1 ton यदि आप डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट तो उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। एक चीज देखिए, जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जिसको आप हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यह किसानों के लिए वरदान है लेकिन पौधों के लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि 1 kg नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 15-18 kg कार्बोहाइड्रेट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पौधे को काफी मेहनत करनी पड़ती है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। इसीलिए ये जो शुरू में आप डालते हैं नाइट्रोजन, जो 20 kg नाइट्रोजन की बात हमने कही, वो इसीलिए डालते हैं जिससे कि उसका फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ जाए। उसमें जो कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाने कहाँ पर कौन बनाता है, पत्ती बनाता है, तो वो पत्ती जो हमारा बना रहा है वो ज़्यादा हो, इसीलिए आप शुरू में इसमें नाइट्रोजन भी डालते हैं। यदि आप नहीं डालेंगे तो होता क्या है कि ये आपको लगभग जाके 25-30 दिन के बाद नोडुलेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा वो आगे स्टेज में होगा, लेकिन उस समय तो पौधे को चाहिए, तो प्रारंभिक स्टेज में चाहिए, और लीफ बढ़ाने के लिए, लीफ का एरिया बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा चाहिए, इसीलिए शुरू में आपको नाइट्रोजन डालना है। और फॉस्फोरस जो गांठ बनता है उसके लिए फॉस्फोरस बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप फॉस्फोरस भी डालते हैं। मैंने कहा कि 50 kg आप जो है 50-60 kg तक का फॉस्फोरस

0: निकालते हैं, तो वह आपको इसमें जो है क्या कहते हैं आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि ये तो नाइट्रोजन फास्फोरस की बात है। हाँ, जिस मिट्टी में पोटास कम है, पोटास भी आप 20 केजी तक डाल सकते हैं, लेकिन बिहार के कंडीशन में जो अनुशंसा है वो अनुशंसा यही 100 केजी डीएपी का है। हाँ, लेकिन यदि बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो बर्मी कंपोस्ट आपने डाल दिया खेत की तैयारी के समय डाल दिया, उसके बाद बीज को उपचारित करके आप पीएसबी भी डालना चाहते हैं तो पीएसबी भी डाल दीजिए, राइजोबियम कल्चर चाहते हैं राइजोबियम कल्चर भी डालिए। हमने बताया ही कि आप उसमें एफआईआर का प्रिंसिपल अडॉप्ट कीजिए, उसके बाद आपने इसका प्रयोग कर दिया। ये प्रयोग करके आप जो है क्या कहते हैं, फिर भी यदि मान लीजिए आपके पास उतना नहीं यदि बर्मी कंपोस्ट है कि 50% नाइट्रोजन आप उसमें सप्लाई कर सके, तो जितनी मात्रा आप बर्मी कंपोस्ट से सप्लाई करते हैं उतना बर्मी कंपोस्ट से, और शेष जो बची हुई मात्रा है जितना आपका नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है वो रासायनिक उर्वरक से आप उपलब्ध करवाते हैं। ये तरीका है
1: जी। तो बिल्कुल श्रोताओं और हमारे किसान भाइयों, आपने तरीका जान लिया। अगर आप तीनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या कुछ विधि है, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आशा करते हैं आप इस वार्ता को सुनेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा, और इस प्रकार आप वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम

थी D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में विशेष चर्चा करते हैं और हम आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात करेंगे सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं।

और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्मजीव करते हैं, जो सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी

वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है जो सूक्ष्म रीढ़ और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं, तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है, अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं, तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है।

उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी ऑब्जॉर्व करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है, मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटोहार्मोन है
वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिसको इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं। और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी

0: अच्छी तरीके से होती है। पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु। और वो क्या करता है तो इथिलीन, जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मेच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसान के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायु मंडल का जो प्रदूषण होने में, प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है। जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी

अंकुरण अच्छा होता है। जो पौधा होता है, जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज़ हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है, दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में, अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है, जो पीएसबी बायोफर्टिलाइजर है। और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन ना स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के, मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20-25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेर को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10-15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30-40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडल नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके

और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी सहवाल का कल्चर जो है वो 30-40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25-30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचड़ा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचड़ा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचड़ा का बंडल 50-100 बंडल जितना सूटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचड़ा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचड़ा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70-80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2-4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में

0: हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर। आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी

0: पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाए। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका अपना पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। तो दोस्तों, हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं और आज का भी ये खास विषय है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में। सिंचाई क्यों जरूरी है और साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से आज हमारी जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सनोज कुमार, कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। तो सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना ना भूलें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: सिंचाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंचाई का इस्तेमाल जो प्रमुखतः है वो किन किन कामों में किया जाता है।
3: किसान भाइयों, सिंचाई जल चक्रीय चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और सिंचाई का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि खेतों में जरूरी पानी को डालने के लिए किया जाता है, वो तो है ही। इसको और भी अच्छे तरीके से कहें तो छोटी अवधि के अगर सूखा पड़ा या ऐसे ही दूसरे समय में जरूरी जल को प्रदान करने में होता है, या मिट्टी में अगर लवण आ गया है, नमक आ गया है, तो उसको घोलने के लिए भी हमको सिंचाई के पानी को डालना पड़ता है। अगर हम कृषि रसायन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे केस में भी हमको सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करना है, पौधों को बढ़त के लिए तो करना ही है। साथ ही साथ पौधों को बढ़त के लिए, जो सिर्फ पौधे नहीं उनके अगल बगल के जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए भी सिंचाई जल का प्रयोग होता है, और कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो हैं आप मुख्यतः आप कह सकते हैं कि ये सिंचाई के कार्य हैं।
0: तो सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं और भी अन्य काम किए जाते हैं सिंचाई से, आपने जाना जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। सर, ड्रिप सिंचाई के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस प्रणाली के बारे में, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत के ढलान, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों में अपनाई जा सकती है। ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की जो होती है गुणवत्ता बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। रसायन और उर्वरकों का हम दक्ष इस्तेमाल कर पाते हैं, जल के विचालन एवं अप्रवाह में कमी आती है, खरपतवारों में कमी आती है, और साथ ही साथ चूंकि हमारी दक्षता बहुत ज़्यादा है 80 से

0: 90% है, तो जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में इमीटरों और ड्रिपरों की सहायता से पानी जो है पौधे के जड़ों के पास डाला जाता है या मिट्टी के सतह अथवा उसके नीचे ये पानी पहुंच जाता है, और इसकी दर है जो कि 2 से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे, अर्थात बहुत ही कम होती है। और जल्दी जल्दी सिंचाई करके मिट्टी में नमी का स्तर हम अनुकूल रख सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल अनुप्रयोग की दक्षता चूंकि बहुत उच्च है। विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। जैसे कि अंत में ये कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई आज की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपहार के रूप में मिली जल जो है असीमित और मुफ्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जल का उचित उपयोग करें। विश्व जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है, सभी लोग जानते हैं।
1: जी बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से ये जल की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन में, उस समय में हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली ही अपनाना चाहिए। इससे बहुत जल्दी सिंचाई होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। डॉक्टर साहब, और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो थोड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।
0: ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय में और मजदूरी में जो खर्च होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। लंबे समय में आप देखेंगे तो जड़ क्षेत्र यानी कि जहाँ पर मिट्टी का पौधे का जड़ है में पानी सदैव जितना जरूरी है पौधे को उतना बना रहता है। जमीन में हवा या जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि बहुत ही तेजी से और एक समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पौधा बहुत आगे बढ़ गया, ऊँचा चला गया और एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी पौधे आपको देख के ही लग जाएगा एक समान है और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा रूल है कि पानी को बहुत ही कम स्पीड, कम गति से दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
1: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएँ हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
0: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है।
1: जी।
0: टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा, पानी, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की वो 80 से 90% है, और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30 से लेकर 60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरिगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आज के डेट में ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। फिर जमीन आपका, अगर उबड़ खाबड़ जमीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर जमीन है, शुष्क जमीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा है आपकी ज़मीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय ज़मीन हो, कैसा भी ज़मीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर रासायनिक खाद, हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि पौधे तेजी से बढ़ें, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में हम पानी के साथ ही रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंचाई के साथ साथ हम फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी एक ही साथ दोनों डाल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा समय का भी बचत होता है और साथ ही साथ हमारे पौधे के लिए भी वो बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल।
0: अगला है खरपतवार। अब सब किसान बंधु सभी जानते हैं कि जैसे ही हम सरफेस इरिगेशन या सतही सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत में हर एक जगह पानी पहुंचता है। अब जहां जहां पानी पहुंचेगा खरपतवार भी उगेगा ही उगेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में, तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट और रोग का प्रभाव है, तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक

0: विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हैं जो मुख्य लाभ हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
0: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं जैसे कि नंबर वन है हेडर असेंबली, फिर फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है, वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है, यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक, वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़ते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है, ठीक है। सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमीटर्स होते हैं, और इमीटर्स भी बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, इनलाइन है, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली। हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो हैं वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूँकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जिससे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ पानी को यूज करें। साफ़ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही हम अपने मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं हमारे। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोलें तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर ना निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है। सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन जो कि फर्टिगेशन बेसिकली कहा जाता है। तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है? तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास। और इस पद्धति से

0: तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं। और डालेंगे कहाँ, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को और वो पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं। यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में, मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लेटरल में, और लेटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझ किसान, ठीक है। तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन। तो मेन लाइन है यह पंप से सब मेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सब मेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुंचाने के लिए उपयोगी है। अब सब मेन क्या है, तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है। लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सब मेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा, और सब मेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है। और वो जाएगा लैटरल के पास फाइनली। लैटरल क्या होता है, लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, उनको पॉली ट्यूब भी कहते हैं। सब मेन का पानी पॉली ट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुंचा सकते हैं पौधों के पास। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉली ट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे। और लैटरल जो होते हैं ना, वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन से बने होते हैं। अब जब लैटरल आ गया तो लैटरल के ऊपर अब हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो इनलाइन ड्रिपर्स का प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसे ही कुछ भी लगा लिया, उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल्व्स का यूज करते हैं, तो पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि पानी मेन लाइन से सब मेन में आएगा, सब मेन से लेटरल में जा ही नहीं रहा, जब वो दबाव से नहीं जाएगा तो ड्रिपर से पास ही नहीं होगा पानी, ठीक है। तो हमको बहुत सारे वाल्व्स का प्रयोग करते हैं। सब मेन के शुरू में एयर रिलीज वाल्व यूज करते हैं या वैक्यूम रिलीज वाल्व, बहुत ही जरूरी है लगाना, अन्यथा क्या होगा, पंप को हम जैसे ही बंद करेंगे हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी अंदर खींच जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे आपके ड्रिपर्स के पास, और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बंद कर देंगे, और जैसे ही बंद होगा तो आपके ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा। ना आप इरिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमीटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज़ करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हरेक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी की गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा, तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है, या कहीं

0: लीकेज तो नहीं हो गया है, अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें, पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें।
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर, कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ तो उसको आपको रिपेयर करना है।
1: अच्छा।
0: फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका ज़मीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं, कहीं पर हो सकता है पानी गया हो कहीं पर नहीं, यानी जहाँ पर नहीं गया है वहाँ पर ऑब्वियस है कि वहाँ पर पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स हैं वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना उसको खोल कर पानी को 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोल रहे हैं, जितनी भी गंदगियां हो सारी के सारे निकल जाए बाहर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है, जब दोनों काम एक साथ होता है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुँचाना यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है, यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर, वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र अगर हम पूरे खेत में फेंक दें तो पौधा को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है, इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में उगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की, साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक की पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और ज़मीन में नीचे नहीं जाता है जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया, कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है, और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है।
1: जी।
0: ठीक है, उसी तरीके से जल के उपयोग

0: की दक्षता है। तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में, जबकि सतही सिंचाई में सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है, ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य ज़रूरत है, जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूंकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं जिससे कि हम उसको यूजेबल बना के, मतलब उपयोगी बना करके हम खेतों में भेज सकते हैं, लेकिन सतही सिंचाई जब हम करेंगे और खारे जल के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा खेत ही लवण मतलब साल्टी ये सब हो गया और खेत बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कि बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की समस्या। देखिए, पौधों के आसपास वायुमंडल में नमी और सांद्रता जो होती है ना वो कम होती है ड्रिप इरिगेशन में, इसलिए पौधों में बीमारियों और कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम रहती है, जबकि सतही सिंचाई में बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला फायदा यह है कि अगर मेरे पास कोई सी भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हम सिंचाई वहाँ पर कर सकते हैं, हम पौधा मतलब वहाँ पर उगा सकते हैं, लेकिन सतही विधि में ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचा रह सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ पे पानी जाएगा नहीं, जो बहुत ज़्यादा नीचे होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पौधा हमारा ना नीचे जगह पे उगेगा ना ऊपर जगह। लेकिन ड्रिप में ऐसा नहीं है क्योंकि पाइपों से पानी जाते हैं और पौधे के पास ही जाके गिरने हैं उनको, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का इरिगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही महंगे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दे, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने, ठीक है। हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है अब हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी जो है कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बह के दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी। जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्म, वो नहीं रहता और पौधों की वृद्धि बहुत तेज़ी से और अच्छे से होती है, ठीक है। और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरिगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में उबड़ खाबड़ आने की वजह से, ठीक है। तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल भी हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज़्यादा होता है और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है
1: जी। तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनना ना भूलें FM ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।

खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे।

0: टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे, देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल है। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका

किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
12: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को

पाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न।

0: टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे, देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
5: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा

हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी
पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर

0: अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में वयस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार हमेशा की तरह। आप बच्चों से जब बात ना हो तो कुछ सूना सूना लगता है, मन उदास रहता है, लेकिन जैसे ही आप बच्चों से बात करने का मौका मिलता है मन बहुत खुश हो जाता है। खुशी की बात तो ये है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक नन्हे मेहमान आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नन्हे मेहमान कौन है और आप इनका नाम भी जानना चाह रहे होंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बस हमारा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो हम आपको इनका नाम बता देते हैं। ये नन्हे मेहमान है आस्तिक। आस्तिक आप ही की तरह स्कूल में पढ़ते हैं और अभी आजकल फिलहाल ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए ही अपनी टीचर से बात कर लेते हैं और अपने दोस्तों को भी देख लेते हैं और गपिया लेते हैं। गपिया लेना मतलब? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को गपियाने का मतलब नहीं पता होगा। अरे भाई, गप मारना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत क्रिएटिव एक्टिविटी है गप मारना। गप मारने को बात करना भी कहते हैं, तो इसलिए हमने अपना शब्द बना लिया और हमने इसे कहा गपियाना। तो आज हमारे बीच गपियाने के लिए मौजूद हैं आस्तिक जी, तो मैं झटपट आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक, हमारी आप बात सुन रहे होंगे, बच्चों के साथ हम कैसे बात करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हमारे सामने बच्चे तो है नहीं, तो फिर हम उनसे ऐसे कैसे बात कर लेते हैं, लगता होगा ना?
2: हाँ।
1: और ये लगता होगा कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, है ना?
2: हाँ।
1: लेकिन बच्चे हमसे चाहे कितना भी दूर क्यों ना बैठे हों, लेकिन सारे बच्चे हमारे मन के नजदीक हैं, है ना?
2: हाँ।
1: तो आज हम बात करेंगे कुछ चीजों की और उन चीजों के नामों में जो आवाजें आई हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है?
2: ठीक है।
1: तो हम पहले अपने स्कूल के खेल के मैदान की बात कर लेते हैं और उसकी बात भी कर लेते हैं कि खेल के मैदान में हम कौन कौन से खेल खेलते थे। कुछ याद है आस्तिक आपको कि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे?
2: हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई और बर्फ पानी खेलता हूँ।
1: हम भी अपने दोस्तों के साथ खूब खेल खेलते हैं और बच्चों के साथ खेलना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम छुपन छुपाई खेल खेलते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना आस्तिक कि कुछ चीजों के तो हम पीछे छिपते हैं और कुछ चीजों के हम नीचे छिपते हैं।
2: हाँ।
1: कुछ याद आया आपको कि जब आप छुपन छुपाई खेलते थे तो आप कौन सी चीजों के पीछे छिपते थे और कौन सी चीजों के नीचे छिपते थे?
2: हाँ, मुझे याद आ रहा है। हम पेड़ के पीछे छुपते हैं, हम मेज के नीचे छुपते हैं, हम झाड़ियों के पीछे छुपते हैं और चारपाई के नीचे छुपते हैं।
1: बिल्कुल सही बताया आपने। हम पेड़ के पीछे छिपते हैं, मेज के नीचे छिप जाते हैं, झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और चारपाई के नीचे छिपते हैं। तो हमारे आसपास ऐसी कई तरह की चीजें हैं जिनके हम पीछे छिप सकते हैं और जिनके हम नीचे छिप सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको छुपने की कोई जगह ना मिले और आपके घर में आपकी अम्मा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी अम्मा के पीछे छिप जाएंगे, है ना?
2: हाँ।
1: बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वे छुपन छुपाई खेलते हैं और अगर उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलती तो वे क्या करते हैं, अपनी अम्मा के साड़ी के पल्लू में छिप जाते हैं या फिर अपनी अम्मा के पीछे छिप जाते हैं। याद आया आपको?
2: हाँ।
1: कभी आपने ऐसे छुपन छुपाई खेली है जब आप अपनी अम्मा के पीछे छिप गए हो और कोई आपको पकड़ नहीं पाया हो?
2: नहीं।
1: पकड़ लिया था?
2: हाँ।
1: क्योंकि अम्मा ने बता दिया होगा कि देखो आज तक तो यहाँ छिपे हैं।
2: हो सकता है।

0: हमारे घर में तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम चीजों के नीचे छिप सकते हैं या फिर पीछे छिप सकते हैं। अच्छा आस्ते तो ये बताइए कि हमारे घर में दरवाजा है, ठीक है, तो हम दरवाजे के पीछे छिपते हैं या दरवाजे के नीचे छिपते हैं?
1: दरवाजे के पीछे छिपते हैं।
0: अगर हमारे घर में पर्दा है तो हम पर्दे के पीछे छिपते हैं या पर्दे के नीचे छिपते हैं?
1: पर्दे के पीछे छिपते हैं।
0: और अगर बारिश का मौसम है, छाता खुला हुआ है, तो हम छाते के पीछे छिपेंगे या छाते के नीचे छिपेंगे?
1: हम छाते के नीचे छिपेंगे।
0: शाबाश, ये तो थी आस्तिक की बात और उन्होंने बताया कि हम किन चीजों के पीछे छिप सकते हैं और किन चीजों के नीचे छिप सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम आस्तिक ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम ये कहते हैं छाता या छतरी तो इसमें शुरू की आवाज कौन सी है?
1: छ।
0: वेरी गुड। और छाता में अंतिम आवाज कौन सी है?
1: ई।
0: छाता में अंतिम आवाज कौन सी है? छाता। त। और छाता में अंतिम आवाज कौन सी है?
1: त।
0: शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में छ की आवाज आती है? अब ये छ की आवाज शुरू में हो सकती है जैसे छतरी, बीच में हो सकती है जैसे मछली, और अंत में तो मुझे कहीं लगती ही नहीं। हाँ एक शब्द है जहाँ अंत में छ की आवाज आती है और वह शब्द है अच्छा। समझ में आया? तो हम आज जानेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके नाम में या जिन शब्दों में छ की आवाज है। ये शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। तो हम खेल खेलेंगे आज आस्तिक के साथ, और हम क्या करेंगे, एक शब्द मैं कहूंगी और एक शब्द आस्तिक को कहना होगा। तो आस्तिक तैयार हैं आप?
1: बिल्कुल।
0: तो हम आपसे शुरू करते हैं, आप कोई ऐसा शब्द बताइए जिस शब्द में या जिस चीज के नाम में छ की आवाज है।
1: छतरी।
0: और एक और शब्द बता सकते हैं?
1: मछली।
0: शाबाश, तो मैंने एक शब्द बताया छीलनी। छीलनी जानते हैं क्या होती है?
1: नहीं।
0: हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि दरअसल ये छीलनी है क्या। अच्छा ये बताइए आस्तिक कि छीलनी शब्द में छीलने का भाव है?
1: हाँ।
0: लगता है ना कि ऐसी कोई चीज होगी जिसे हम छीलते हैं, तो जिस शार्पनर से आप लोग पेंसिल छीलते हैं उसे हम कहते हैं छीलनी। तो मैंने शब्द कहा छीलनी और आपका शब्द क्या होगा?
1: छलनी।
0: छलनी से हम क्या करते हैं?
1: छानते हैं।
0: क्या छानते हैं?
1: हम दूध में से मलाई छानते हैं।
0: हाँ।
1: चाय में से पत्ती छानते हैं।
0: शाबाश।
1: आटे में से पत्थर छानते हैं।
0: शाबाश, तो मुझे लगता है कि आस्तिक को दूध में मलाई पसंद नहीं है, है ना? ठीक है, तो आस्तिक ने हमारे साथ अपना शब्द साझा किया छलनी, तो मैंने कहा मच्छर। आपका शब्द क्या है?
1: अच्छा।
0: जैसे हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, तो मेरा शब्द होगा कछुआ, तो आपका शब्द क्या होगा?
1: छीलना।
0: और मेरा शब्द है छूमंतर, यानी कि गायब हो जाना, और आपका शब्द क्या होगा?
1: छींक।
0: और मेरा शब्द है छे, तो आपका शब्द क्या होगा?
1: छेद।
0: और मेरा शब्द है छोड़ना, और आपका शब्द क्या होगा?
1: पीछे।
0: वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होंगी जिनके नाम में छ की आवाज है। ये आवाज शुरू में हो सकती है जैसे छतरी, ये आवाज बीच में हो सकती है जैसे मछली और मच्छर और कछुआ, ये आवाज अंत में हो सकती है जैसे अच्छा। ठीक है आस्तिक?
1: ठीक है।
0: हम एक और आवाज की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं छतरी तो अंत में आपको किसकी आवाज सुनाई देती है?

0: शाबाश, और ये जो ई की आवाज है ये किसके साथ मिलकर आ रही है?
1: छतरी,
0: यानी र के साथ हम कहते हैं री, है ना? तो आज हम इसी ई की आवाज की बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे ईक। ईक में शुरू की आवाज क्या है?
1: ई।
0: शाबाश, और ये शब्द है ईक। एक और शब्द हमारे पास है जिसमें ई की आवाज है, और यह शब्द है आई। लेकिन ये ई कहाँ है, शुरू में है या अंत में है?
1: अंत में है।
0: वेरी गुड। एक और शब्द हमारे पास है गई। ये ई की आवाज कहाँ है, शुरू में या आखिर में?
1: आखिर में।
0: वेरी गुड। पकड़ाई, ई की आवाज कहाँ है?
1: अंत में।
0: शाबाश। अच्छा, चारपाई कहें तो?
1: अंत में।
0: वेरी गुड। तो हमने ये जाना कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ ई या तो शुरू में आता है जैसे ईक, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ ई अंत में आता है जैसे आई, गई, पकड़ाई, ठीक है, और चारपाई। और चारपाई के नीचे हम छिप जाते हैं जब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे वाह, छुपन छुपाई में भी तो छह की आवाज है, हम तो भूल ही गए थे।
1: हाँ।
0: हमने आज जाना कि ई की आवाज को हम कैसे पहचानेंगे। ये ई की आवाज अगर किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर आती है तो उसकी भी आवाज ई जैसी हो जाती है, जैसे की। और एक और शब्द आप बताएंगे?
1: चीनी।
0: शाबाश। चीनी में च और न दोनों में ई की आवाज है ना?
1: हाँ।
0: एक और शब्द हमारे पास है चील। इस चील शब्द में शुरू में आपको ई की आवाज सुनाई देती है या आखिर में?
1: शुरू में।
0: वेरी गुड। और नदी में?
1: आखिर में।
0: वेरी गुड। पीली में?
1: दोनों में।
0: वेरी गुड। पीली शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें ई की आवाज शुरू में भी है और अंत में भी है, यानी पीली। ऐसा ही एक और शब्द है नीली। नीली में ई की आवाज कहाँ कहाँ है?
1: दोनों जगह पे।
0: दोनों जगह मतलब?
1: मतलब न पे भी है और ल पे भी है।
0: शाबाश, यानी शुरू में भी है और अंत में भी है। एक और शब्द हमारे पास है गुलाबी। तो ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: और आप कौन सा शब्द बताएंगे?
1: हरी।
0: अब हरी में ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: वेरी गुड। और मेरा शब्द है नारंगी। तो ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: और आपका शब्द क्या होगा?
1: गठरी।
0: वेरी गुड। और गठरी में ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: शाबाश। तो अभी हमने आस्तिक के साथ मिलकर ये जाना कि हम छ की आवाज को कैसे पहचानेंगे और ई की आवाज को कैसे पहचानेंगे। आस्तिक, अब आप ये बताइए कि अगर आपको छ और ई की आवाज को सुनकर और देखकर पहचानना हो तो क्या पहचान लेंगे?
1: बिल्कुल।
0: शाबाश। अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग आवाज आती है, यानी अलग अलग अक्षरों का इस्तेमाल होता है। जैसे एक शब्द है हमारे पास मछली, ठीक है? मछली में पहली आवाज किसकी है?
1: म की।
0: और दूसरी आवाज किसकी है?
1: छ की।
0: और तीसरी आवाज किसकी है?
1: ल की।
0: शाबाश, यानी मछली में तीन आवाजें हमारे पास हैं, म, छ और ली। तो ये शब्द है हमारे पास मछली, ठीक है? अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक शब्द है अलमारी, तो इसमें शुरू में कौन सी आवाज है?
1: अ।
0: और उसके बाद कौन सी आवाज है?
1: ल।
0: उसके बाद?
1: म।
0: और अंत में?
1: र।
0: शाबाश, यह शब्द बना अलमारी, ठीक है? अब आपको बताना है कि क्या अलमारी में अ की आवाज है?
1: हाँ।
0: क्या अलमारी में न की आवाज है?
1: नहीं।
0: वेरी गुड, खूब समझदार हैं।

0: ठेला, ठेला में क्या छ की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या म की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या अ की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या न की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या ठ की आवाज है?
1: हाँ
0: हाँ, ठेला में एक आवाज तो है ठ, और दूसरी आवाज कौन सी है आस्तिक?
1: ल।

0: बताइए क्या नाव शब्द में म की आवाज है?
1: नहीं।
0: अ की आवाज है?
1: नहीं।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और व की आवाज है ना?
1: हाँ।
0: तो ये शब्द हमारे पास है नाव। अब एक और शब्द हमारे पास है नल। तो क्या इस नल शब्द में म की आवाज है?
1: नहीं।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और ल की आवाज है?
1: हाँ।
0: शाबाश। और अगर हम ये कहें अनार, ठीक है, हम कहें अनार, अनार लाल रंग का होता है, तो बताइए अनार में ठ की आवाज है?
1: नहीं।
0: छ की आवाज है?
1: नहीं।
0: म की आवाज है?
1: नहीं।
0: अ की आवाज है?
1: हाँ।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और एक और आवाज कौन सी बची?
1: र।
0: शाबाश। तो हमने ये जाना कि अनार में हमारे पास तीन आवाजें हैं, अ की आवाज है, न की आवाज है और र की आवाज है, ठीक?
1: हाँ।
0: तो आज हमने आस्तिक के साथ मिलकर छ और ई के बारे में जाना। तो आप भी ऐसे बहुत सारे शब्द सोचिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए जिनमें छ की आवाज है और ई की आवाज है, ठीक है आस्तिक?
1: ठीक है।
0: आपको आज मजा आया?
1: बहुत ज्यादा।
0: हमें भी आस्तिक के साथ बात करके बहुत मजा आया और मुझे यकीन है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी आस्तिक के साथ बात करके बहुत मजा आया होगा। तो आप ऐसे शब्द सोचिए और लिख डालिए झटपट अपनी कॉपी पर, यानी छ और ई की आवाज वाले शब्द। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम में छ और ई की आवाज है, तो उन चीजों की तस्वीर बनाइए और ये भी बताइएगा कि वे चीजें आपको कहाँ दिखती हैं। यानी आपको एक तस्वीर नहीं बनानी, यानी आपको अनार, अलमारी, छतरी, मछली, ठेला, नाव, ये अलग अलग नहीं बनाना, बल्कि आपको ये भी बनाना है कि ये सारी चीजें हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। जैसे ठेला बाजार में नजर आता है, तो आपको बाजार बनाना है और वहाँ बनाना है ठेला, है ना? और आपको बनानी है मछली, तो आपको समुद्र बनाना है या तालाब बनाना है, तालाब के आसपास का हिस्सा दिखाना है जहाँ खूब घने घने पेड़ हैं, और फिर तालाब में आपको बनानी है मछली। तो ऐसे ही आप तस्वीर को खूब बड़ा करके खूब अच्छे से बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए। हम आपकी तस्वीरों को आपकी ही बाल पत्रिका फिक्की बच्चों में छापेंगे। तो हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। मैं पता एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो बच्चों आज आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया। तो इस मजे मजे में मजेदार तरीके से क्यों ना आस्तिक जी का धन्यवाद दे दिया जाए, ठीक है? तो आप बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आस्तिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए और हमारे साथ मजेदार बात करने के लिए। तो आस्तिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: हम आस्तिक जी के साथ दोबारा मिलेंगे और चर्चा करेंगे कुछ नई आवाजों पर, कुछ नई बातचीत पर और कुछ नए खेलों पर। तब तक के लिए मैं और आस्तिक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहयोग विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
11: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
10: और लाइट बिल के
11: अब 0 रुपए कैसे दूं?
10: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है, पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें, बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ

0: ग्रीन पर
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि नमस्कार मेरे किसान भाइयों को और साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स हैं श्रोतागण हैं उन सभी को आपकी आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोतागण आपको बता दें कि कई प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो हमारे लिए खतरे के तौर पर बहुत सारी जो बीमारियां हैं बहुत सारे जो संकट हैं वो हमें देकर जाते हैं। हम मनुष्य हैं तो हम अपना इलाज करवा लेते हैं लेकिन जो पशु जिसे हम पालते हैं वो बता नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या जो परेशानियां चल रही हैं और कुछ सिम्टम्स उनके अंदर हमें नज़र आती है वो हमें समझनी होती है। तो फिलहाल अभी बाढ़ की बात करते हैं और हमारे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आए हुए हैं और इस प्राकृतिक आपदा से हम ग्रसित हैं और इस समय देखा जा रहा है कि बाढ़ का पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कहा भी जाता है कि बाढ़ का जब पानी चला जाता है तो वो बहुत सारी बीमारियाँ छोड़ कर जाता है और ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम अपनी खास देखभाल रखें और साथ ही जो हमारे पालतू जानवर हैं पशु हैं उनकी खास देखभाल का जो एक इंतजाम है वो करें। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज का विषय है हमारा कि बाढ़ उपरांत पशुओं की देखभाल हम कैसे करें और ख़ास तौर पर पशुओं के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अमित कुमार जी हैं जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग पशुपालन और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब अभी देखा जा रहा है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने कितना कहर मचाया है और लोग काफ़ी परेशान हैं इस वजह से। जहां तक पशुओं की बात है तो पशुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाढ़ आ जाता है तब पशुओं के लिए क्या क्या समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।
2: देखिए हम इंसान इस प्राकृतिक आपदा में जैसे खुद को संभालते हैं खुद को बचाते हैं बिल्कुल उतना ही ध्यान उतना ही व्यवस्था होना चाहिए हम अपने पशुओं के लिए करें, क्योंकि पशु जो हैं आपसे कुछ कहते नहीं हैं लेकिन वो परेशानी उतना ही भुगतते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए जो चारा है वो सारा डूब जाता है, खेत खलिहान सब डूब जाता है, रहने का घर हमारा भी डूबता है और पशु का भी डूबता है। हम लोग सब वहाँ से डूबे हुए क्षेत्र से भाग करके ऊंचे स्थान पर सड़क पर शरण लेते हैं
0: सूखे
2: क्षेत्र में, तो वहाँ पशु भी रखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो खाने की होती है, पशु के लिए हरा चारा का बिल्कुल अभाव हो जाता है और जो सूखा चारा होता है या जो आप अनाज भी रखते हैं उसमें बहुत सारा फफूंदी विकसित हो जाता है। तो ये बाढ़ के कारण आर्द्रता भी बहुत होती है, बरसात होता है और आप जो भी खाना खिलाएंगे फफूंदी लगा हुआ रहेगा, तो इसमें अफ्लाटॉक्सिन्स का एक समस्या आता है, पशु का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके खाने पीने में आप बिल्कुल सावधानी बरतें, कहीं से यदि चारा डूबा हुआ क्षेत्र से भी लाते हैं तो उसको बिल्कुल साफ पानी से धो लें, उसको धूप में थोड़ा सुखा लें। तो जो हरा चारा आप निश्चित रूप से होता है, हम देखते हैं अक्सर कि किसान डूबे हुए खेत में भी चारा काट करके लाते हैं, ठीक है वो आप खिला सकते हैं, लेकिन होता क्या है जो जल जमाव है, जल जमाव में बहुत सारा बीमारी का दूषित पानी पड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से चारा को भी दूषित कर देता है और बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं जो नेमेटोड्स स्टोर्स लीवर फ्लूक है इंटेस्टाइन बर्म है उसका लार्वा इस घास पे पानी के द्वारा पहुंचता है और वहाँ घास को आप ला के डायरेक्ट खिलाएंगे तो पेट में जोंक होता है, कीड़ा फड़ता है, लीवर फ्लूक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हरा चारा पहली बात तो उसको आप बिना डूबे हुए जगह से काटें, डूबा हुआ जगह से काटते हैं तो उसको साफ पानी से ताज़ा पानी से धो लें, हो सकता है धूप में भी सुखा लें, उसके बाद खिलाएं। अच्छा। ये सावधानी रखनी।
0: किसान भाइयों और हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें हम बता देंगे, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो समस्याएं वो हैं सबसे पहले तो पशुओं के लिए आ जाती हैं कि उनके चारे की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आप डूबे हुए क्षेत्र से अगर चारा काट कर लाते हैं तो आप खास तौर पर उन चारों को पहले साफ पानी से धो डालें और उसके बाद उसे सुखाएं और उसके बाद अपने पशुओं को चारे के तौर पर खिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर चारे की बात हो गई और मेनली जो है वो चारे का ही दिक्कत हो जाता है पशुओं के लिए। और इसके बाद जब आहार प्रबंधन की बात आती है तो आपने चारे की बात की लेकिन आहार प्रबंधन अगर सम्मिलित तौर पर बातें करें आहार प्रबंधन के बारे में तो उसके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं?

0: ये जहाँ तक बात है खाने की, पशु की, तो निश्चित रूप से एक किसान को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक पशु को दिन भर में कितना खाना मिलना चाहिए। तो आप उसके अनुसार उसका खाना तैयार करते हैं, देते हैं, लेकिन बाढ़ के स्थिति में सब जगह डूबा हुआ हो तो आप बहुत कम अनाज देते हैं, निश्चित रूप से उसके उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा, दूध घट जाएगा। जबकि अगर आपके पास उपलब्ध है, यदि भूसा भी खिलाते हैं तो धूप में सुखाएं, लेकिन एक पशु को, एक जो दूध देने वाली गाय है, प्रतिदिन 7 से 8 किलो भूसा दें आप, और हरा चारा 10-12 किलो भी होता है तो अच्छी बात है, 15 से 20 किलो दिया जाता है, लेकिन इस सीजन में अभाव होता है, आप कम से कम 5 से 7 किलो सूखा चारा और 10 से 12 किलो हरा चारा और अनाज कम से कम 1-2 किलो उसको मेंटेनेंस राशन के रूप में दिया जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और मान लेते हैं कि आप कुछ अनाज खरीद करके लाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र से नहीं लाएं जहां से कोई बीमारी फैला हो या जहां पर बहुत पानी में भींग गया हो अनाज, वैसे अनाज को खिलाने से परहेज करें, साफ अनाज दें। और बिल्कुल आप पशु को जो खिलाते हैं उसके बाद देखें कि उसके प्रोडक्शन पर कोई ड्रास्टिक असर तो नहीं पड़ रहा है, आज खाना खिलाया और कल से वो खाना भी खाना बंद कर दिया और दूध भी देना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से वो बहुत दूषित आहार होगा पशु के लिए, तो ऐसे खाना खिलाने से परहेज करें।
1: यानी कि जैसे कि हम मनुष्य साफ सुथरे जो भोजन करते हैं उसी तरीके से उन्हें भी वो जो चारे या फिर जो भी अनाज आप देते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, और नहीं तो उनके प्रोडक्शन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब, देखा गया कि बीमारियों के बारे में मैंने कहा कि जैसे ही बाढ़ जाते हैं तो बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं, हैजा, कोलरा वगैरह, जो जो जो मनुष्य जिससे प्रभावित हो जाते हैं, तो पशुओं की बात हो रही है तो पशु ऐसे में कौन से बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं बाढ़ के उपरांत?
0: देखिए, बाढ़ के बाद जो है मुख्य रूप से लीवर फ्लू का जो वर्म है वो इस बाढ़ के पानी में तेज़ी से चारों तरफ फैलता है, लेकिन बाढ़ ख़त्म होते ही एक हेमराजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू कहते हैं और एक ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी बीमारी कहते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, यह बीमारी भी तेज़ी से फैलता है। निश्चित रूप से इस बीमारी के प्रति हमने टीका विकसित किया है, आप ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी बीमारी या गलघोटू, इन दोनों का टीका एक साथ आता है, आप बाढ़ शुरू होने से पहले, बरसात से पहले मई जून में ही इसका टीकाकरण निश्चित रूप से करा लें। अगर बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज भी संभव है, लंगड़ी बीमारी और गलघोटू का, लेकिन जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे उतना संभावना है कि पशु रिकवर कर जाएगा, नहीं तो अगर आप 2-4 दिन डिले करते हैं तो ये बहुत हानिकारक होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। लीवर फ्लू क्या है कि पानी में जो लार्वा ग्रो मतलब बढ़ता है वो बहुत सारे इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, स्नेल के अंदर, घोंघा के अंदर, चींटी के अंदर, ये सब में उसका विकास होता है और अंत में वो घास पे आके खड़ा हो जाता है लार्वा, और जब पशु खाता है तो उसके अंदर पेट में चला जाता है, पेट से लीवर में चला जाता है और लीवर को बिल्कुल प्रभावित करता है, उसके बाद पशु कमज़ोर होता है, उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो लीवर फ्लू के लिए आप ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिजोल नाम की एक दवा आती है, बिल्कुल आप इस बाढ़ के शुरू होने से पहले भी एक बार पिला दें और 2-3 महीने बाद, मतलब बाढ़ ख़त्म हो जाए उस समय भी पिला दें, क्योंकि हो सकता है कि पहले तो आप डिबर्मिंग कराए होंगे उसके बावजूद भी कुछ असर रह जाता है। निश्चित रूप से ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिजोल एक दवा है, डिबर्मिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग करें और टीकाकरण समय से करा लें। फिर होता है कुछ दिनों बाद, जैसे अक्टूबर नवम्बर के महीने में FMD का भी टीका करा लें। FMD फुट एंड माउथ डिजीज है, खुरहा मुंहपका रोग से जानते हैं,
1: ये जनरली जो पशुओं को होते हैं, लेकिन बाढ़ के उपरांत इसके जो होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाते हैं ना।
0: बिल्कुल, होता क्या है कि कभी कभी आप देखते होंगे पानी में मरा हुआ पशु फेंका हुआ है,
1: हाँ।
0: मर जाता है पशु, बिल्कुल
1: जानवर।
0: उसको डिस्पोज करने का व्यवस्था नहीं होता है, जनरली गड्ढा खोद करके उसके नीचे दबा देना चाहिए मरे हुए पशु को, लेकिन बाढ़ की स्थिति में आप देखेंगे पानी में ढेर सारा पशु मर करके बिल्कुल फेंका हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा पानी दूषित होता है और आसपास के क्षेत्रों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। कहीं भी आप देखें मरे हुए पशु को तो उसको बिल्कुल उससे अलग हट जाएं, उसको हम व्यवस्था करना चाहिए, हमें उसको कि गड्ढा खोदकर उसके अंदर दाब दें। हम सरकार इस दिशा में पहल कर रही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके मृत पशु को वहाँ से हटाकर एक डिस्पोजल व्यवस्था के अंतर्गत डिस्पोज किया जाए, और सुरक्षित किया जाए बाद मां की जीवित पशुओं को। और आजकल एक और

0: व्यवस्था पर कुछ लोग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी उस पर काम शुरू हो रहा है कि फॉडर बैंक बनाया जाए चारा का। जब सरप्लस होता है, कभी कभी प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय हम अधिक उपज को काट करके चारा को उसको साइलेज के रूप में, हे के रूप में सुरक्षित करते हैं और फॉडर बैंक की तरह स्टोर करते हैं। तो वहाँ से जब जरूरत होती है, बाढ़ के समय में अभाव होता है, तो हम वहाँ से खरीद करके पशु खिला सकते हैं। ऐसा देखा गया कि पिछले समय बाढ़ के समय जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ चारा का, तो हम दूसरे राज्यों से चारा का आयात करवाए थे। तो ऐसी स्थिति में आप संपर्क कर सकते हैं नज़दीक के किसान से, जिनके पास फॉडर बैंक हो, जहाँ फॉडर उन्होंने जमा किया हो, वहाँ से भी आप सुरक्षित चारा ले सकते हैं।
1: तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी मिली हमारे जो पशुपालक भाई, हमारे किसान भाई और हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें, कि कैसे बाढ़ के उपरांत पशुओं की देखभाल होनी चाहिए। बीमारियाँ सबसे ज़रूरी होता है कि उनके उन्हें बीमारियों से बचाया जाए, और जब वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया आपको टीकाकरण के बारे में, और इसके साथ ही यहाँ पर आहार प्रबंधन के बारे में हमने जाना। तो अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए जब भी संभावना हो बाढ़ का, तो आप पहले से ही तय कर लें कि यदि पानी आता ही है तो हम बाढ़ के समय में कहाँ जा कर के शरण लेंगे। और इस समय में एक खाने के लिए बहुत अच्छा होता है स्रोत पेड़ पौधे की पत्ती। आपके घर के आसपास जामुन का, नीम का, पीपल का, नीम का पत्ती भी पशु खाते हैं, बकरी तो खूब खाती है। तो जो भी पौधा है, फल का पौधा है आपके अगल बगल में, तो उस पौधे का पत्ती भी आप पशु के लिए उपयोग कर सकते हैं चारा के रूप में। और दूसरी बात होती है कि जहां आप पशु को ले जाते हैं, बिल्कुल वहां पर ऐसा ना हो कि पानी के अंदर डाले हुए हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कीचड़ में पशु को रखे रहते हैं, नहीं, अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पशु का जगह बदल दें। एक आज यहाँ डाले, कल थोड़ा अलग हटा के डाले, एक ही जगह पर पानी के अंदर बहुत देर तक खड़ा रहने से खुर के बीच में भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, फिर वहाँ पर घाव होता है, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, उसमें लेमनेस नाम की बीमारी आती है। तो आप बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए आप एक जगह सुरक्षित कर लें, वहाँ पशु को रखें, और कभी कभी सूखा क्षेत्र का अभाव हो तो पशु का जगह बदलें और साफ ताज़ा पानी से उसको रोज़ स्नान कराएं। होता है कि गंदे पानी में बैठा रहता है और लगातार 3-4 दिन तक पशु को देखेंगे एक खुट्टा में बंधा हुआ है। आप ये ना करें कि पशु को ज़बरदस्ती कहीं पर एक ही जगह पर बांध करके रखें। यदि दूषित जगह भी है तो आप उतना सूखा नहीं रख सकते, तो पशु को थोड़ा जगह बदलते रहें और साफ स्वच्छ जगह में रखें।
1: तो आप सभी ने सुना श्रोतागण कि पशुओं को साफ स्वच्छ जगह में रखें। अगर आप एक जगह बांध कर रख रहे हैं और वहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है, तो उस जगह से अपने पशुओं को हटा दें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस दिख सकते हैं उस समय। और डॉक्टर साहब, आपने विस्तार में इसकी जानकारी दी हमें बाढ़ के उपरांत पशुओं की देखभाल कैसी करनी चाहिए। डॉक्टर अमित कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो श्रोताओं और हमारे किसान भाइयों, साथ ही पशुपालक भाइयों, आप सभी से एक बार फिर मैं वादा करती हूँ कि फिर से आप सभी के लिए एक नए विषय के साथ हाजिर रहूंगी। 90.8 FM ग्रीन सुनते रहिए, और हाँ बिल्कुल उन्नत कृषि कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal.

0: vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request, protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: See you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।

0: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
1: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: राम सिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाएं। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे।
0: लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए।
1: अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया।

0: अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी साहब।

0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थीं। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते।
2: राम सिंह, नीचे उप, नीचे। डक्कर, फायर को डक्कर।
3: जी सर,
2: मैं लोड करता हूँ, मैं लोड करता हूँ। जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूं असले का। फायर। हुकम सिंह।
3: जी सर।
2: एलएम जी सवाल में छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन

0: गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
1: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
2: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
2: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा।
4: साहब, यही मशीन गन।
3: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी साहब।
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को।
4: जल्दी करो।
3: जी साहब।
4: बांध दिया साहब।
3: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ साहब, बांध।
3: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी साहब।
3: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
2: संभल कर, संभल कर।
3: सब यहां सर टिका लीजिए।
2: सर ऐसे से
5: कालिका माता की जय।
1: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगे। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
5: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
1: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए ऊबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
5: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
3: साहब,
5: तुम लोग आगे निकलो।
2: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
5: नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
2: नहीं साहब।
5: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
2: नहीं साहब, नहीं।
5: यही आदेश। इट्स एन ऑर्डर।
2: सर,
5: जाओ। अलविदा, अलविदा दोस्तों।
0: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह

0: वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
1: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
2: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
1: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूँ।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।

अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शमाइला परवेज, बावला कोचर, आर एस रघु और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्श विमलेश चौधरी और वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहायक अमित कुमार, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए

पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

ഭാരത് കൃഷി 90.8 മെഗാഹെർട്സ് പർ ആപ് സുൻ രഹേ ഹേ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु को और किसान भाइयों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और वैसे तो पता है किसान भाइयों आप सभी को कि हम इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ अलग अलग रंग यानी कि अलग अलग विषय और उन पर अलग अलग चर्चाएं। तो आज भी कुछ खास बातें आप सभी के साथ हम करने जा रहे हैं। इस खास और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनिता कुमारी, वैज्ञानिक गृह विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और किसान भाइयों, आप सभी को पता है मशरूम उत्पादन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो गया है हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो मांग है वो बाज़ार में बढ़ती जा रही है और इसके फ़ायदे भी हैं। इसके खाने से बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं हमें। और जहाँ तक बात होती है इसके उत्पादन की, तो आप सभी को पता है कि इसमें जो भूमिहीन किसान है हमारे, वो भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। वो एक कमरे में ही इसका उत्पादन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लाभ कमा सकते हैं आर्थिक स्तर पर। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी होता है इसका मूल्य संवर्धन, यानी कि मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैम, सबसे पहले हमने कहा कि मूल्य संवर्धन यानी कि मशरूम के मूल्य

0: संवर्धित उत्पाद के बारे में जाना है हमें, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि मशरूम का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी है।
1: मूल्य संवर्धन इसलिए जरूरी है कि मशरूम जो है उसका उसमें नमी की मात्रा काफ़ी होती है, लगभग 90% नमी होती है। यदि हम उसके कुछ मूल्य संवर्धित उत्पाद बना लेते हैं तो उससे न केवल उसका लाइफ बढ़ जाता है बल्कि उत्पादक को उचित मूल्य भी मिल सकता है।

0: खाद्य पदार्थ तथा विभिन्न स्तर पर इसका मूल्य संवर्धन हम लोग कर सकते हैं।
1: तो ये बात हो गई मैम कि जैसे उसके तुड़ाई के बाद ही मूल्य संवर्धन इसका किया जा सकता है, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए।
0: मूल्य संवर्धन जैसे तुराई के बाद से हमारा शुरू होता है, मान लो कि साइज अलग अलग है, तो हम लोग यदि एक साइज के मशरूम को एक साथ करें, पहले तो हम उसका श्रेणीकरण करेंगे, यही आप हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं कि यदि हम एक साइज के मशरूम को एक साथ पैकेटिंग करेंगे तो हमको मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, जब मशरूम की तुराई करते हैं तो कुछ मशरूम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इस आधार पर भी हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं कि जो ज़्यादा मैच्योर है मशरूम उनको एक साथ कर दें, जो नॉर्मल है उनको एक साथ कर दें। तो इस तरह से ये सब हम तुराई उपरांत इस तरह की मशरूम श्रेणीकरण कर सकते हैं, ये भी एक स्टेप है हमारा मूल्य संवर्धन का। इसके बाद हम उसके विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर, जैसे ऐसे मार्केट में हम मशरूम को बेचें और उसके विभिन्न तरह के उत्पाद बना के बेचें, तो हमको मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, प्लस जो ऑफ सीजन है जिस वक्त वो उपलब्ध नहीं रहता उस समय भी हम उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है।
1: यानी कि जब मशरूम का मूल्य संवर्धन कर दिया जाता है तो उसके बाद उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा अच्छी कमाई होती है उनकी। तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने मैम। और इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे कि मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पाद क्या क्या हैं, उन्हें भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: ऐसे यदि हम बात करें तो हमारे देश में जो अभी जो मूल्य संवर्धित उत्पाद जो मुख्य रूप से मार्केट में है वह मशरूम का सूप पाउडर है, लेकिन बहुत तरह के उत्पाद तैयार हैं जिसको कि मार्केटिंग मार्केट में लाया जा सकता है, उसके प्रचार प्रसार किया जा सकता है। जैसे आपका मशरूम आधारित बिस्किट, बड़ी, मुरब्बा, नूडल्स, कैंडीज, ये सब भी हम इसके मार्केट में इसको ला सकते हैं और व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और हम जो भी सोच सकते हैं मशरूम के हर तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो अचार की हम बात करें या हम केचप की बात करें, हम सारा चीज़ हमारा मशरूम का मूल्य संवर्धित उत्पाद बनता है।
1: तो ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे तो मशरूम हम अगर ऐसे ही खाते हैं सब्जियों में इसे बनाकर तो काफ़ी टेस्टी लगता है, और इसके आपने उत्पाद भी बताए जैसे कि अचार, मशरूम सूप और मशरूम बड़ी। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सुखौता भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इसका, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुखौता कैसे बनाया जाए, अगर हमारे किसान भाई और महिला किसान इसे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएं।
0: ऐसे तो जो जनरली किसान मशरूम का सुखौता बना रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको मशरूम की तुराई उपरांत उसे सीधे धूप में सुखा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनका काला होने की संभावना रहती है और मार्केट में उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। लेकिन यदि कुछ तकनीक उसमें वो ऐड कर देते हैं तो उन्हें मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा। जैसे कि एक विधि में आप हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि मशरूम को तुराई के बाद उसको एक मिनट के लिए ब्लांच कर दें।
1: अच्छा, ब्लांच,
0: उसके बाद फिर इससे भी, और ब्लांच करने के बाद फिर उसको एक बर्तन में पानी रखें जिसमें कि 0.2% पोटेशियम मेटावासल्फाइड एवं 5 ग्राम साइट्रिक एसिड उसमें का घोल बना करके उसमें रखें और उसमें उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसको निकाल करके एक जाली जैसा रखिए, जाली पर वो मशरूम को निकाल के डाल दीजिए ताकि उनका जो अतिरिक्त पानी है वह निकल जाए, हल्का हल्का उन्हें दबाएं। उसके बाद फिर उन्हें आप धूप में सुखा दें, और सुखाने के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें धूल कर नहीं पड़े, और बेहतर होगा किसी पतले बिल्कुल सूती कपड़े से उसको ढक के सुखाएं। यदि इससे भी अच्छा रिजल्ट हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं तो फिर उसको कंडीशनर सन ड्राइंग करें, अर्थात यदि हम 3 घंटे धूप में दे रहे हैं तो कुछ देर के लिए आधा घंटा के लिए उसको छांव में दे दें। अच्छा। तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी सुखौता में ऊपर क्रैकिंग आ जाता है, तो वो क्रैकिंग
1: ज्यादा धूप से,
0: धूप से तो वो किसान भाई उसमें क्रैकिंग नहीं आएगा और आपका उत्पाद ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि ये अलग अलग तरह से हम सुखा रहे हैं तो फिर हमारा उसमें मेहनत बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, आप जिस ढंग से आपको सुखाएंगे, जिस ढंग से आपको कीमत मिलेगा, उस ढंग से आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो स्वाभाविक है आपको कीमत मिलेगा। और आप यदि इसको मार्केटिंग में समस्या आती है तो आप सब तरह के सुखौता बना के रखें, जो आपको मैंने कई बताया कि ये करें, और आप उसके अनुसार उसमें मार्केट प्राइस रखें कि मान लीजिए जिनको कि कम दे सस्ता में लेना है तो आप जो सीधे सुखाते हैं वो भी उनको दे सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में है चमत्कार को नमस्कार, यदि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपना कर देखें, आपकी सुखौता में काफ़ी मार्केट आपको अच्छा मिलेगा।
1: यानी कि मशरूम का जो सुखौता है वो इस पर निर्भर करता है कि आप धूप में उसे किस तरीके से सुखा रहे हैं, और उस हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, और अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो बाजार में इसके मूल्य भी आपको

0: अच्छे मिलते हैं। और इसके बाद मैम जानना चाहेंगे हम इस चटपटे मशरूम के अचार के बारे में कि इसे कैसे बनाया जाता है।
1: मशरूम का अचार का भी मार्केट उपलब्ध है, यह भी काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसकी अचार बनाने के लिए कई विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, और उससे आप तीन तरह के रूप से विधियां हैं जिससे कि आप इसका अचार बना सकते हैं। और उसमें अलग अलग सामग्री है, जैसे कि एक अच्छा एक विधि है, इसमें आप मशरूम लीजिए 1 kg, काली सरसों पाउडर 35 ग्राम, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 10 ग्राम, जीरा पाउडर 15 ग्राम, सौंफ पाउडर 15 ग्राम, मंगरेला 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, तेल 200 ml, नमक 90 ग्राम और एसिटिक एसिड 2.5 ml।
0: अच्छा,
1: तो ये सारे सामग्री को आप तैयार कर लें। इसके बाद मशरूम को थोड़ी देर के लिए ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसे 0.05% KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट एक रसायन आता है, उसके घोल में थोड़ी देर के लिए उसको रख दें, लगभग 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसे ठंडे पानी में 2 से 3 बार धो करके और उसको रात भर 10% नमक में डालकर छोड़ दीजिए।
0: अच्छा अच्छा, नमक में क्यों डालना है मैम इसे?
1: नमक में इसलिए डालते हैं कि जो हमारा एक प्रक्रिया होता है जिसको कि साइंटिफिक वर्ड में कहें तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होता है, तो वो उससे हमारा किसी प्रिजर्वेशन का या परिरक्षण का एक तकनीक है कि जैसे हमारी गांव की महिलाएं इसका अचार बनाती होंगी आम का, उसमें भी है जो हम लोग उसको हल्दी और नमक के साथ उसको 2-3 दिन तक छोड़ते हैं, बस वही प्रक्रिया है जिससे उसके अंदर का जो पानी है वह बाहर निकलता है और नमक वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंटर करता है। ठीक है, उसके अगले दिन जो उसका पानी निकलता है उसको हटा देंगे और फिर जो आपका नमक तेल और हल्दी मसाला इस सारे मिला करके अंत में उसमें एसिटिक एसिड मिला देंगे और ये इस अचार को फिर हम लोग खा सकते हैं। और यह जो है मुख्य रूप से बटन मशरूम का अचार बनाने की विधि है। और जनरली ऐसे हम लोग बटन मशरूम का अचार नहीं बनाते हैं क्योंकि बटन मशरूम का ऐसे ही मार्केट काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ तक कि उसको यदि हम KMS सॉल्यूशन से ट्रीट कर दें तो उसका मार्केट 10 दिन तक बढ़ सकता है। तो इसके यदि आपको मूल्य संवर्धन के लिए जाना है तो मुख्यतः आप ऑयस्टर मशरूम का अचार बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का मार्केट बहुत अच्छा, फ्रेश मशरूम का नहीं है क्योंकि उसका जो कीपिंग क्वालिटी है वह काफ़ी कम है। एक दिन में ही ऑयस्टर मशरूम को यदि हम नहीं बेच पाते हैं तो वह खराब होने लगता है। तो इसलिए अचार यदि बनाना हो तो ऑयस्टर मशरूम के लिए ही हम आपको प्रीफर करेंगे ऑयस्टर मशरूम का अचार बनाएं।
0: वैसे अचार बनाने की विधि मैम आपने बताई तो मुंह में पानी आ जाता है सभी के, क्या अचार बनाने की दूसरी विधि भी है?
1: हाँ, इसकी अचार बनाने की दूसरी विधि भी है। इसमें आप हम मशरूम को 250 ग्राम लेंगे, जीरा पाउडर 2 चम्मच, मेथी पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सरसों पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सिरका 100 ml या फिर सिरका ना हो तो एसिटिक एसिड 10 ml, और नमक 400 ग्राम नमक लेंगे हम 40 ग्राम। और ऐसे किसान भाइयों बहनों ये चीज़ ध्यान रखिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप वैरी भी कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 भी कर सकते हैं,
0: क्योंकि मतलब अपने स्वादानुसार
1: डाल सकते हैं। और फिर सरसों तेल उसमें डालेंगे 200 ml। अब ताजे मशरूम को अच्छे से पानी में धो लीजिए, उसको ये ऑयस्टर मशरूम का बनाइए इस विधि से। उसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि बड़े उसके जो पंखुड़ी है वो बड़े हैं तो आवश्यकता अनुसार उसको टुकड़े में काट लें। और ऑयस्टर मशरूम का कोई भी प्रोडक्ट बनाइए तो एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिए, उसको थोड़ा देर गर्म पानी में छोड़ करके निचोड़ करके उसके पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वो प्रक्रिया हम लोग यहाँ भी करेंगे, उसको पानी से निचोड़ देंगे, उसके बाद जो उसको आवश्यकता अनुसार साइज में काटेंगे। उसके बाद जो तेल है 100 ml, 200 ml तेल जो हम लोग लिए हैं तो 100 ml तेल को कढ़ाई में गर्म करेंगे और उसके बाद मशरूम को उसमें डाल देंगे गर्म तेल में। अच्छा। और तब तक उसको भूनते रखेंगे जब तक कि उसका जो 3/4 पानी जो है मशरूम का वो सूख ना जाए, है ना, क्योंकि मशरूम में आप जानते हैं 90% पानी रहता है। अब इस तले मशरूम को अलग बर्तन में हम रख लेंगे और बाकी जो बचे हुए मसाला हैं उन्हें भी हम लोग तेल में डाल करके थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद उसमें मशरूम भुने हुए मशरूम को और मसाले को एक साथ मिला करके वर्तमान में बोयाम में रख देंगे और उसमें ऊपर से एसिटिक एसिड या सिरका जो भी हम लोग परिरक्षक के रूप में रखते हैं उसको डाल देंगे और यह अचार आपका दूसरे तीसरे दिन से ही खाने योग्य तैयार हो जाएगा।
0: तो मैम यहाँ पर विधि के बारे में बात हो गई और सामग्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हम आम का अचार बनाते हैं उसी तरीके से सामग्री इनमें भी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि

0: सामग्री आप अपने अनुसार जो आप अचार बनाती हैं, बिल्कुल देखिए प्रोसेस भी लगभग आपका वही सही है, वही उसी तरह से है, सिर्फ आपका नाम बदल जाता है कि हम वहां पर आम ले रहे हैं तो यहाँ हम मशरूम ले रहे हैं। और एक चीज जैसे कि मशरूम का हम अचार बनाते हैं तो यह इसमें एक तरह का यह फंगस है, खाने योग्य कवक है, तो हम लोग को थोड़ी यह ध्यान देने बहुत ही ध्यान एहतियात से हम ध्यान देते हैं कि इसमें किसी तरह का और दूसरा संक्रमण ना हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं, नहीं तो संक्रमण होने की संभावना रहती है। और ऐसे ऑयस्टर मशरूम को 6 महीना तक, इसका जो अचार बनता है उसको 6 महीना तक आप प्रयोग करें।
1: अच्छा।
0: और वो भी बीच बीच में आप धूप दिखाते रहें, उसके आगे व्यवहार ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे हम लोग साल भर भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि 6 महीने तक हम लोग प्रयोग करें। और अचार में एक और सावधानी रखें कि जिसे आप अचार बनाती हैं तो जो मैन वर्तमान है, जो जिसमें भंडारित करके रखी है, उसको डेली यूज में ना रखें। यदि डेली यूज के लिए आपको अचार निकालना है, जब मन तब आप जिससे निकाल रहे हैं, तो वो उससे थोड़ा अलग बर्तन में निकाल लें और उससे फिर आप निकाल निकाल के डेली यूज करें। और उसमें कभी भी भीगा चम्मच ना डाल दें, भीगे हाथ ना डाल दें, हाथ तो किसी भी रूप में भीगा सूखा डालें ही नहीं, चम्मच जब भी डालेंगे तो वो सूखा चम्मच ही डालें। और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार खराब नहीं होगा। और यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका अचार में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, किसी अनप्लीजेंट कोई गंध आ रहा है या कुछ आंख से कुछ उसमें ग्रोथ दिख रहा है, तो उसको ना खाएं तो बेहतर होगा।
1: तो यहाँ पर मैम ने अचार के बारे में बताया, आप सभी को सामग्री बताई और साथ ही विधि भी बताई। तो आप इसे सिर्फ घरेलू यूज़ में ही नहीं, अपने घरेलू किचन में ही नहीं, बल्कि आप इसे मार्केट में ले जाकर इसे बेचकर अच्छे फ़ायदे आर्थिक स्तर पर पा सकते हैं। इसके बाद मैम, अगर हमें कमज़ोरी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि मशरूम सूप पिया करो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे हम कैसे बनाएँ।
0: मशरूम का सूप यदि ऐसे घर में फ्रेश मशरूम का बनाना हो तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि आप उसका पाउडर बना के रख सकते हैं तब थोड़ी तकनीक है। जैसे यदि आप डॉक्टर कह रहा है कि आपको कमजोरी है, आपको सूप पीना चाहिए, तो कुछ नहीं, मशरूम को लीजिए। ये इसके लिए फिर मैं कहूँगी ऑयस्टर मशरूम लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ऑयस्टर मशरूम को थोड़ी देर गर्म पानी में रख के 10 मिनट तक गुनगुने पानी में उसको निचोड़ करके उस पानी को निकाल दें। इसके बाद जो भी मौसमी फल सब्जी सब्जी या फिर पत्तीदार सब्जियां, फल नहीं पत्तीदार सब्जियां और सब्जी जो भी आपको मिल रहा है, टमाटर ये वगैरह सबों को काट करके प्रेशर कुकर में डाल के उसको धीमी आँच पर बॉयल करें। ठीक है, उसके बाद उसको धीमी आंच पे बॉयल करने के बाद उसको निकालें, और जब ठंडा जाए तो उसको इस छन्नी से छान लें, और उसमें आप स्वादानुसार आप जीरा पाउडर, काली नमक, नींबू, अब आपके स्वास्थ्य क्या परमिट करता है, बटर परमिट कर रहा है तो वो डालिए, और फिर उसको आप गरम गरम ही पी लीजिए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और वो जो स्ट्रेन करके छन्ना करके जो वो सॉलिड बना, उसका भी आप आटे के साथ मसल के उसकी रोटी बना सकते हैं,
1: या फिर सब्जी वगैरह बनाएं तो उसमें डाल,
0: उसका सब्जी बना रही हैं तो उसमें सब्जी में भी डाल सकती हैं। उसको फेंकिए नहीं, उसको किसी न किसी रूप में उसको प्रयोग में ले आइए। और यदि आप मशरूम का पाउडर बना के संरक्षित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मशरूम का सुखौता, जिसे आपको बताया मैंने, मशरूम का सुखौता बनाकर उसका पाउडर बना लें, और
1: मतलब वही प्रोसेस पे होगा सुखौता बनाने का, और उसे बस पीस लेना है।
0: हाँ, उसको पीस लेना,
1: मिक्स कर
0: पीस लेना है, उसका पाउडर बना लें, और पाउडर का 15 ग्राम लें, कॉर्न फ्लोर या फिर जो मक्का होता है उसका छिलका हटा के जो उसका आटा होता है वो आटा ले लें, दूध पाउडर ले लें, कॉर्न फ्लोर 5 ग्राम लेंगे, दूध का पाउडर लेंगे 50 ग्राम, रिफाइंड 4 ग्राम, नमक 10 ग्राम, जीरा पाउडर 2 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, चीनी 10 ग्राम, अजीनोमोटो 2 ग्राम, और इस ये सारे चीज़ को आप पाउडर बना लें। जो जितना चीज़ है सारा चीज़ को पाउडर बना के, जो मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च है, ये सब का पाउडर बना लें। इसके बाद सारे सामग्री को एक साथ, सारा सामग्री सूखा है आपको, सबको एक साथ मिला करके पॉलीथीन की थैली में उसको पैक करके सूखे स्थान पर भंडारित करें जहाँ नमी ना हो, और फिर इसे आप जब आवश्यकता हो तो पानी गर्म करें, और गर्म पानी गर्म करने के बाद उसमें आप इसे मिला करके थोड़ी देर पकाएं और उसको गर्म गर्म इसका प्रयोग करें।
1: वैसे तो सूप काफ़ी अच्छा लगता है सभी को पीना, लेकिन मशरूम में बहुत सारे ताकत भी हैं, इसके बहुत सारे गुण भी हैं, अगर आप पीते हैं तो

0: बहुत अच्छा रहेगा, अपने बच्चों को भी आप इसकी लत लगाएं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है उनके स्वास्थ्य के लिए। और मैम जब बात आती है, आजकल देखा जा रहा है मार्केट में मशरूम बड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और लोग इसे खरीद रहे हैं, घर में इसकी सब्जी बनाकर खा रहे हैं और इसके जो फीडबैक हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि मशरूम बड़ी कैसे बनाएं हम।
1: मशरूम बड़ी बनाने के लिए भी जैसा कि अनु मैंने पहले ही कहा कि जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी उत्पाद हैं, मशरूम का हर चीज़ संभव है। हाँ। बस एक एक जो मोटा लाइन दिमाग में डालना है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका जो मुख्य जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट है, उसके मात्रा के अनुसार हमें मशरूम वहाँ पर डालना है। दुनिया में जितना प्रोडक्ट है हर चीज़ मशरूम का बनता है, ये किसान भाइयों आप समझ लीजिए, तभी हम मशरूम को बिल्कुल घर घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम कोई प्रोडक्ट हम खाना चाहते हैं, जानेंगे नहीं इसका क्या बनता है, तो फिर हम नहीं उसको अपने डेली यूज में ला पाएंगे। तो आप यही, यदि आपको नहीं भी समझ में आता है कुछ इसका ये कैसे बन सकता है, तो उसका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ जो बनता है वो बस उसका जो पारंपरिक इंग्रेडिएंट उसको हटा करके आप मशरूम डाल दीजिएगा, वो प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। इसी तरह से बड़ी हम किस चीज़ का बनाते हैं, दाल का बनाते हैं मुख्य रूप से, तो बस आपको क्या करना है, दाल के डालना ही है, दाल के साथ साथ थोड़ा मशरूम को भी मिला देना है। मशरूम दाल के पाउडर को जैसे मिलाते हैं, हाँ। दाल के बेसन को जैसे मिलाते हैं, उस जगह पर उस इंग्रेडिएंट में आपको मशरूम को भी ऐड कर देना है। तो इसमें सामग्री में आप मशरूम का पाउडर लेंगे जो कि मोटा थोड़ा होगा, ये दरदरा मोटा होगा, वो 100 ग्राम लेंगे। उड़द दाल या मिक्स दाल या जिस दाल को भी आप पसंद करते हैं उस दाल को भी मोटा पीस लेंगे, वो 80 ग्राम लेंगे। नमक 2 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 1 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम, और इस ये सारी सामग्री को आप एक एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर जैसे कि आप मशरूम का पाउडर है और बेसन है, किसी भी दाल का जो आप बेसन लिए हैं उसको खूब अच्छे से मिला लें, और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद पानी डाल करके उसको अच्छे से गूंथ लें, ठीक है। और उसके बाद ये जो गूंथेंगे वो बिल्कुल जैसे कि आप मालपुआ बनाते हैं तो कैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो उस टाइप से, या फिर जैसे आप जनरल बड़ी बनाते हैं उस टाइप से भी गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए कि हम इसको यदि सूखने के लिए डालेंगे एक शेप बना करके वो भर के नहीं। तो आप बड़ी जैसे जनरल बड़ी बनाते हैं उसी तरह इन सारे सामग्री को मिला करके आप पेस्ट बना लें, ठीक है। और पेस्ट बना लेंगे और फिर खूब अच्छे से बहुत देर तक इसको फेंटना पड़ता है, वो जैसे आप जनरल बड़ी को भी हम बहुत देर तक फेंटते हैं। फेंटने के बाद उसको एक पानी रखते हैं, पानी में उसको डालते हैं, यदि डाल वो ऊपर चला आता है, पानी में तैरने लगता है, तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो आटा है, जो हमारा घोल है, यह तैयार हो गया। वह कार्यक्रम आप इसमें भी करेंगे, खूब अच्छे से उसको फेंटिएगा। जब आपको लगेगा कि यह तैयार हो गया तो फिर उसमें जो आप मसाले हम बताए हैं उस मसाले को, और आप अपने स्वाद अनुसार और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो सब भी आप और मसाले को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप मसाला और नमक को ऐड कर दें और फिर आप इसको गोल गोल इसका बना करके या तो आप धूप में सुखा सकते हैं, या फिर आपके पास यदि कोई ओवन वगैरह है तो उसमें भी आप इसको सुखा सकते हैं। सुखा करके फिर आप इसको जैसे जनरल बड़ी को भंडारित करते हैं उस तरह से इसको पॉलिथीन में पैक करके वायुरुद्ध पात्र में इसको भंडारित करें और इसको समय समय पर प्रयोग करें। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जो भी मौसमी सब्जी है इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, मौसमी सब्जी है जैसे
0: मिला सकते हैं
1: उसको भी इसमें आप मिला सकते हैं, उसका पाउडर लेके मिला सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि फ्रेश है तो उसको पीस के मिलाएंगे तो फिर पानी हम लोग उस अनुसार से डालेंगे कि ताकि यह गीला नहीं हो जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो आपका यह बड़ी और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा।
0: तो मैम आज आपने मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि कैसे बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज हमें स्वादिष्ट जानकारी मिली है। मैं भी चाहूँगी कि आपने जैसे भी विधि बताई है और इस मूल्य संवर्धित उत्पाद को खरीदने तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और हमारे किसान भाइयों और हमारी महिला किसानों से भी मैं अनुरोध करती हूं कि वो भी मशरूम के इन मूल्य संवर्धित उत्पादों को बनाने की तैयारी करें, और कहीं ना कहीं आपको बाज़ार में और अच्छी वैल्यू इसकी मिलेगी और अच्छी कमाई भी आपको आर्थिक स्तर पर मिल सकती है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सभी से किसान भाइयों मुलाकातें होती रहेंगी और ऐसे ही

चटपटे, स्वादिष्ट और अलग अलग जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
13: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
12: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें।

0: पशुओं को निचले स्थानों पर बांधकर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
1: श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांची टॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
2: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक, इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुंचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है, और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सीगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग।

0: कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ड रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है। और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंचीटाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठे बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, या खुराक ले भी लेता है तो जाड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है ये, जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट, जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुँचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं, और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ये रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा, लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है, और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है, और इसमें जो वुंड्स बनता है घाव बनाता है, और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग्र रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, स्यूडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाले अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है, इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें, जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टिन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम

0: दे देंगे तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग
1: नर्सरी
0: मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं, तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने अभी पूर्व में दवा बताया कर्वेंडाजिम या बेवेस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, बायोएजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है, जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है,
1: जी
0: खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोएजेंट में ट्राइकोडर्मा लेंगे, तो ट्राइकोडर्मा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेडाजिम बबिस्टिन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायादार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायादार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है, तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर ट्राइकोडर्मा इसके साथ रहता है, और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है, इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खरीफ फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है। तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अंगूठा रोग हो या पनामा रोग हो, सब एक ही तरह के हैं। तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया, वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है, वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूंद की तरह से है। तो फफूंद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण, ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये दो तीन घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ईसा

0: काट देते हैं ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है। यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूंद वाला रोग है जिसे हम पनामा बिल्ट कर रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है। ये बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है केला में ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है लेकिन जो बिल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उगठा रोग का लक्षण दिखाई देगा और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: जी, हैं। जी जी जी वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है जिसे हम सीगाटोका रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमियम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है। इसमें हम किसी स्टीकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटोका को उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया और किसान भाइयों एक मैं पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है पत्ती के एकदम किनारे नहीं किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उगठा रोग है? उगठा रोग तो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटोका ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर तने के ऊपर इस तरह से जो ऊपर भाग होता है ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है। तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है बाजार भाव कम हो जाता है या खराब कर देता है और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है कि ये खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर

0: स्टिकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्यामबर्ण रोग है इससे भी केला के फसल को बचाया जा सकता है।
1: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी, एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्स होता है उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है जिससे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवाओं के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव 2 बार कर देंगे तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो खत्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा प्रिस्क्राइब किया तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा और सुनते रहें उन्नत कृषि। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
9: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें। pmsuryaghar.gov.in

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कपूर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिये रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। और बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज को जो है ये जब से

ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा

0: परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपनी खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
1: बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
0: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है, तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। अब रसायन कहाँ नहीं डाले हैं, तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं, और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़ ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
1: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल

0: में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पोर्शन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है, जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
1: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश

प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में। और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो

0: कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
1: जी,
0: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं।
1: जी जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
0: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
1: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
0: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
1: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
0: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
1: जी,
0: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया, लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना
0: है? महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए, और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी

0: चीज जरूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां दी, उनमें से बहुत सी जानकारियां फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज झुरकुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में आया हुआ हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। आज मैं अनुषा दीदी से पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। तो अनुषा दीदी, आप यह बताएं कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाते हैं और पोषण तत्वों को शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। पोषण को
0: हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं?
1: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। सभी पोषक तत्व शामिल करें। अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन को शामिल करें। पानी पीते रहें। शरीर के कार्यों के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फूड से बचें। शक्कर, नमक और वसा वाले प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, नियमित भोजन समय पर भोजन और स्वास्थ्य स्कीम चुने। इस प्रकार पोषण आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
0: जी दीदी, ये तो हो गई, हम पोषण को प्राप्त कर लिए। अगर दीदी कोई दवाई ना ले, दवाई के अलावे पोषण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग कर सकता है?
1: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए संतुलित आहार अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फलियां और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, जैतून का तेल शामिल है।
0: जी दीदी, अगर आदमी को अगर सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या परेशानियां हो सकती?
1: ना हो तो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है। शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं।
0: जी दीदी, महिलाओं को पोषण से संबंधित क्या उपयोग करनी चाहिए?
1: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें आयरन से बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए और फोलिक एसिड प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है। खासकर गर्भावस्था और मानसिक धर्म के दौरान, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
0: जी दीदी, तो बच्चों को आप पोषण के लिए क्या सुझाव देना चाहते?
1: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, अंडा, दाल, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
0: जी दीदी, इन सभी बातों में मैंने एक चीजों को बार बार नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीन प्रोटीन नाम का वर्ड आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण श्रोता लीन प्रोटीन वर्ड को नहीं जानते हैं, तो लीन प्रोटीन आखिर क्या होता है दीदी?
1: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को खास रख रखाव में मदद करता है।
0: जी दीदी, तो इसी प्रकार से हम पोषण को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अभी अनुसार रंजन दीदी ने बताया, और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज

0: अपनी क्यारी अपनी थाली। तो दीदी इस बारे में आप क्या कह सकते हैं अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में?
1: आप अगर
0: अपने घर के आसपास ही कोई क्यारी लगाते हैं जिसमें कि आप फल सब्जी अपना उपजा सकें या खा सकें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह दे देती है, क्योंकि वो आपके सामने उपजा हुआ क्या कहते हैं फल या सब्जी है जो कि पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक होती है। तो इनमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज सभी ग्रामीणों को भी सहायता करती है, और आप लोग भी ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति

0: करने के रूप में उपयोग करता है तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा, ये करना हम सभी को करना चाहिए कि अपने पास जो भी थोड़ा जगह हो उसमें कुछ भी ना कुछ लगाए, जिससे कि हमें प्रोटीन कुछ भी पोषक तत्व आसानी से मिल सके।
2: जी दीदी,

0: करती है। धन्यवाद दीदी।
1: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचे। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का।

0: भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। यहाँ कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से राजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, राजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करे तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
0: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8

0: एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार स्थानीय ज्ञान पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान वैज्ञानिक निदान समाधान का संयुक्त विकास खेत पर उसका प्रयोग नियमित निगरानी परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर उत्पादकता में वृद्धि उत्पादन लागत में कमी किसान की आय में वृद्धि संसाधनों के बेहतर उपयोग किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि RAWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन फसलों में रोग एवं कीट मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी सिंचाई की समस्या बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का

व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान RAWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की RAWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्नील ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरके सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्यप्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर AK शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से RAWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि RAWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा। किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।

0: है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly.

0: diseases.
1: So see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खास विषय को लेकर आ चुके हैं, और पिछले साल से, पिछले कुछ दिनों से हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना जो है वो हमारे साथ चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया जो पौधा है वो है तुलसी। आप देखेंगे उसके बाद से हर घर में इस पौधे को लगाया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, फ़ायदा भी हुआ इसका। तो आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ, बहुत बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। पुराने ज़माने से बात करूँ तो मैं इसकी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती थी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती थी। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो मैं आज आपको बता दूँ कि हमारा जो विषय है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती एवं विपणन। तो आज खेती के बारे में जानेंगे इसकी, क्योंकि बहुत जगह पर खेती की जा रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टि से भी आजकल। तो मैं बता दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनाथ दास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम। हमारे 90.8 एफएम के श्रोताओं, आज जो कोरोना समय में जो महामारी चल रही है उसमें आज औषधीय पौधे का जो डिमांड है उसका महत्व काफी बढ़ा है
6: जी।
7: इसी के क्रम में आज तुलसी की खेती बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है इस पे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वह औषधीय सगंधीय पादप परियोजना के तहत कार्य पान अनुसंधान के इस्लामपुर में चलता है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का एक इकाई है। तो चले तुलसी की खेती। किसान भाइयों, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं उसका रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने जमाने से और गांव ग्राम से लेकर के शहरों में भी तुलसी हर एक घर के आंगन और बालकोनी का शोभा बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उसका सेहत का भी ध्यान रखता है। तुलसी मुख्य रूप से ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, मलेरिया और डेंगू में भी काम आता है, और तक कि अगर 12 पत्ते तुलसी का अगर आप च्यूइंग करते हैं एक दिन में तो आपको वो स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है और आपका मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप जिंजर और हनी और तुलसी का पत्ते के साथ अगर काढ़ा बनाते हैं तो आपको अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, कफ और सर्दी से आपको निजात दिलाती है
6: जी।
7: अगर तुलसी के लीव्स का जो जूस और हनी के साथ अगर रेगुलरली 6 महीने तक अगर लेते हैं तो आपको जो रेनल स्टोन जो होता है, जिसको आप पथरी कहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो खत्म करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं तुलसी कहती है कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं है, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध है, जैसे कि प्रोटीन उसमें उपलब्ध है, आयरन 17% है, कैल्शियम 17% है, विटामिन

0: विटामिन सी 30% है, विटामिन ए 105% है, विटामिन बी 6-10% है, मैग्नीशियम 16% है, इवन की पोटेशियम 295 mg है।
1: अच्छा।
0: और कोलेस्ट्रॉल 0 है, यानी कि इतने पोषक तत्व के रहने के कारण कोरोना में तुलसी का डिमांड और उसका महत्व काफी बढ़ा है
1: जी।
0: और इसीलिए भारत सरकार और ये खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और जिसमें कि 10,000 हेक्टेयर में खेती करने का योजना तैयार किया है हर्बल खेती के तहत। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का एक संस्था होती है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो उसमें हमारे बिहार के भी हिस्से में कुछ आने वाला है, खास करके के जो गंगा के किनारे है
1: जी।
0: बिहार के किसान भाइयों को मैं जानकारी दे दूं कि बक्सर से लेकर के भागलपुर में गंगा का जो लंबाई है 450 किलोमीटर है, तो जो गंगा के किनारे वाले किसान है वो औषधीय पौधे लगाकर खास करके तुलसी का खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं इस योजना से
1: जी।
0: अब देखें तुलसी कितने तरह का होता है
1: जी, वैरायटीज के बारे में।
0: वैरायटी हमारे किसान भाई प्रायः मुख्य रूप से तुलसी एक स्वीट वासिन कहते हैं, जिसको कि राम तुलसी आप लोग कहते हैं, या ओसिमम बैसिलिकम, और दूसरा होता है ओसिमम सैंक्टम, इसको सेक्रेट वासिल या होली वासिल कहते हैं, अर्थात क्रिस्प तुलसी इसको बोलते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावे भी इसका सेंटेड के आधार पर यानी कि उसका सगंध के आधार पर लेमन तुलसी होता है, कपूर तुलसी होता है, तो आप इस तरह से इसका सगंध हो, औषधीय महत्व हो, इस चीज को ध्यान में आप रखते हुए आप कैसे खेती करेंगे, उसके लिए आप कैसे चुनाव करेंगे ये आपको देखना है। क्योंकि सिमैप लखनऊ के माध्यम से बहुत सारे तुलसी की प्रभेद का इजाद किया गया है, जिसमें सीम सौम्या है, सीम सनिग्धा है, सीम तुरावी है, सीम अंजना है, सीम आयु है, ये सब जो 4-5 प्रभेद हैं, चाहे सौम्या हो, सनिग्धा हो, या सुरभी हो, या अंजना हो, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सब काफी इसका हार्वेस्ट यील्ड है, इसमें काफी तेल की मात्रा होती है। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी एक वैरायटी है गैब वन, इसका भी काफी यील्ड है, और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी एक तुलसी का प्रभेद, अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पाइपलाइन में है, जो कि अंजना तुलसी से अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम है सबौर OS1, जो श्याम तुलसी का एक प्रभेद है, जो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के हर्बल गार्डन में लगा हुआ है। आप हमारे बिहार के किसान भाइयों वहाँ विजिट करें और वहाँ तुलसी का जो भी प्रक्षेत्र पर लगा हुआ है आप उसका अवलोकन कर सकते हैं
1: जी।
0: अब इसकी खेती की बात करते हैं कि तुलसी की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल, जितने भी तरह का सॉइल हो, चाहे रिच लॉन्ग हो, या पुअर लेटेराइट हो, या सलाइन सॉइल हो, या अल्कलाइन से मॉडरेटली एसिडिक सॉइल हो, हर एक तरह के मिट्टी में ये तुलसी का खेती आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इसके लिए मौसम है, खास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है सियारे प्रोग्राम के तहत, तो मैं आपको बता दूं ये फेयरली हाई रेनफॉल एरिया या फिर ह्यूमिड कंडीशन है, जहाँ की तापमान या सूर्य का प्रकाश काफी हो, हाई टेम्परेचर हो, वैसे कंडीशन के लिए तुलसी का खेती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर तुलसी में जो ऑयल प्रोडक्शन में वो मदद करता है। लेकिन पार्शियल सेट कंडीशन में तेल की मात्रा को घटा देता है, इसीलिए जो ठंडा प्रदेश है खासकर या गैंगटोक हो, वैसे इलाके में तुलसी की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ शेडिंग कंडीशन रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ तेल की मात्रा और क्वालिटी अच्छी नहीं पाए जाते। इसलिए बिहार चूंकि सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, लॉन्ग डे लाइट भी मिलता है, इसलिए आपका तेल की मात्रा काफी बढ़ेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, जब भी तुलसी की आप खेती करेंगे, आपको तुलसी का नर्सरी प्रिपरेशन पर काफी आपको ध्यान देना है, कि अगर आप नर्सरी के माध्यम से अगर खेती करना चाहते हैं तब आपको ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको रेज बेस्ड सिस्टम के माध्यम से, यानी जमीन ऊपर उठा हुआ है

0: होना चाहिए, 15x4x9 फीट का बेड बना लीजिए और उसमें 200 से 10 ग्राम तुलसी का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अगर एक हेक्टेयर में आपको खेती करना है तो आपको 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज का भुरकाव कर देना है वो बेड पर। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब नर्सरी पे आप तुलसी का बीज गिरा रहे हैं तो तुलसी के साथ थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट भी मिला लें, और गिराने के बाद उसके ऊपर भीगा हुआ पुआल रख दें, और प्रतिदिन आपको 3 से 4 दिन सुबह और शाम में स्प्रिंकलिंग विधि से यानी कि फुहारा विधि से उसमें पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगे 8 से 12 दिन में आपका तुलसी का बीज का जर्मिनेशन हो जाता है
1: जी।
0: और जर्मिनेशन होने के बाद जब आपका तुलसी 6 सप्ताह का 4-5 लीव स्टेज का हो जाता है तो आप मेन प्लॉट में जाकर के आप इसकी लगा सकते हैं। लेकिन आप जब लगाएंगे खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूरी होगा 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर आप लगाएंगे, यानी कि पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब तुलसी आप लगा रहे हैं तो उस समय इमीडिएट सिंचाई करना है फुहारा विधि से, जहाँ तुलसी लगा रहे हैं उसके जड़ में ही पानी थोड़ा सा देना है ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए। और फिर सेकेंड इरिगेशन जब आप देने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप मुआयना करेंगे, थोड़ा सा आप खेतों को बारीकी से देखेंगे कि कुछ तुलसी के पौधे अगर मर गए हों स्वस्थ नहीं हो तो वैसे स्थिति में आप गैप फिलिंग करेंगे
1: जी।
0: ये कंडीशन 1 महीने के बाद आती है। और अब जहां तक सिंचाई की बात अगर करते हैं तो ये सीजन और मॉइस्चर मिट्टी में जो कितना मॉइस्चर है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रायः 3 महीने पर एक सिंचाई किसान भाई तुलसी के खेत में जरूर दें, क्योंकि अगर सिंचाई आप देते हैं तो उसका जो ग्रोथ बढ़वार जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा। तो अप्लाई जो करना है आपको पानी का वो 3 इरिगेशन पर मंथ, 1-3 महीने पर 1 इरिगेशन आपको कर देना है। अगर जहां मॉइस्चर की कमी है वहां मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसका हार्वेस्टिंग से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जहां तक खाद की बात है कि कितना उर्वरक आप डालेंगे तो 120-60-60 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है
1: जी।
0: तो लेकिन आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसमें कंप्लीट एनपीके की बात हम नहीं करना चाहेंगे, कि तुलसी औषधीय पौधा है इसलिए आप इंटीग्रेटेड वे में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दें, यानी कि 50-40-30 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्लस 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो तुलसी है वो एक तरह से जैविक उत्पादन के तहत आएगा
1: जी। जी सर।
0: अब ऐसा इसमें देखा जाता है कि इसका इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या वीडिंग ऑपरेशन और अर्दिंग अब मिट्टी को चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं तो ज्यादा हवा आती है या फिर कभी कभार गलती से ज्यादा पानी अगर लग गया तो ऐसे में पौधे आपको गिर सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट बीडिंग 1 महीने के बाद और सेकेंड बीडिंग जस्ट दूसरा महीना आपको कर देना। जब दूसरा महीना आता है तब जैसे आप आलू की खेती करते समय मिट्टी को आप चढ़ाते हैं उसी तरह तुलसी में भी आप मिट्टी को चढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग आप
1: नहीं करेंगे
0: तब इसका औषधीय गुण बरकरार रहेगा। क्योंकि तुलसी हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो औषधीय पौधे होते हैं उसको इसलिए उसका महत्व रहता है कि उसके पत्ते में या उसके जड़ में या उसके फ्लावर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग

0: सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के चलते इसका औषधीय महत्व है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसमें बिहार के केस में ये भी देखा गया है कि लीफ स्पॉट नाम का एक बीमारी भी लगता है तुलसी के पत्ते

0: अनानास का दोनों मिला करके 2% सोल्यूशन प्लांटिंग के समय, अगर बीमारी उसमें आ जाता है ऑन एपियरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम, अगर आपका लक्षण दिखाई देने लगता है तब 3 स्प्रे मैंको जो मैंको जेब का करेंगे 0.25% 15 दिन के अंतराल पर, तो आपको ये बीमारी से निजात मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप तुलसी का खेती करते हैं तो आपका अच्छा उपज मिलेगा। तब आपको उपज के क्रम में आपको हार्वेस्ट कब करना है, हमारे किसान भाइयों तुलसी में 2 से 3 कटिंग लिया जाता है, तो पहला कटिंग 90 से 95 दिन प्लांटिंग के बाद आप ले सकते हैं, और दूसरा कटिंग पहला कटिंग के ठीक 65 से 75 दिन। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक कटिंग के बाद उसमें इरिगेशन और खाद का उपयोग करना है ताकि फिर से नया फ्लस आ सके। और हार्वेस्टिंग के समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हार्वेस्ट जो करेंगे वो जमीन से सटा के नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करेंगे, ताकि अगर उसका जो स्टबल बचा हुआ रहेगा तब फिर वो स्प्राउट करके नया पौधा फिर बनेगा, तब आप सेकेंड और थर्ड कटिंग आप ले सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर
0: जहाँ तक हाँ बोलिए
1: ये तो यहाँ पर आपने बताई है पूरी नर्सरी से लेकर के ये हार्वेस्टिंग तक की बातें, और जो हमारे ये जो टॉपिक है वो है विपणन की भी बातें करनी है हमें, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी।
0: हमारे 90.8 FM के श्रोता किसान बंधुओं, ये तो अब खेती के बाद हो गई, लेकिन अभी खास करके जो औषधीय पौधे में मार्केटिंग का विपणन का समस्या से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है।
1: मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उसके बाद मार्केट में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है।
0: मांग इतनी बढ़ी है कि मैं किसानों को बिहार के जो मार्केट ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वैसे पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश में एक जगह नीमच है, नीमच मंडी जो औषधीय पौधे के लिए विख्यात है, वहाँ लगभग 500 प्रकार का औषधीय पौधे का वो बाजार है, व्यापारिक केंद्र है। हमारे किसान भाई आप नीमच मंडी में भी जो मध्य प्रदेश के इलाके में अवस्थित है आप वहाँ भी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ के ट्रेडर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में बरेली लखनऊ का जो शहादतगंज इलाका है वो बहुत बड़ा जड़ी बूटी मंडी है, और एक बाराबंकी इलाका है जहाँ की औषधीय पौधे का विपणन किया जाता है। इसके अलावा मैं किसान भाई को एक और बताना चाहता हूँ, बिहार में भी बहुत सारे ट्रेडर इस कोरोना के काल में आगे आए हैं जो कि तुलसी और अन्य औषधीय पौधे का मार्केटिंग में बहुत बड़ा अपना रोल और कर्तव्य भी निभा रहे हैं, जिसमें एक है विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी।
1: अच्छा।
0: विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी जो कि अहियापुर मुजफ्फरपुर बिहार में इसका ऑफिस है, और इसका जो नंबर है आप किसान भाई नोट कर सकते हैं, 7070894985, फिर से सुने 7070894985, ये विश्वाक स्नेह हर्बल एरोमेटिक का है, कृष्णा चौधरी जी हैं इसके हेड, आप इनसे संपर्क करके आप विपणन कर सकते हैं और ये खेती भी करवाते हैं। इसी तरह से दूसरा है सबला सेवा संस्था, इनका की हेड अविनाश कुमार है और इनका ऑफिस गोरखपुर में है, इनका जो नंबर है 9430502802, फिर से सुने 9430502802, जो कि सबला सेवा संस्थान श्री अविनाश कुमार का है। लेकिन इधर ये दोनों के अलावे जो अभी बड़े पैमाने पर औषधीय पौधे की खेती की का विपणन और खेती भी किसानों से करवा रहे हैं वो है औषधीय खेती विकास संस्थान, जो कि बिहार का है और इसका हेड नंदलाल जी हैं जो कि छपरा का रहने वाले हैं। इनका भी आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8292977734, फिर से सुने 8292977734, अगर इस तरह से आप

0: चाहे औषधीय विकास संस्थान हो या सबला सेवा संस्थान या विश्वास हर्बल कंपनी हो जो कि अपना बिहार का है, आप या इनसे भी संपर्क करके आप तुलसी का विपणन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो तुलसी बिहार में औषधीय पौधे की जो खेती का जो रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2009-10 में 2600 हेक्टेयर था जो कि अभी चल करके 4500 हेक्टेयर औषधीय पौधे की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ा, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, हमारा जो परियोजना अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं संगंधीय पादप परियोजना चल रहा है बीआरसी इस्लामपुर का काफी बड़ा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि संजय गुप्ता अभी 10 एकड़ में तुलसी का खेती कर रहे हैं, मधुसूदन दुबे 2 एकड़ में कर रहे हैं, ये सब अभी ये रोहतास जिला के किसान है, खास करके नोखा ब्लॉक का है। और आपको मैं बता दूं कि उपेंद्र पटेल जी जो कि राजपुर रोहतास जिला के हैं वो 1 एकड़ में कर रहे हैं
1: जी।
0: और विकास लाल जो डुमराव बक्सर के रहने वाले हैं वो 4 एकड़ में श्याम तुलसी का खेती कर रहे हैं। इस तरह से बिहार में किसानों का रुझान बढ़ा है, इसलिए जिन किसान भाइयों को तुलसी का खेती करनी है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन दास जो कि पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में पदस्थापित है, जहाँ की औषधीय पादप गंधीय परियोजना चलता है, जहाँ के एक अच्छा बड़ा हर्बल गार्डन है, जहाँ की लगभग 100 तरह का औषधीय पौधे का संग्रह है, आप उनसे संपर्क करें, आप वो उस हर्बल गार्डन को देखने आए, आपको काफी लाभ होगा
1: जी।
0: इस तरह से जो विपणन का मैंने आपको बताया, इसके अलावे जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो डिजिटल इंडिया का ये युग है, तो आप घर बैठे भी उस तुलसी का खेती का विपणन कर सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट है कृषक हाट, कृषक हाट एक सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश का है ये, आप इस वेबसाइट पर भी जा करके आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक मजबूत विपणन का प्लेटफॉर्म है ई चरक, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसका वेबसाइट है ई चरक, जो कि ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट प्लेस है मेडिसिनल प्लांट का। अगर आपको तुलसी का विपणन करना है तो आप उसके पोर्टल पर पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना पासवर्ड बना लें, और क्या चीज का विपणन करना उसमें नाम लिखेंगे, अपना प्लांटिंग मटेरियल का यहाँ तक कि फोटोग्राफ भी डालेंगे। अगर तुलसी का पाउडर बेचना है या तुलसी का लीफ बेचना है या तुलसी का पूरा हार्वेस्ट मटेरियल बेचना है तो उसका फोटोग्राफ डालेंगे और उधर से तुरंत रिप्लाई होगा, जिसको भी खरीदना होगा वो आपको रिप्लाई देगा कि कितना आप प्राइस रखे हैं। तो आप प्राइस जो दिल्ली या नीमच मंडी का रहता है आप वेबसाइट से देख करके भी आप अपना प्राइस रख सकते हैं, या फिर जो खेती करने में जो आपको ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा है उससे कैलकुलेशन करके कि कितना आपको मुनाफा होना चाहिए। प्रायः जो तुलसी का खेती जो है उसमें 50 लाख 75 लाख 50,000 75,000 1 लाख तक का प्रति एकड़ इसमें आता है। इस तरह से अगर आप भौतिक रूप से मार्केटिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं तो नीमच मंडी जाइए, अगर भौतिक रूप से करना चाहते हैं तो बाराबंकी मंडी जाइए, या सबला सेवा संस्था जो बिहार का है उससे संपर्क कीजिए, या फिर कृषि सेवा संस्था जो नंदलाल जी का है आप उनसे संपर्क कीजिए, अथवा ऑनलाइन मार्केटिंग ई चरक के माध्यम से कर सकते हैं या कृषक हाट के माध्यम कर सकते हैं
1: जी। सर बिहार में कहाँ कहाँ इसकी खेती हम कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं इसकी खेती की?
0: बिहार में तुलसी की खेती का संभावनाएं खास करके जो दक्षिण बिहार का जो इलाका है जिसमें कि नवादा हो सकता है, जम्मू हो सकता है, मुंगेर हो सकता है, आपका रोहतास जिला में तो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, और फिर थोड़ा सा गंगा के उस पार में जो बेगूसराय का जिला है और एक मुजफ्फरपुर जिला है, ये सब तुलसी की खेती करने के प्रति किसानों का रुझान और कर भी रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो तुलसी की जो खेती होती है उसके तुलना में बिहार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है तुलसी की खेती की तरफ
1: जी।

0: टोटल पूरे भारतवर्ष में 25,000 हेक्टेयर में तुलसी की खेती होती है, जिसमें बिहार में 32 हेक्टेयर खेती होती हो रही है, और अभी लगभग 500 एकड़ का टारगेट कृषि विकास संस्थान जो नंदलाल जी का है और हमारा पान अनुसंधान केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय मिल करके इस एरिया को और बढ़ाने का कर रहे हैं। तो खास करके जो रेनफेड एरिया है जहां बारिश नहीं होती है, वैसे इलाके के लिए तुलसी वरदान है उन किसानों के लिए, क्योंकि जहां सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, पानी का उपलब्धता नहीं है, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं वैसे इलाके में तुलसी का खेती आप बड़े ही सुगमता रूप से आप कर सकते हैं और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आपने जाना कि तुलसी की खेती आपको आपके आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करेगी और इसके फायदे भी अनेक हैं। आप चाहे तो एक किचन गार्डन भी बनाते हैं तो आप उसमें भी से उगा सकते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में जो चीज़ें हैं जैसे कि काढ़ा बनाना, तो इन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे ही फायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर यहाँ पर तो हमने खेती की बात की, लेकिन हम इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी पूजा करते हैं, तो हर घर में एक न एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। और किसान भाइयों जी,
0: आप मैडम आप आध्यात्मिक बातें की, एक तुलसी विवाह होता है।
1: जी जी,
0: प्रत्येक साल तुलसी विवाह हमारे हिंदू भाई जो भारतीय हैं वो मनाता है, और खास करके हिंदू जो 11 और ब्रह्मा जो ब्राइट फोर्टनाइट होता है, जिसको कि पूर्णिमा का दिन हम लोग कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा उसको बोलते हैं, फुल मून डे, तो उस समय भी विष्णु के अवतार के रूप में कृषि के तुलसी को माना जाता है। और जो तुलसी के नीचे ही शालिग्राम का एक शिला रहता है, कहता है कि जब तक ये शिला तुलसी से नहीं मिलती है,
1: अच्छा,
0: तब तक लोगों का जो पूजा होता है वो परिपूर्ण नहीं माना जाता है
1: जी।
0: तो हमारे धार्मिक महत्व का तुलसी में बहुत है, इसीलिए तो इसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है तुलसी को।
1: अच्छा जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको जो धार्मिक तरीके से इसकी जो विशेषता है वो भी बताई आपको, साथ ही खेती के बारे में बताया कि आप कैसे कैसे खेती कर सकते हैं, नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, आपको कौन सी किस्म लेनी चाहिए अगर बिहार में आप खेती कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि आप अगर आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप कहाँ पर बेच सकते हैं इसे, मार्केट कहाँ उपलब्ध है इसके, सारी बातें आपको बता दी गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा इस वार्ता को सुनकर। और साथ ही अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसे फ्रिक्वेंसी पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन

प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरी जोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूलगोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के

रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहे तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है। जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, DAP, पोटास तो प्रयोग ही

0: कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में, साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं, यानी छह तत्व किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा, हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े, यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
1: जी सर, सर अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है, तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगे। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए वह एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और यह दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बुश एंड हैबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह समान तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर समान तापक्रम

0: पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं, इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
1: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें, तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं, तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
0: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है जी। तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था। लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है, तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे। तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया। तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया। साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है, फसल सामान्यतः उसी से पोषक तत्व लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
1: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
0: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है, सनई का भी प्रयोग होता है, ढेंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वो ढेंचा का प्रयोग होगा। ढेंचा का प्रयोग सामान्यतः या अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
1: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
0: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर के 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7% से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है 1.2 से लेकर के 1.4% तक पोटास होगा खली भी प्रयोग में।

0: लाया जाता है। तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फॉस्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फॉस्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है और 3 से लेकर 9% तक फॉस्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी, 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, फॉस्फोरस 0.8% या उससे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 0.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जानकर के 2% के ऊपर ही रहता है, 0.25% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इससे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इससे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो वर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
1: जी सर। सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है जैसे पेट ट्रॉफिक झिल्ली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.25% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3.5% है, पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा, और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है।
1: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, रहती राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में है, एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है, तो उसके फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो यह ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया

0: जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, ये सब खाना नहीं बना सकता है, तो ये बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं, तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं ये नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक को भी की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है, एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के आधा लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है। और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजियोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए, और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नहीं फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो विश्वास पर खाता होगा कि ये बिना जहर वाला है, ये जैविक है। लेकिन आपने खुद खेती किया है, आपको मालूम है ये बिना जहर वाला है या नहीं है, यह सौभाग्य टाटा बिरला अंबानी को भी नहीं होगा, जो सौभाग्य आपको है। इसीलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। कितना खाते होंगे भाई मेरे, छोटा सा परिवार चलता है, पहले की तरह 25-30 आदमी का तो परिवार होता नहीं है, मियां बीवी 2-4 बच्चे रहते, यदि आप 10 कट्ठा उपजाऊ जमीन अपने लिए चिन्हित कर लीजिए कि हम अपने लिए बिना जहर का पैदा करेंगे, तो आराम से कितना खाते होंगे, 2-3 क्विंटल चावल खाते होंगे, 3-4 क्विंटल गेहूं खाते होंगे, कुछ क्विंटल 1.5 क्विंटल दलहन तिलहन खाते होंगे, वह 10 कट्ठा

0: में बहुत अच्छी तरह से उपज हो जाएगा, इसलिए उपजाऊ जमीन अपने लिए 10 कट्ठा चिन्हित करें और जरूर से जरूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिना जहर का पैदा कीजिए और उनको खिलाइए, यही मेरा संदेश।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने जैविक खेती के बारे में बताया, उसके फायदों के बारे में बताया, साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो हमारे किसान भाई बहनों को आज के इस चर्चा से काफी कुछ जानने के लिए समझने के लिए मिला होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: मैम सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
4: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
1: जी मैम,
4: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है बल्कि वो एक उत्पादन प्रसंस्करण विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन दुग्ध मत्स्य बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
1: मैम आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
4: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है, तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसमें कि अगर कहें तो 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है। और अगर हम देखें तो आर्थिक

0: प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें, या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10,00,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
1: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
0: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका, इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही हैं आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में, तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है, और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें, जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात, जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है, वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट, या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है, सामूहिक खेती, इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षा और शोध है, बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या मधुमक्खी पालन के ऊपर, या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं, और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमिता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर, जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है, और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है

0: महिला सशक्तिकरण वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है। और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
0: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुंच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
0: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फायदे होते हैं उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने किस जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
1: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि

0: 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
12: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, AI और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और NR प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फारेनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 880

0: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
1: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
0: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
2: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: आज इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
4: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
2: साथियों नमस्कार।
5: नमस्कार साथियों,
2: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
5: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
7: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
6: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
5: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
8: सू
6: जी,
8: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
6: जी हाँ
8: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे

0: पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
1: जी डॉक्टर साहब।
0: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
1: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 14
1: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
4: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
1: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
1: जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
1: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ हाँ
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: जॉन्सी
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस

0: वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना।
2: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ, हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: हाँ, दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई

0: और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन से कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
1: जॉन से। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
1: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
1: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
2: मास्टरपीस।
1: हाँ
2: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
10: तो नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मुझे तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, मैं हूँ आरजे अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जहाँ हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की। और इसी में से एक विषय हम लेकर आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। दलहनी फसलों की हम बात करते हैं और खाद और उर्वरक बहुत ज़रूरी है सभी फसलों के लिए। इवन मैं दलहनी फसलों की आज बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करें हम, क्या विधि होगी और इसके प्रयोग करने से हमें क्या लाभ होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दलहनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का प्रबंधन। तो इसे लेकर आज हमारे बीच हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, जो कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद
10: डॉक्टर साहब। सबसे पहले सवाल की ओर जाते हैं जो हमारे किसान भाई अक्सर ये जानना चाहते हैं कि दलहनी फसलों में सामान्यतः रासायनिक उर्वरक की अनुशंसा क्या है, इसकी जानकारी सभी को दे दें।
11: जो रासायनिक उर्वरक है, खास करके दलहनी फसलों की यदि हम बात करें, तो वह सामान्यतः 20 केजी के आसपास नाइट्रोजन डालना चाहिए और 40 से 50 केजी फॉस्फोरस डालना चाहिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही अनुशंसा है।
10: जी,
11: वास्तव में अनुशंसा तो मिट्टी जांच के आधार पर होनी चाहिए। हम मिट्टी की जांच करवाते हैं। अब मान लीजिए यह 20 केजी नाइट्रोजन है और हमारी मिट्टी यदि लो है, एक्चुअली मिट्टी को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, निम्न, मध्यम और उच्च। तो ये जो मैंने कहा 20 केजी नाइट्रोजन और 40 से 50 की जो फॉस्फोरस, यानी मोटे तौर पर 100 केजी डीएपी की बात यदि हम करें तो यदि हम ये बात करते हैं तो यह बात हो गई यदि हमारा मध्यम स्तर का फर्टिलिटी है। तब यदि हमारी फर्टिलिटी लो स्तर की है यानी निम्न स्तर की है तो वहां पर हमको उस अनुशंसा में कम से कम 25% बढ़ाना पड़ता है। और उच्च स्तर की यदि है तो हम उसको घटा देते हैं, यानी कहने का मतलब उसमें 25% आपको घटा देते हैं। जैसे अब मैं इसको इस ढंग

0: समझाना चाहूँगा कि यदि 280 से 560 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से कम यदि उपलब्ध नाइट्रोजन उसमें है, अवेलेबल नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब कि वह निम्न है जी। और यदि 560 केजी प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वह उच्च है। तो यदि 280 केजी से नीचे है, यानी 200 केजी है, 225 केजी है, तो वहाँ पर आप नाइट्रोजन को भी बढ़ाएंगे। इसी तरह से फास्फोरस की उपलब्धता 25 से 50 केजी के बीच में यदि P2O5 है, उपलब्ध P2O5, तो उसको आप कहते हैं मध्यम, यानी कि 25 से 50 केजी। और 25 केजी से कम है तो इसको कहते हैं आप, 25 केजी प्रति हेक्टेयर से कम है तो उसको निम्न कहते हैं, और 50 केजी प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप उसको उच्च कहते हैं। यानी निम्न होगा तो वहां पर फास्फोरस भी जो अनुशंसित मात्रा है, अनुशंसित मात्रा को कम से कम 25% बढ़ा देते हैं, और उच्च में है तो आप उच्च से, यानी कहने का मतलब 50 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो आपको वहां पर जो भी, मान लीजिए 50 केजी आपकी अनुशंसित मात्रा है तो उसमें से आप 25% घटा देंगे। ये तरीका होता है हमको अनुशंसा निकालने की। लेकिन मोटे तौर पर जो मध्यम स्तर की बात है उसके लिए मैंने कहा कि 100 केजी DAP डालना चाहिए दलहनी फसलों में।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं यहाँ पर जो हमारे उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक, उनकी अनुशंसा की। आगे बढ़ते हुए अगर हम दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे?
0: देखिए, एक चीज़ बताएं, इसके बीच में किसानों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है
1: जी,
0: कि जैव उर्वरक जब प्रयोग करते हैं तो जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करें। सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप उसमें जो है क्या कहते हैं, जितने भी दलहनी फसल हैं उसमें सामान्यतया राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: राइजोबियम एक सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दलहन और राइजोबियम के बीच में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप होता है। दलहन उसको रहने के लिए, उस राइजोबियम को रहने के लिए मकान देता है, खाना देता है, और इसके एवज में वह नाइट्रोजन फिक्स करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। यही यूरिया की फैक्ट्री में यदि आप जाएं तो बहुत हाई टेम्परेचर पर 300-400 डिग्री पर यह काम होता है, लेकिन यदि हम देखें दलहनी फसलों में तो जो आपके खेत का टेम्परेचर है उसी पर यह हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन है, इसमें एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसके चलते यह काम बहुत कम टेम्परेचर पर आपका हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो दलहनी फसल है, ये जो राइजोबियम और दलहन के बीच में जो सिम्बियोसिस है, यह वास्तव में एक यूरिया बनाने की फैक्ट्री है अपने आप में। इसीलिए हर एक किसान को यह अनुशंसा की जाती है कि धान्य फसलों के बाद आप दलहनी फसल लगाएं। तो दलहनी फसल में यदि हम राइजोबियम का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि 10 केजी बीज ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा जो 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए आधा लीटर पानी में, उसको थोड़ा सा उस गुड़ को गर्म कर लीजिए कि घुल जाए बढ़िया से। जब वो ठंडा हो जाता है तो उस 10 केजी बीज के ऊपर आप डाल दीजिए, और इसको 200 ग्राम इसमें जो राइजोबियम का कल्चर है वह आप मिला दीजिए, और राइजोबियम कल्चर मिला देने के बाद अब हल्के हाथ उसको मिला दीजिए जिसके उसके ऊपर एक परत सी बन जाए। जब ये परत बन जाएगी तो उसके बाद छाए में उसकी आप बुआई कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो कि आपको राइजोबियम का भी प्रयोग करते हैं, PSV का भी प्रयोग करते हैं, और जो बीज उपचार है, बीज उपचार भी कैप्टन थिराम या ट्राइकोडर्मा से करते हैं। तो मान लीजिए यह तीनों चीज से करता है तब कैसे प्रयोग करना चाहिए? तो पहले उसको करना चाहिए, इसके लिए एक सिद्धांत है FIR, यानी पहले फंजीसाइड से ट्रीट कीजिए, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कीजिए, फिर फॉस्फेट सोलवलाइजिंग बैक्टीरिया यानी PSV से आप उसको ट्रीट कीजिए, और अंत में जो राइजोबियम है उसे आप उपचार करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि FIR के प्रिंसिपल के तहत आप इसमें उपचार करते हैं। यदि आजकल बाजार में ये सॉलिड कल्चर के बजाय लिक्विड कल्चर आने लगा है, तो जो लिक्विड कल्चर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आपको 10 ml प्रति KG के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। बहुत सारे किसान हैं जो मान लीजिए बीज उपचार तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बीज उपचार नहीं कर पाए, यदि खेत में वो प्रयोग करना चाहते हैं तो मिट्टी में यदि वो प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको चाहिए कि इसमें 750 ml यदि लिक्विड प्रयोग कर रहे हैं तो 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उनको उसमें डालना चाहिए। और लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होगा किसान भाइयों जितना फायदेमंद आपको बीज उपचार होगा, इसीलिए बीज उपचार पर ज़्यादा बल दें। और इससे काफ़ी आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपकी मिट्टी में हो जाता है जो फसल को

0: तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ आप यदि देखें तो आपके मिट्टी में भी नाइट्रोजन की स्थिति ठीक ठाक होती है, इसीलिए आपको जो जैव उर्वरक है उस जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई हैं जैव उर्वरक की, और अगर हम रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली क्या है कि आज के तारीख में वर्मी कंपोस्ट, कई तरह के वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं। एक समान वर्मी कंपोस्ट भी बनता है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है वो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट भी बनाता है।
1: अच्छा,
0: तो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट में हम लोग रॉक फॉस्फेट भी मिलाते हैं, उसमें फॉस्फोजिप्सम या जिप्सम भी मिलाते हैं, और जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में आपको सल्फर का बड़ा रोल है। सल्फर यदि आपने प्रयोग किया है तो 10-15% यील्ड आपका वैसे बढ़ जाएगा। और आजकल देखा जा रहा है बिहार में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सल्फर की कमी है, तो ऐसे क्षेत्रों में यदि हम सल्फर डालते हैं तो हमारी दलहनी क्या तिलहनी फसल में भी ये उत्पादन में हमारी वृद्धि करता है। तो यदि हम देखें तो ये अलग से किसान को डालने में दिक्कत होती है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, जिसको हम लोग इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, संवर्धित वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसमें आपको सल्फर है, फॉस्फोरस भी काफी मात्रा में, क्योंकि दलहनी फसलों में फॉस्फोरस का बड़ा रोल है और साथ ही साथ उसमें गंधक का भी बड़ा रोल है। तो यदि आप इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा सल्फर होता है, तो वह यदि आप प्रयोग करते हैं तो काफी फायदेमंद रहता है। नहीं, यदि आपने ऐसा नहीं किया और आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो सल्फर आपको अलग से डालना पड़ेगा, सल्फर के खाद के रूप में आपको सल्फर डालना होगा। तो इसीलिए इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय ही डाल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप 20 केजी नाइट्रोजन डालते हैं, और हमारे यहाँ जो संवर्धित वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें मोटे तौर पर 2% होता है, तो 2% हो गए, यानी 1 टन यदि आप डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट तो उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। एक चीज देखिए, जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जिसको आप हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यह किसानों के लिए वरदान है लेकिन पौधों के लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि 1 केजी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 15 से 18 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पौधे को काफी मेहनत करनी पड़ती है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। इसीलिए ये जो शुरू में आप डालते हैं नाइट्रोजन, जो 20 केजी नाइट्रोजन की बात हमने कही, वो इसीलिए डालते हैं जिससे कि उसका फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ जाए। उसमें जो कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाने का कौन बनाता है, पत्ती बनाता है, तो वो पत्ती जो हमारा बना रहा है वो ज्यादा हो, इसीलिए आप शुरू में इसमें नाइट्रोजन भी डालते हैं। यदि आप नहीं डालेंगे तो होता क्या है कि ये आपको लगभग जाके 25-30 दिन के बाद नोडुलेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा वो आगे स्टेज में होगा, लेकिन उसमें तो पौधे को चाहिए, तो प्रारंभिक स्टेज में चाहिए और लीफ बढ़ाने के लिए, लीफ का एरिया बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा चाहिए, इसीलिए शुरू में आपको नाइट्रोजन डालना है। और फॉस्फोरस जो गांठ बनता है उसके लिए फॉस्फोरस बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप फॉस्फोरस भी डालते हैं। मैंने कहा कि 50 केजी आप जो है 50 से 60 केजी तक का फॉस्फोरस डालते हैं, तो वह आपको इसमें जो है क्या कहते हैं आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि ये तो नाइट्रोजन फास्फोरस की बात है। हाँ, जिस मिट्टी में पोटास कम है, पोटास भी आप 20 केजी तक डाल सकते हैं, लेकिन बिहार के कंडीशन में जो अनुशंसा है वो अनुशंसा यही 100 केजी DAP का है। हाँ, लेकिन यदि बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो बर्मी कंपोस्ट आपने डाल दिया, खेत की तैयारी के समय डाल दिया, उसके बाद बीज को उपचारित करके आप PSB भी डालना चाहते हैं तो PSB भी डाल दीजिए, राइजोबियम कल्चर चाहते हैं राइजोबियम कल्चर भी डालिए। हमने बताया ही कि आप उसमें FIR का प्रिंसिपल अडॉप्ट कीजिए, उसके बाद आपने इसका प्रयोग कर दिया। ये प्रयोग करके आप जो है क्या कहते हैं, फिर भी यदि मान लीजिए आपके पास उतना नहीं यदि वर्मी कंपोस्ट है कि 50% नाइट्रोजन आप उसमें सप्लाई कर सके, तो जितनी मात्रा आप वर्मी कंपोस्ट से सप्लाई करते हैं उतना वर्मी कंपोस्ट से, और शेष जो बची हुई मात्रा है, जितना आपका नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है, वह रासायनिक उर्वरक से आप उपलब्ध करवाते हैं। ये तरीका है
1: जी। तो बिल्कुल श्रोताओं और हमारे किसान भाइयों, आपने तरीका जान लिया। अगर आप तीनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या कुछ विधि है, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आशा करते हैं आप इस वार्ता को सुनेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा, और इस प्रकार आप वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दो?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम

अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुवाई शुरू कर दे। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में विशेष चर्चा करते हैं और हम आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात करेंगे सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन

मैं सभी को नमस्कार करता हूं और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक

तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कम्प्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे, उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीद और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्म जीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन।

और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो वृहत पोषक तत्व है जो प्राथमिक वृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे तो जैसे नाइट्रोजन है नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है जैसे अमोनिफिकेशन करता है नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है तो वो क्या करता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है कुछ ये स्यूडोमोनास स्पीसीज आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए तीसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या है तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया एजोटोबैक्टर हो गया एजोस्पेरिलम हो गया क्लोस्ट्रिडियम हो गया तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है पौधा में फिक्स करने का काम करता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है एजोस्पेरिलम है क्लोस्ट्रिडियम है ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंद करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी

में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ? आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है और उसके साथ साथ एक ACCDMNase इंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थ्रेंजेनेसिस, ये क्या है ये भी रोग के रोकथाम में पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में बहुत से पोषक
तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष

0: उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक, जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार, जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रैजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50-250 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा

हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है, तो उस फास्फोरस को ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ से फास्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में, अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है, जो PSB बायो फर्टिलाइजर है। और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है, तो एजोटोबैक्टर भी है। एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए, तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 KG तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है। और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है। और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए। और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं, या ब्लू ग्रीन अल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके, ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा। और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे, और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 KG प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडल नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज, राइस, वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप
25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं,

0: और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचड़ा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचड़ा के उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचड़ा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचड़ा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचड़ा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है, जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ उसको हमको सुबह शाम के समय ही देना है वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है, 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है, और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई।

0: और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है। इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. ഹലോ, നമസ്കാര്. ആപ് സുൻ രഹേ ഹൈ 90.8 FM ഗ്രീൻ ഓർ യേ ഹൈ ആപ്കാ അപ്നാ പസന്ദീദ ഫ്രീക്വൻസി 90.8 മെഗാഹെർട്സ് ഓർ ബിഹാർ കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ സബോർ സേ सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन. तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें, और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज़ अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं. और आज का भी ये खास विषय है, मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में. सिंचाई क्यों ज़रूरी है, और साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से आज हमारी जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सनोज कुमार, कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे. तो सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना ना भूलें. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: सिंचाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंचाई का इस्तेमाल जो प्रमुखतः है वो किन किन कामों में किया जाता है.
1: किसान भाइयों, सिंचाई जल चक्रीय चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और सिंचाई का इस्तेमाल जैसे कि आप लोग समझते हैं कि खेतों में जरूरी पानी को डालने के लिए किया जाता है, वो तो है ही. इसको और भी अच्छे तरीके से कहें तो छोटी अवधि के अगर सूखा पड़ा या ऐसे ही दूसरे समय में जरूरी जल को प्रदान करने में होता है, या मिट्टी में अगर लवण आ गया है, नमक आ गया है, तो उसको घोलने के लिए भी हमको सिंचाई के पानी को डालना पड़ता है. अगर हम कृषि रसायन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे केस में भी हमको सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करना है. पौधों को बढ़त के लिए तो करना ही है, साथ ही साथ पौधों को बढ़त के लिए जो सिर्फ पौधे नहीं, उनके अगल बगल के जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए भी सिंचाई जल का प्रयोग होता है. और कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करने में इनका इस्तेमाल होता है. तो ये सब जो हैं, आप मुख्यतः आप कह सकते हैं कि ये सिंचाई के कार्य हैं.
0: तो सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं, और भी अन्य काम किए जाते हैं सिंचाई से, आपने जाना जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया. सर, ड्रिप सिंचाई के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस प्रणाली के बारे में, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं.
1: ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है, जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है. यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत के ढलान, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों में अपनाई जा सकती है. ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80 से लेकर 90% होती है, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है. फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की जो होती है गुणवत्ता बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है. रसायन और उर्वरकों का हम दक्ष इस्तेमाल कर पाते हैं. जल के विचालन एवं अप्रवाह में कमी आती है, खरपतवारों में कमी आती है, और साथ ही साथ चूंकि हमारी दक्षता बहुत ज़्यादा है, 80 से 90% है, तो जल की बचत की जा सकती है. ड्रिप सिंचाई में इमीटरों और ड्रिपरों की सहायता से पानी जो है पौधे के जड़ों के पास डाला जाता है, या मिट्टी के सतह अथवा उसके नीचे ये पानी पहुँच जाता है, और इसकी दर है जो कि 2 से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे, अर्थात बहुत ही कम होती है. और जल्दी जल्दी सिंचाई करके मिट्टी में नमी का स्तर हम अनुकूल रख सकते हैं. ड्रिप सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल अनुप्रयोग की दक्षता चूंकि बहुत उच्च है. विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे. जैसे कि अंत में ये कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई आज की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपहार के रूप में मिली जल जो है असीमित और मुफ्त रूप से उपलब्ध नहीं है. अतः ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जल का उचित उपयोग करें. विश्व जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है, सभी लोग जानते हैं.
0: जी बिल्कुल. ड्रिप सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से ये जल की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन में, उस समय में हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली ही अपनाना चाहिए. इससे बहुत जल्दी सिंचाई होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी. डॉक्टर साहब, और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो थोड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे.
1: ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय में और मजदूरी में जो खर्च होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी. लंबे समय में आप देखेंगे तो जड़ क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर मिट्टी का, पौधे का जड़ है, में पानी सदैव जितना जरूरी है पौधे को उतना बना रहता है. जमीन में हवा या जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि बहुत

0: तेजी से और एक समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पौधा बहुत आगे बढ़ गया, ऊंचा चला गया और एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी पौधे आपको देख के ही लग जाएगा एक समान है और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा रूल है कि पानी को बहुत ही कम स्पीड, कम गति से दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
1: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
0: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है
1: जी।
0: टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20-50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा, पानी। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की, वो 80-90% है। और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30-60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरिगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आज के डेट में ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है,
1: बिल्कुल,
0: और कितना ज़रूरी है। फिर ज़मीन आपका, अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर जमीन है, शुष्क जमीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा है आपकी ज़मीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय ज़मीन हो, कैसा भी ज़मीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर है रासायनिक खाद। हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि पौधे तेज़ी से बढ़ें। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में हम पानी के साथ ही रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंचाई के साथ साथ हम फर्टिगेशन, मतलब फर्टिलाइजर भी एक ही साथ दोनों डाल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा समय का भी बचत होता है और साथ ही साथ हमारे पौधे के लिए भी वो बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल।
0: अगला है खरपतवार। अब सब किसान बंधु सभी जानते हैं कि जैसे ही हम सरफेस इरिगेशन या सतही सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत में हर एक जगह पानी पहुंचता है। अब जहां जहां पानी पहुंचेगा खरपतवार भी उगेगा ही उगेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में। तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट और रोग का प्रभाव है, तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हैं जो मुख्य लाभ हैं
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
0: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं जैसे कि नंबर 1 है हेडर असेंबली, फिर है फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है, वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है, यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक, वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़

करते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है, ठीक है। सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमिटर्स होते हैं, और इमिटर्स भी बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, इनलाइन है, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली। हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो हैं वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूँकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण, कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जिससे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ पानी को यूज करें। साफ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही हम अपने मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं हमारे। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोले तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर ना निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है। सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन जो कि फर्टिगेशन बेसिकली कहा जाता है। तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है, तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है, और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास, और इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं, और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं, और डालेंगे कहाँ, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को, और वो पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं, यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में, मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लैटरल में, और लैटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझ किसान, ठीक है। तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन। तो मेन लाइन है यह पंप से सब मेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सब मेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुंचाने के लिए उपयोगी है। अब सब मेन क्या है, तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है। लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सब मेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा, और सब मेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है, और वो जाएगा लैटरल के पास। फाइनली लैटरल क्या होता है, लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, उनको पॉली ट्यूब भी कहते हैं। सबमेन का पानी पॉली ट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुंचा सकते हैं पौधों के पास। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार
पॉलीट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे

0: और लेटरल जो होते हैं ना, वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बने होते हैं। अब जब लेटरल आ गया तो लेटरल के ऊपर अब हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो इनलाइन ड्रिपर्स का प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसे ही कुछ भी लगा लिया, उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल्व्स का यूज करते हैं, तो पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है और ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि पानी मेन लाइन से सबमेन में आएगा, सबमेन से लेटरल में जा ही नहीं रहा, जब वो दबाव से नहीं जाएगा तो ड्रिपर से पास ही नहीं होगा पानी, ठीक है। तो हमको बहुत सारे वाल्व्स का प्रयोग करते हैं, सबमेन के शुरू में एयर रिलीज वाल्व यूज करते हैं या वैक्यूम रिलीज वाल्व, बहुत ही जरूरी है लगाना। अन्यथा क्या होगा, पंप को हम जैसे ही बंद करेंगे हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी अंदर खींच जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे आपके ड्रिपर्स के पास और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बंद कर देंगे, और जैसे ही बंद होगा तो आपके ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा। ना आप इरिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमीटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज़ करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं हम उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हरेक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी के गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा। तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है या कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें। पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें,
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ है तो उसको आपको रिपेयर करना है। फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका ज़मीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं, कहीं पे हो सकता है पानी गया हो, कहीं पे नहीं, यानी जहाँ पे नहीं गया है वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स हैं वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना उसको खोल कर पानी को 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोल रहे हैं, जितनी भी गंदगियाँ हो सारी के सारे निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है। जब दोनों काम एक साथ होता

0: है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है, यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं, ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर, वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र अगर हम पूरे खेत में फेंक दें तो पौधा को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है, इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में उगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की, साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक के पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और ज़मीन में नीचे नहीं जाता है, जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया। कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है, जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है, और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं, जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी तरीके से जल के उपयोग की दक्षता है, तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में, जबकि सतही सिंचाई में सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है। ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य ज़रूरत है, जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूंकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता, इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, जिससे कि हम उसको यूजेबल बना के, मतलब उपयोगी बना करके हम खेतों में भेज सकते हैं। लेकिन सतही सिंचाई जब हम करेंगे और खारे जल के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा खेत ही लवण, मतलब साल्टी, ये सब हो गया और खेत बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कि बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की समस्या। देखिए पौधों के आसपास वायुमंडल में नमी और सांद्रता जो होती है ना वो कम होती है ड्रिप इरिगेशन में, इसलिए पौधों में बीमारियों और कीड़े मकोड़े लगने की संभावना

0: इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का इरिगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही महंगे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दे, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने, ठीक है। हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है अब हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो है मिट्टी जो है कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बह के दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी। जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्म, वो नहीं रहता और पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से और अच्छे से होती है, ठीक है। और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरिगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में उबड़ खाबड़ आने की वजह से, ठीक है। तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल भी हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज़्यादा होता है और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी ज़रूरत होती है। इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है
1: जी। तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनना ना भूलें FM ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांधकर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें। लेकर आया है 90.8 FM।

0: सम्रीन आपके हर सवाल का जवाब, कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल है। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है, और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर

ले तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते।

0: या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
3: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे।

है। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वही मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने

की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने

0: लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरी बेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरे जोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0

0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। हमेशा की तरह आप बच्चों से जब बात ना हो तो कुछ सूना सूना लगता है, मन उदास रहता है, लेकिन जैसे ही आप बच्चों से बात करने का मौका मिलता है मन बहुत खुश हो जाता है। खुशी की बात तो ये है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक नन्हे मेहमान आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नन्हे मेहमान कौन है और आप इनका नाम भी जानना चाह रहे होंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बस हमारा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो हम आपको इनका नाम बता देते हैं। ये नन्हे मेहमान है आस्तिक। आस्तिक आप ही की तरह स्कूल में पढ़ते हैं और अभी आजकल फिलहाल ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए ही अपनी टीचर से बात कर लेते हैं और अपने दोस्तों को भी देख लेते हैं और गपिया लेते हैं। गपिया लेना मतलब? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को गपियाने का मतलब नहीं पता होगा। अरे भाई, गप मारना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत क्रिएटिव एक्टिविटी है गप मारना। गप मारने को बात करना भी कहते हैं, तो इसलिए हमने अपना शब्द बना लिया और हमने इसे कहा गपियाना।

0: तो आज हमारे बीच गपियाने के लिए मौजूद हैं आस्तिक जी, तो मैं झटपट आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक, हमारी आप बात सुन रहे होंगे, बच्चों के साथ हम कैसे बात करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हमारे सामने बच्चे तो है नहीं, तो फिर हम उनसे ऐसे कैसे बात कर लेते हैं, लगता होगा ना?
1: हाँ।
0: और ये लगता होगा कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, है ना?
1: हाँ।
0: लेकिन बच्चे हमसे चाहे कितना भी दूर क्यों ना बैठे हों, लेकिन सारे बच्चे हमारे मन के नजदीक हैं, है ना?
1: हाँ।
0: तो आज हम बात करेंगे कुछ चीजों की, और उन चीजों के नामों में जो आवाजें आई हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है?
1: ठीक है।
0: तो हम पहले अपने स्कूल के खेल के मैदान की बात कर लेते हैं, और उसकी बात भी कर लेते हैं कि खेल के मैदान में हम कौन कौन से खेल खेलते थे। कुछ याद है आस्तिक आपको कि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे?
1: हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई और बर्फ पानी खेलता हूँ।
0: हम भी अपने दोस्तों के साथ खूब खेल खेलते हैं, और बच्चों के साथ खेलना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम छुपन छुपाई खेल खेलते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना आस्तिक कि कुछ चीजों के तो हम पीछे छिपते हैं और कुछ चीजों के हम नीचे छिपते हैं।
1: हाँ।
0: कुछ याद आया आपको कि जब आप छुपन छुपाई खेलते थे तो आप कौन सी चीजों के पीछे छिपते थे और कौन सी चीजों के नीचे छिपते थे?
1: हाँ, मुझे याद आ रहा है। हम पेड़ के पीछे छुपते हैं, हम मेज के नीचे छुपते हैं, हम झाड़ियों के पीछे छुपते हैं और चारपाई के नीचे छुपते हैं।
0: बिल्कुल सही बताया आपने। हम पेड़ के पीछे छिपते हैं, मेज के नीचे छिप जाते हैं, झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और चारपाई के नीचे छिपते हैं। तो हमारे आसपास ऐसी कई तरह की चीजें हैं जिनके हम पीछे छिप सकते हैं और जिनके हम नीचे छिप सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको छुपने की कोई जगह ना मिले और आपके घर में आपकी अम्मा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी अम्मा के पीछे छिप जाएंगे, है ना?
1: हाँ।
0: बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वे छुपन छुपाई खेलते हैं और अगर उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलती तो वे क्या करते हैं, अपनी अम्मा के साड़ी के पल्लू में छिप जाते हैं या फिर अपनी अम्मा के पीछे छिप जाते हैं। याद आया आपको?
1: हाँ।
0: कभी आपने ऐसे छुपन छुपाई खेली है जब आप अपनी अम्मा के पीछे छिप गए हो और कोई आपको पकड़ नहीं पाया हो?
1: नहीं।
0: पकड़ लिया था?
1: हाँ।
0: क्योंकि अम्मा ने बता दिया होगा कि देखो आज तक तो यहाँ छिपे हैं।
1: हो सकता है।
2: हाँ।
0: तो हमारे घर में तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हम चीजों के नीचे छिप सकते हैं या फिर पीछे छिप सकते हैं। अच्छा आस्तिक, तो ये बताइए कि हमारे घर में दरवाजा है, ठीक है? तो हम दरवाजे के पीछे छिपते हैं या दरवाजे के नीचे छिपते हैं?
1: दरवाजे के पीछे छिपते हैं।
0: अगर हमारे घर में पर्दा है तो हम पर्दे के पीछे छिपते हैं या पर्दे के नीचे छिपते हैं?
1: पर्दे के पीछे छिपते हैं।
0: और अगर बारिश का मौसम है, छाता खुला हुआ है, तो हम छाते के पीछे छिपेंगे या छाते के नीचे छिपेंगे?
1: हम छाते के नीचे छिपेंगे।
0: शाबाश, ये तो थी आस्तिक की बात, और उन्होंने बताया कि हम किन चीजों के पीछे छिप सकते हैं और किन चीजों के नीचे छिप सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हम आस्तिक ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम ये कहते हैं छाता या छतरी, तो इसमें शुरू की आवाज कौन सी है?
1: छ।
0: वेरी गुड। और छाता में अंतिम आवाज कौन सी है?
1: ई।
0: छाता में अंतिम आवाज कौन सी है? छाता। त। और छाता में अंतिम आवाज कौन सी है?
1: त।
0: शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में छ की आवाज आती है? अब ये छ की आवाज शुरू में हो सकती है जैसे छतरी, बीच में हो सकती है जैसे मछली, और अंत में तो मुझे कहीं लगती ही नहीं। हाँ।

0: एक शब्द है जहाँ अंत में छ की आवाज आती है और वह शब्द है अच्छा। समझ में आया? तो हम आज जानेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके नाम में या जिन शब्दों में छ की आवाज है। ये शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। तो हम खेल खेलेंगे आज आस्तिक के साथ। और हम क्या करेंगे, एक शब्द मैं कहूंगी और एक शब्द आस्तिक को कहना होगा। तो आस्तिक तैयार हैं आप?
1: बिल्कुल।
0: तो हम आपसे शुरू करते हैं। आप कोई ऐसा शब्द बताइए जिस शब्द में या जिस चीज के नाम में छ की आवाज है।
1: छतरी।
0: और एक और शब्द बता सकते हैं?
1: मछली।
0: शाबाश। तो मैंने एक शब्द बताया छीलनी। छीलनी जानते हैं क्या होती है?
1: नहीं।
0: हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि दरअसल ये छीलनी है क्या। अच्छा ये बताइए आस्तिक कि छीलनी शब्द में छीलने का भाव है?
1: हाँ।
0: लगता है ना कि ऐसी कोई चीज होगी जिससे हम छीलते हैं। तो जिस शार्पनर से आप लोग पेंसिल छीलते हैं उसे हम कहते हैं छीलनी। तो मैंने शब्द कहा छीलनी और आपका शब्द क्या होगा?
1: छलनी।
0: छलनी से हम क्या करते हैं?
1: छानते हैं।
0: क्या छानते हैं?
1: हम दूध में से मलाई छानते हैं।
0: हाँ।
1: चाय में से पत्ती छानते हैं।
0: शाबाश।
1: आटे में से पत्थर छानते हैं।
0: शाबाश। तो मुझे लगता है कि आस्तिक को दूध में मलाई पसंद नहीं है, है ना? ठीक है, तो आस्तिक ने हमारे साथ अपना शब्द साझा किया छलनी। तो मैंने कहा मच्छर। आपका शब्द क्या है?
1: अच्छा।
0: जैसे हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, तो मेरा शब्द होगा कछुआ। तो आपका शब्द क्या होगा?
1: छीलना।
0: और मेरा शब्द है छूमंतर, यानी कि गायब हो जाना। और आपका शब्द क्या होगा?
1: छींक।
0: और मेरा शब्द है छ। तो आपका शब्द क्या होगा?
1: छेद।
0: और मेरा शब्द है छोड़ना। और आपका शब्द क्या होगा?
1: पीछे।
0: वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होंगी जिनके नाम में छ की आवाज है। ये आवाज शुरू में हो सकती है जैसे छतरी। ये आवाज बीच में हो सकती है जैसे मछली और मच्छर और कछुआ। ये आवाज अंत में हो सकती है जैसे अच्छा। ठीक है आस्तिक?
1: ठीक है।
0: हम एक और आवाज की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं छतरी, तो अंत में आपको किसकी आवाज सुनाई देती है?
1: ई।
0: शाबाश। और ये जो ई की आवाज है ये किसके साथ मिलकर आ रही है?
1: छतरी।
0: यानी र के साथ हम कहते हैं री, है ना? तो आज हम इसी ई की आवाज की बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे ईक। ईक में शुरू की आवाज क्या है?
1: ई।
0: शाबाश। और ये शब्द है ईक। एक और शब्द हमारे पास है जिसमें ई की आवाज है और यह शब्द है आई। लेकिन ये ई कहाँ है, शुरू में है या अंत में है?
1: अंत में है।
0: वेरी गुड। एक और शब्द हमारे पास है गई। ये ई की आवाज कहाँ है, शुरू में या आखिर में?
1: आखिर में।
0: वेरी गुड। पकड़ाई। ई की आवाज कहाँ है?
1: अंत में।
0: शाबाश। अच्छा चारपाई कहें तो?
1: अंत में।
0: वेरी गुड। तो हमने ये जाना कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ ई या तो शुरू में आता है जैसे ईक, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ ई अंत में आता है जैसे आई, गई, पकड़ाई, ठीक है, और चारपाई। और चारपाई के नीचे हम छिप जाते हैं जब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे वाह, छुपन छुपाई में भी तो छ की आवाज है, हम तो भूल ही गए थे।
1: हाँ।
0: हमने आज जाना कि ई की आवाज को हम कैसे पहचानेंगे। ये ई की आवाज अगर किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर आती है तो उसकी भी आवाज ई जैसी हो जाती है।

0: जैसे की। और एक और शब्द आप बताएंगे?
1: चीनी।
0: शाबाश। चीनी में च और न दोनों में ई की आवाज है ना?
1: हाँ।
0: एक और शब्द हमारे पास है चील। इस चील शब्द में शुरू में आपको ई की आवाज सुनाई देती है या आखिर में?
1: शुरू में।
0: वेरी गुड।

0: ई की आवाज कहाँ कहाँ है?
1: दोनों जगह पे।
0: दोनों जगह मतलब?
1: मतलब न पे भी है और ल पे भी है।
0: शाबाश, यानी शुरू में भी है और अंत में भी है। एक और शब्द हमारे पास है गुलाबी, तो ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: और आप कौन सा शब्द बताएंगे?
1: हरी।
0: अब हरी में ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: वेरी गुड। और मेरा शब्द है नारंगी, तो ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: और आपका शब्द क्या होगा?
1: गठरी।
0: वेरी गुड। और गठरी में ई की आवाज कहाँ है?
1: आखिर में।
0: शाबाश। तो अभी हमने आस्तिक के साथ मिलकर ये जाना कि हम छ की आवाज को कैसे पहचानेंगे और ई की आवाज को कैसे पहचानेंगे। आस्तिक, अब आप ये बताइए कि अगर आपको छ और ई की आवाज को सुनकर और देखकर पहचानना हो तो क्या पहचान लेंगे?
1: बिल्कुल।
0: शाबाश। अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग आवाज आती है, यानी अलग अलग अक्षरों का इस्तेमाल होता है। जैसे एक शब्द है हमारे पास मछली, ठीक है? मछली में पहली आवाज किसकी है?
1: म की।
0: और दूसरी आवाज किसकी है?
1: छ की।
0: और तीसरी आवाज किसकी है?
1: ल की।
0: शाबाश। यानी मछली में तीन आवाजें हमारे पास हैं, म, छ और ली। तो ये शब्द है हमारे पास मछली, ठीक है? अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक शब्द है अलमारी, तो इसमें शुरू में कौन सी आवाज है?
1: अ।
0: और उसके बाद कौन सी आवाज है?
1: ल।
0: उसके बाद
1: म।
0: और अंत में
1: र।
0: शाबाश। यह शब्द बना अलमारी, ठीक है? अब आपको बताना है कि क्या अलमारी में अ की आवाज है?
1: हाँ।
0: क्या अलमारी में न की आवाज है?
1: नहीं।
0: वेरी गुड, खूब समझदार हैं। ठेला, ठेला में क्या छ की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या म की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या अ की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या न की आवाज है?
1: नहीं।
0: क्या ठ की आवाज है?
1: हाँ।
0: हाँ, ठेला में एक आवाज तो है ठ, और दूसरी आवाज कौन सी आस्तिक?
1: ल।
0: वेरी गुड। अब हमारे पास एक और चीज है, अक्सर बच्चे इसे कागज से बनाते हैं और बारिश में तैराते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये चीज कौन सी है?
1: नाव।
0: कागज की नाव, है ना?
1: हाँ।
0: आपने भी कागज की नाव बनाकर खूब तैराई होंगी, है ना?
1: हाँ।
0: तो बताइए, क्या नाव शब्द में म की आवाज है?
1: नहीं।
0: अ की आवाज है?
1: नहीं।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और व की आवाज है, है ना?
1: हाँ।
0: तो ये शब्द हमारे पास है नाव। अब एक और शब्द हमारे पास है नल, तो क्या इस नल शब्द में म की आवाज है?
1: नहीं।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और ल की आवाज है?
1: हाँ।
0: शाबाश। और अगर हम ये कहें अनार, ठीक है, हम कहें अनार, अनार लाल रंग का होता है, तो बताइए अनार में ठ की आवाज है?
1: नहीं।
0: छ की आवाज है?
1: नहीं।
0: म की आवाज है?
1: नहीं।
0: अ की आवाज है?
1: हाँ।
0: न की आवाज है?
1: हाँ।
0: और एक और आवाज कौन सी बची?
1: र।
0: शाबाश। तो हमने ये जाना कि अनार में हमारे पास तीन आवाजें हैं, अ की आवाज है, न की आवाज है और र की आवाज है, ठीक?
1: हाँ।
0: तो आज हमने आस्तिक के साथ मिलकर छ और ई के बारे में जाना। तो आप भी ऐसे बहुत सारे शब्द सोचिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए जिनमें छ की आवाज है और ई की आवाज है, ठीक है आस्तिक?
1: ठीक है।
0: आपको आज मजा आया?
1: बहुत ज्यादा।
0: हमें भी आस्तिक के साथ बात करके बहुत मजा आया, और मुझे यकीन है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी आस्तिक के साथ बात करके बहुत मजा आया होगा। तो आप ऐसे शब्द सोचिए और लिख डालिए झटपट अपनी कॉपी पर, यानी छह

0: और ई की आवाज वाले शब्द। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम में छ और ई की आवाज है, तो उन चीजों की तस्वीर बनाइए और ये भी बताइएगा कि वे चीजें आपको कहाँ दिखती हैं। यानी आपको एक तस्वीर नहीं बनानी, यानी आपको अनार, अलमारी, छतरी, मछली, ठेला, नाव, ये अलग अलग नहीं बनाना, बल्कि आपको ये भी बनाना है कि ये सारी चीजें हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। जैसे ठेला बाजार में नजर आता है, तो आपको बाजार बनाना है और वहाँ बनाना है ठेला, है ना। और आपको बनानी है मछली, तो आपको समुद्र बनाना है या तालाब बनाना है, तालाब के आसपास का हिस्सा दिखाना है जहाँ खूब घने घने पेड़ हैं, और फिर तालाब में आपको बनानी है मछली। तो ऐसे ही आप तस्वीर को खूब बड़ा करके खूब अच्छे से बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए। हम आपकी तस्वीरों को आपकी ही बाल पत्रिका फिक्की बच्चों में छापेंगे। तो हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। मैं पता एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो बच्चों, आज आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया। तो इस मजे मजे में मजेदार तरीके से क्यों ना आस्तिक जी का धन्यवाद दे दिया जाए। ठीक है, तो आप बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आस्तिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए और हमारे साथ मजेदार बात करने के लिए। तो आस्तिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: हम आस्तिक जी के साथ दोबारा मिलेंगे और चर्चा करेंगे कुछ नई आवाजों पर, कुछ नई बातचीत पर और कुछ नए खेलों पर। तब तक के लिए मैं और आस्तिक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, तकनीकी सहयोग विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि

0: 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है, पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें, बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
2: नमस्कार मेरे किसान भाइयों को और साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी को आपकी आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोतागण, आपको बता दें कि कई प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो हमारे लिए खतरे के तौर पर बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे जो संकट हैं वो हमें देकर जाते हैं। हम मनुष्य हैं तो हम अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो पशु जिसे हम पालते हैं वो बता नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या जो परेशानियां चल रही हैं और कुछ सिम्टम्स उनके अंदर हमें नज़र आती है वो हमें समझनी होती है। तो फिलहाल अभी बाढ़ की बात करते हैं और हमारे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आए हुए हैं और इससे प्राकृतिक आपदा से हम ग्रसित हैं और इस समय देखा जा रहा है कि बाढ़ का पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कहा भी जाता है कि बाढ़ का जब पानी चला जाता है तो वो बहुत सारी बीमारियाँ छोड़ कर जाता है और ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम अपनी खास देखभाल रखें और साथ ही जो हमारे पालतू जानवर हैं, पशु हैं, उनकी खास देखभाल का जो एक इंतजाम है वो करें। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज का विषय है हमारा कि बाढ़ उपरांत पशुओं की देखभाल हम कैसे करें और ख़ास तौर पर पशुओं के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अमित कुमार जी हैं, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग पशुपालन और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब।

0: भी देखा जा रहा है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने कितना कहर मचाया है और लोग काफ़ी परेशान हैं इस वजह से। जहां तक पशुओं की बात है तो पशुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाढ़ आ जाता है तब पशुओं के लिए क्या क्या समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।
1: देखिए, हम इंसान इस प्राकृतिक आपदा में जैसे खुद को संभालते हैं, खुद को बचाते हैं, बिल्कुल उतना ही ध्यान, उतना ही व्यवस्था होना चाहिए हम अपने पशुओं के लिए करें, क्योंकि पशु जो हैं आपसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो परेशानी उतना ही भुगतते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए जो चारा है वो सारा डूब जाता है, खेत खलिहान सब डूब जाता है, रहने का घर हमारा भी डूबता है और पशु का भी डूबता है। हम लोग सब वहाँ से डूबे हुए क्षेत्र से भाग करके ऊंचे स्थान पर सड़क पर शरण लेते हैं,
0: सूखे क्षेत्र
1: में, तो वहाँ पशु भी रखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो खाने की होती है। पशु के लिए हरा चारा का बिल्कुल अभाव हो जाता है और जो सूखा चारा होता है या जो आप अनाज भी रखते हैं उसमें बहुत सारा फफूंदी विकसित हो जाता है। तो ये बाढ़ के कारण आर्द्रता भी बहुत होती है, बरसात होता है और आप जो भी खाना खिलाएंगे फफूंदी लगा हुआ रहेगा, तो इसमें अफ्लाटॉक्सिन्स का एक समस्या आता है, पशु का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके खाने पीने में आप बिल्कुल सावधानी बरतें, कहीं से यदि चारा डूबा हुआ क्षेत्र से भी लाते हैं तो उसको बिल्कुल साफ पानी से धो लें, उसको धूप में थोड़ा सुखा लें। तो जो हरा चारा आप निश्चित रूप से होता है, हम देखते हैं अक्सर कि किसान डूबे हुए खेत में भी चारा काट करके लाते हैं, ठीक है, वो आप खिला सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जो जल जमाव है, जल जमाव में बहुत सारा बीमारी का दूषित पानी पड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से चारा को भी दूषित कर देता है और बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं, जो नेमेटोड्स, स्टोर्स, लीवर फ्लूक है, इंटेस्टाइन बर्म है, उसका लार्वा इस घास पे पानी के द्वारा पहुंचता है और वहाँ घास को आप ला के डायरेक्ट खिलाएंगे तो पेट में जोंक होता है, कीड़ा फड़ता है, लीवर फ्लूक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हरा चारा पहली बात तो उसको आप बिना डूबे हुए जगह से काटें, डूबा हुआ जगह से काटते हैं तो उसको साफ पानी से, ताज़ा पानी से धो लें, हो सकता है धूप में भी सुखा लें, उसके बाद खिलाएं। अच्छा। ये सावधानी रखनी।
0: किसान भाइयों और हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें हम बता देंगे, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो समस्याएं वो हैं सबसे पहले तो पशुओं के लिए आ जाती हैं कि उनके चारे की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आप डूबे हुए क्षेत्र से अगर चारा काट कर लाते हैं तो आप खास तौर पर उन चारों को पहले साफ पानी से धो डालें और उसके बाद उसे सुखाएं और उसके बाद अपने पशुओं को चारे के तौर पर खिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर चारे की बात हो गई और मेनली जो है वो चारे का ही दिक्कत हो जाता है पशुओं के लिए, और इसके बाद जब आहार प्रबंधन की बात आती है तो आपने चारे की बात की, लेकिन आहार प्रबंधन अगर सम्मिलित तौर पर बातें करें आहार प्रबंधन के बारे में तो उसके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं।
1: देखिए, जहाँ तक बात है खाने की पशु की, तो निश्चित रूप से एक किसान को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक पशु को दिन भर में कितना खाना मिलना चाहिए, तो आप उसके अनुसार उसका खाना तैयार करते हैं, देते हैं। लेकिन बाढ़ के स्थिति में सब जगह डूबा हुआ हो तो आप बहुत कम अनाज देते हैं, निश्चित रूप से उसके उत्पादन क्षमता पे असर पड़ेगा, दूध घट जाएगा। जबकि अगर आपके पास उपलब्ध है, यदि भूसा भी खिलाते हैं तो धूप में सुखाएं, लेकिन एक पशु को, एक जो दूध देने वाली गाय है, प्रतिदिन 7 से 8 किलो भूसा दें आप, और हरा चारा 10-12 किलो भी होता है तो अच्छी बात है, 15 से 20 किलो दिया जाता है, लेकिन इस सीजन में अभाव होता है, आप कम से कम 5 से 7 किलो सूखा चारा और 10 से 12 किलो हरा चारा और अनाज कम से कम 1-2 किलो उसको मेंटेनेंस राशन के रूप में दिया जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और मान लेते हैं कि आप कुछ अनाज खरीद करके लाते हैं तो ऐसे क्षेत्र से नहीं लाएं जहां से कोई बीमारी फैला हो या जहां पर बहुत पानी में भींग गया हो अनाज, वैसे अनाज को खिलाने से परहेज करें, साफ अनाज दें। और बिल्कुल आप पशु को जो खिलाते हैं उसके बाद देखें कि उसके प्रोडक्शन पर कोई ड्रास्टिक असर तो नहीं पड़ रहा है, आज खाना खिलाया और कल से वो खाना भी खाना बंद कर दिया और दूध भी देना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से वो बहुत दूषित आहार होगा पशु के लिए, तो ऐसे खाना खिलाने से परहेज करें।
0: यानी कि जैसे कि हम मनुष्य साफ सुथरे जो भोजन करते हैं उसी तरीके से उन्हें भी वो जो चारे या फिर जो भी अनाज आप देते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, और नहीं तो उनके प्रोडक्शन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब, देखा गया कि बीमारियों के बारे में मैंने कहा कि जैसे ही बाढ़ जाते हैं तो बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं, हैजा,

0: कोलरा वगैरह जो जो जो मनुष्य जिससे प्रभावित हो जाते हैं, तो पशुओं की बात हो रही है, तो पशु ऐसे में कौन से बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं बाढ़ के उपरांत?
1: देखिए, बाढ़ के बाद जो है मुख्य रूप से लीवर फ्लूक का जो वर्म है वो इस बाढ़ के पानी में तेज़ी से चारों तरफ फैलता है, लेकिन बाढ़ ख़त्म होते ही एक हेमराजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू कहते हैं और एक ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी बीमारी कहते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, यह बीमारी भी तेज़ी से फैलता है। निश्चित रूप से इस बीमारी के प्रति हमने टीका विकसित किया है। आप ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी बीमारी या गलघोटू, इन दोनों का टीका एक साथ आता है। आप बाढ़ शुरू होने से पहले, बरसात से पहले मई जून में ही इसका टीकाकरण निश्चित रूप से करा लें। अगर बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज भी संभव है, लंगड़ी बीमारी और गलघोटू का, लेकिन जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे उतना संभावना है कि पशु रिकवर कर जाएगा, नहीं तो अगर आप दो चार दिन डिले करते हैं तो ये बहुत हानिकारक होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। लीवर फ्लूक क्या है कि पानी में जो लार्वा ग्रो मतलब बढ़ता है वो बहुत सारे इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, स्नेल के अंदर, घोंघा के अंदर, चींटी के अंदर, ये सब में उसका विकास होता है और अंत में वो घास पे आके खड़ा हो जाता है लार्वा, और जब पशु खाता है तो उसके अंदर पेट में चला जाता है, पेट से लीवर में चला जाता है और लीवर को बिल्कुल प्रभावित करता है, उसके बाद पशु कमज़ोर होता है, उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो लीवर फ्लूक के लिए आप ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिजोल नाम की एक दवा आती है, बिल्कुल आप इस बाढ़ के शुरू होने से पहले भी एक बार पिला दें और दो तीन महीने बाद मतलब बाढ़ ख़त्म हो जाए उस समय भी पिला दें, क्योंकि हो सकता है कि पहले तो आप डिबर्मिंग कराए होंगे उसके बावजूद भी कुछ असर रह जाता है। निश्चित रूप से ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिजोल एक दवा है, डिबर्मिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग करें और टीकाकरण समय से करा लें। फिर होता है कुछ दिनों बाद जैसे अक्टूबर नवम्बर के महीने में FMD का भी टीका करा लें। FMD फूट एंड माउथ डिजीज है, खुरहा मुंहपका रोग से जानते हैं
0: ये जनरली जो पशुओं को होते हैं, लेकिन बाढ़ के उपरांत इसके जो होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाते हैं ना।
1: बिल्कुल, होता क्या है कि कभी कभी आप देखते होंगे पानी में मरा हुआ पशु फेंका हुआ है, मर जाता है पशु, बिल्कुल उसको डिस्पोज करने का व्यवस्था नहीं होता है, जनरली गड्ढा खोद करके उसके नीचे दबा देना चाहिए मरे हुए पशु को, लेकिन बाढ़ की स्थिति में आप देखेंगे पानी में ढेर सारा पशु मर करके बिल्कुल फेंका हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा पानी दूषित होता है और आसपास के क्षेत्रों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। कहीं भी आप देखें मरे हुए पशु को तो उसको बिल्कुल उससे अलग हट जाएं, उसको हम व्यवस्था करना चाहिए हमें उसको कि गड्ढा खोदकर उसके अंदर दाब दें। हम सरकार इस दिशा में पहल कर रही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके मृत पशु को वहाँ से हटाकर एक डिस्पोजल व्यवस्था के अंतर्गत डिस्पोज किया जाए और सुरक्षित किया जाए बाद बाकी जीवित पशुओं को। और आजकल एक और व्यवस्था पर कुछ लोग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी उस पर काम शुरू हो रहा है कि फॉडर बैंक बनाया जाए चारा का। जब सरप्लस होता है, कभी कभी प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय हम अधिक उपज को काट करके चारा को उसको साइलेज के रूप में, हे के रूप में सुरक्षित करते हैं और फॉडर बैंक की तरह स्टोर करते हैं, तो वहाँ से जब जरूरत होती है बाढ़ के समय में अभाव होता है तो हम वहाँ से खरीद करके पशु खिला सकते हैं। ऐसा देखा गया कि पिछले समय बाढ़ के समय जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ चारा का तो हम दूसरे राज्यों से चारा का आयात करवाए थे, तो ऐसी स्थिति में आप संपर्क कर सकते हैं नज़दीक के किसान से जिनके पास फॉडर बैंक हो, जहाँ फॉडर उन्होंने जमा किया हो वहाँ से भी आप सुरक्षित चारा ले सकते हैं।
0: तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी मिली हमारे जो पशुपालक भाई, हमारे किसान भाई और हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें कि कैसे बाढ़ के उपरांत पशुओं की देखभाल होनी चाहिए। बीमारियाँ सबसे ज़रूरी होता है कि उनके उन्हें बीमारियों से बचाया जाए और जब वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया आपको टीकाकरण के बारे में और इसके साथ ही यहाँ पर आहार प्रबंधन के बारे में हमने जाना। तो अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए जब भी संभावना हो बाढ़ का तो आप पहले से ही तय कर लें कि यदि पानी आता ही है तो हम बाढ़ के समय में कहाँ जा कर के शरण लेंगे। और इस समय में एक खाने के लिए बहुत अच्छा होता है स्रोत पेड़ पौधे की पत्ती। आपके घर के आसपास जामुन का, नीम का, पीपल का, नीम का पत्ती भी पशु खाते हैं, बकरी तो खूब खाती है, तो जो भी पौधा है, फल का पौधा है आपके।

0: अगल बगल में, तो उस पौधे का पत्ती भी आप पशु के लिए उपयोग कर सकते हैं चारा के रूप में। और दूसरी बात होती है कि जहां आप पशु को ले जाते हैं बिल्कुल वहां पर ऐसा ना हो कि पानी के अंदर डाले हुए हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कीचड़ में पशु को रखे रहते हैं, नहीं, अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पशु का जगह बदल दें। एक आज यहाँ डाले, कल थोड़ा अलग हटा के डाले, एक ही जगह पर पानी के अंदर बहुत देर तक खड़ा रहने से खुर के बीच में भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, फिर वहाँ पर घाव होता है, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, उसमें लेमनेस नाम की बीमारी आती है। तो आप बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए आप एक जगह सुरक्षित कर लें, वहाँ पशु को रखें, और कभी कभी सूखा क्षेत्र का अभाव हो तो पशु का जगह बदलें और साफ ताज़ा पानी से उसको रोज़ स्नान कराएं। होता है कि गंदे पानी में बैठा रहता है और लगातार 3-4 दिन तक पशु को देखेंगे एक खुट्टा में बंधा हुआ है। आप ये ना करें कि पशु को ज़बरदस्ती कहीं पर एक ही जगह पर बांध करके रखें। यदि दूसरी जगह भी है तो आप उतना सूखा नहीं रख सकते हैं, तो पशु को थोड़ा जगह बदलते रहें और साफ स्वच्छ जगह में रखें।
1: तो आप सभी ने सुना श्रोतागण कि पशुओं को साफ स्वच्छ जगह में रखें। अगर आप एक जगह बांध कर रख रहे हैं और वहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है तो उस जगह से अपने पशुओं को हटा दें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस दिख सकते हैं उस समय। और डॉक्टर साहब, आपने विस्तार में इसकी जानकारी दी हमें बाढ़ के उपरांत पशुओं की देखभाल कैसी करनी चाहिए। डॉक्टर अमित कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो श्रोताओं और हमारे किसान भाइयों, साथ ही पशुपालक भाइयों, आप सभी से एक बार फिर मैं वादा करती हूँ कि फिर से आप सभी के लिए एक नए विषय के साथ हाजिर रहूंगी। 90.8 FM ग्रीन सुनते रहिए, और हाँ बिल्कुल उन्नत कृषि कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास न करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
2: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
1: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
3: राम सिंह?
4: हाँ।
3: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
4: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
3: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
4: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
3: हाँ,
4: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
3: हाँ,
4: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
3: हाँ, जल्दी चलो।
4: हाँ,
3: उन्हें बता देते हैं।
4: हाँ। जय हिंद सर।
5: जय हिंद राम सिंह।
4: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
5: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है?

0: समझा। सुनो।
1: जी सर।
0: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
0: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
1: जी सर।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाए। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे।
0: लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए।
1: अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया।
0: अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के

0: बहादुर सिपाहियों, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे।
1: साहब, वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
2: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
1: जी साहब।

0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थीं। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूँ असले का। फायर! उधम सिंह
3: जी सर,
2: एलएम जी संभाल, छोड़ फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा,
4: सर यही मशीन गन।
3: हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर,
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
4: जल्दी करो।
3: जी सर, बांध दिया सर, ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध
3: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर,
3: भारत माता की जय, भारत माता की जय।

0: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
1: संभल कर
2: सब यहाँ सर टिका लीजिए
1: सर।
3: कालिका माता की जय।
4: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
3: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
4: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
3: साथियों, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
2: साहब,
3: तुम लोग आगे निकलो।
1: ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
3: नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
3: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब, नहीं, आदेश।
3: इट्स एन ऑर्डर
1: सर।
3: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
0: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांगला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
4: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
5: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
4: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साएं साएं चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।

अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शमाइला परवेज, बावला कोचर, आर एस रघु और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्श विमलेश चौधरी और वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहायक अमित कुमार, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई

और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करे। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बाढ़ के

दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांधकर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त

0: ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ 90.8 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु को और किसान भाइयों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और वैसे तो पता है किसान भाइयों आप सभी को कि हम इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ अलग अलग रंग यानी कि अलग अलग विषय और उन पर अलग अलग चर्चाएं। तो आज भी कुछ खास बातें आप सभी के साथ हम करने जा रहे हैं। इस खास और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनिता कुमारी, वैज्ञानिक गृह विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और किसान भाइयों, आप सभी को पता है मशरूम उत्पादन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो गया है हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो मांग है वो बाज़ार में बढ़ती जा रही है और इसके फ़ायदे भी हैं। इसके खाने से बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं हमें। और जहाँ तक बात होती है इसके उत्पादन की, तो आप सभी को पता है कि इसमें जो भूमिहीन किसान है हमारे, वो भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। वो एक कमरे में ही इसका उत्पादन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लाभ कमा सकते हैं आर्थिक स्तर पर। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है इसका मूल्य संवर्धन, यानी कि मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैम, सबसे पहले हमने कहा कि मूल्य संवर्धन यानी कि मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में जाना है हमें, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि मशरूम का मूल्य संवर्धन क्यों ज़रूरी है।
1: मूल्य संवर्धन इसलिए ज़रूरी है कि मशरूम जो है उसका उसमें नमी की मात्रा काफ़ी होती है, लगभग 90% नमी होती है। यदि हम उसके कुछ मूल्य संवर्धित उत्पाद बना लेते हैं तो उससे न केवल उसका लाइफ बढ़ जाता है बल्कि उत्पादक को उचित मूल्य भी मिल सकता है। और जो मूल संवर्धन की हम बात कर रहे हैं, तो जो ही हम मशरूम की तुराई करते हैं तो तुराई से लेकर उसका ग्रेडिंग करने एवं खाने के लिए तैयार तथा पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ तथा विभिन्न स्तर पर इसका मूल्य संवर्धन हम लोग कर सकते हैं।
0: तो ये बात हो गई मैम कि जैसे उसके तुड़ाई के बाद ही मूल्य संवर्धन इसका किया जा सकता है। और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए।
1: मूल्य संवर्धन जैसे तुराई के बाद से हमारा शुरू होता है, मान लो कि साइज अलग अलग है, तो हम लोग यदि एक साइज के मशरूम को एक साथ करें, पहले तो हम उसका श्रेणीकरण करेंगे, यही आप हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं कि यदि हम एक साइज के मशरूम को एक साथ पैकेटिंग करेंगे तो हमको मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, जब मशरूम की तुराई करते हैं तो कुछ मशरूम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इस आधार पर भी हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं कि जो ज़्यादा मैच्योर है मशरूम उनको एक साथ कर दें, जो नॉर्मल है उनको एक साथ कर दें। तो इस तरह से ये सब हम तुराई उपरांत इस तरह की मशरूम श्रेणीकरण कर सकते हैं। ये भी एक स्टेप है हमारा मूल्य संवर्धन का। इसके बाद हम उसके विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर, जैसे ऐसे मार्केट में हम मशरूम को बेचें और उसके विभिन्न तरह के उत्पाद बना के बेचें तो हमको मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, प्लस जो ऑफ सीजन है जिस वक्त वो उपलब्ध नहीं रहता उस समय भी हम उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है।
0: यानी कि जब मशरूम का मूल्य संवर्धन कर दिया जाता है तो उसके बाद उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा अच्छी कमाई होती है उनकी। तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने मैम। और इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे कि मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पाद क्या क्या हैं, उन्हें भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: ऐसे यदि हम बात करें तो हमारे देश में जो अभी जो मूल्य संवर्धित उत्पाद जो मुख्य रूप से मार्केट में है वह मशरूम का सूप पाउडर है, लेकिन बहुत तरह के उत्पाद तैयार हैं जिसको कि मार्केटिंग मार्केट में लाया जा सकता है, उसके प्रचार प्रसार किया जा सकता है। जैसे आपका मशरूम आधारित बिस्किट, बड़ी, मुरब्बा, नूडल्स, कैंडीज, ये सब भी हम इसके मार्केट में इसको ला सकते हैं और व्यापक प्रचार

0: प्रसार कर सकते हैं। और हम जो भी सोच सकते हैं, मशरूम के हर तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो अचार की हम बात करें या हम केचप की बात करें, हम सारा चीज़ हमारा मशरूम का मूल्य संवर्धित उत्पाद बनता है।
1: तो ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे तो मशरूम हम अगर ऐसे ही खाते हैं सब्जियों में इसे बनाकर तो काफ़ी टेस्टी लगता है, और इसके आपने उत्पाद भी बताए जैसे कि अचार, मशरूम सूप और मशरूम बड़ी। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सुखौता भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इसका, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुखौता कैसे बनाया जाए, अगर हमारे किसान भाई और महिला किसान इसे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएं?
0: ऐसे तो जो जनरली किसान मशरूम का सुखौता बना रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको मशरूम की तुराई उपरांत तो उसे सीधे धूप में सुखा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनका काला होने की संभावना रहती है और मार्केट में उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। लेकिन यदि कुछ तकनीक उसमें वो ऐड कर देते हैं तो उन्हें मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा। जैसे कि एक विधि में आप हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि मशरूम को तुराई के बाद उसको एक मिनट के लिए ब्लांच कर दें।
1: अच्छा, ब्लांच,
0: उसके बाद फिर इससे भी, और ब्लांच करने के बाद फिर उसको एक बर्तन में पानी रखें जिसमें कि 0.2% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एवं 5 ग्राम साइट्रिक एसिड उसमें का घोल बना करके उसमें रखें और उसमें उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसको निकाल करके एक जाली जैसा रखिए, जाली पर वो मशरूम को निकाल के डाल दीजिए ताकि उनका जो अतिरिक्त पानी है वह निकल जाए। हल्का हल्का उन्हें दबाएं, उसके बाद फिर उन्हें आप धूप में सुखा दें। और सुखाने के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें धूल कर नहीं पड़े, और बेहतर होगा किसी पतले बिल्कुल सूती कपड़े से उसको ढक के सुखाएं। यदि इससे भी अच्छा रिजल्ट हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं तो फिर उसको कंडीशनर सन ड्राइंग करें, अर्थात यदि हम 3 घंटे धूप में दे रहे हैं तो कुछ देर के लिए आधा घंटा के लिए उसको छांव में दे दें। तो इसमें क्या हुआ कि कभी कभी सुखौता में ऊपर क्रैकिंग आ जाता है, तो वो क्रैकिंग
1: ज्यादा धूप से
0: तो वो किसान भाई उसमें क्रैकिंग नहीं आएगा और आपका उत्पाद ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि ये अलग अलग तरह से हम सुखा रहे हैं तो फिर हमारा उसमें मेहनत बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, आप जिस ढंग से आपको सुखाएंगे, जिस ढंग से आपको कीमत मिलेगा, उस ढंग से आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो स्वाभाविक है आपको कीमत मिलेगा। और आप यदि इसको मार्केटिंग में समस्या आती है तो आप सब तरह के सुखौता बना के रखें, जो आपको मैंने कई बताया कि ये करें, और आप उसके अनुसार उसमें मार्केट प्राइस रखें कि मान लीजिए जिनको कि कम दे सस्ता में लेना है तो आप जो सीधे सुखाते हैं वो भी उनको दे सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में है चमत्कार को नमस्कार, यदि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपना कर देखें, आपके सुखौता में काफी मार्केट आपको अच्छा मिलेगा।
1: यानी कि मशरूम का जो सुखौता है वो इस पर निर्भर करता है कि आप धूप में उसे किस तरीके से सुखा रहे हैं, और उस हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, और अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो बाजार में इसके मूल्य भी आपको अच्छे मिलते हैं। और इसके बाद मैम जानना चाहेंगे हम इस चटपटे मशरूम के अचार के बारे में कि इसे कैसे बनाया जाता है।
0: मशरूम का अचार का भी मार्केट उपलब्ध है, यह भी काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसकी अचार बनाने के लिए कई विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, और उससे आप 3 तरह की मुख्य रूप से विधियां हैं जिसे कि आप इसका अचार बना सकते हैं। और उसमें अलग अलग सामग्री है, जैसे कि एक विधि है इसमें आप मशरूम लीजिए 1 kg, काली सरसों पाउडर 35 ग्राम, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 10 ग्राम, जीरा पाउडर 15 ग्राम, सौंफ पाउडर 15 ग्राम, मंगरेला 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, तेल 200 ml, नमक 90 ग्राम और एसिटिक एसिड 2.5 ml।
1: अच्छा,
0: तो ये सारे सामग्री को आप तैयार कर लें। इसके बाद मशरूम को थोड़ी देर के लिए ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसे 0.05% KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट एक रसायन आता है उसके घोल में थोड़ी देर के लिए उसको रख दें, लगभग 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसे ठंडे पानी में 2 से 3 बार धो करके और उसको रात भर 10% नमक में डालकर छोड़ दीजिए।
1: अच्छा, अच्छा नमक में क्यों डालना है मैम इसे?
0: नमक में इसलिए डालते हैं कि जो हमारा एक प्रक्रिया होता है जिसको कि साइंटिफिक वर्ड में कहें तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होता है, तो वो उससे हमारा किसी प्रिजर्वेशन का या परिरक्षण का एक तकनीक है कि जैसे हमारी गांव की महिलाएं इसका अचार बनाती होंगी
1: आम का,
0: उसमें भी है जो हम लोग उसको हल्दी और नमक के साथ उसको 2-3 दिन तक छोड़ते हैं, बस वही प्रक्रिया है जिससे उसके अंदर का जो पानी है वह बाहर निकलता है और नमक वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंटर करता है, ठीक है। उसके अगले दिन जो उसका पानी निकलता है उसको हटा देंगे, और फिर जो आपका नमक तेल और हल्दी मसाला

0: वाला सारे मिला करके अंत में उसमें एसिटिक एसिड मिला देंगे, और ये इस अचार को फिर हम लोग खा सकते हैं। और यह जो है मुख्य रूप से बटन मशरूम का अचार बनाने की विधि है। और जनरली ऐसे हम लोग बटन मशरूम का अचार नहीं बनाते हैं, क्योंकि बटन मशरूम का ऐसे ही मार्केट काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ तक कि उसको यदि हम KMS सॉल्यूशन से ट्रीट कर दें तो उसका मार्केट 10 दिन तक बढ़ सकता है। तो इसके यदि आपको मूल्य संवर्धन के लिए जाना है तो मुख्यतः आप ऑयस्टर मशरूम का अचार बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का मार्केट बहुत अच्छा फ्रेश मशरूम का नहीं है, क्योंकि उसका गुण जो कीपिंग क्वालिटी है वह काफ़ी कम है। एक दिन में ही ऑयस्टर मशरूम को यदि हम नहीं बेच पाते हैं तो वह खराब होने लगता है। तो इसलिए अचार यदि बनाना हो तो ऑयस्टर मशरूम के लिए ही हम आपको प्रीफर करेंगे ऑयस्टर मशरूम का अचार बनाएं।
1: वैसे अचार बनाने की विधि मैम आपने बताई तो मुंह में पानी आ जाता है सभी के, क्या अचार बनाने की दूसरी विधि भी है?
0: हाँ, इसकी अचार बनाने की दूसरी विधि भी है। इसमें आप हम मशरूम को 250 ग्राम लेंगे, जीरा पाउडर 2 चम्मच, मेथी पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सरसों पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सिरका 100 ml, या फिर सिरका ना हो तो एसिटिक एसिड 10 ml, और नमक 400 ग्राम नमक लेंगे हम 40 ग्राम। और ऐसे किसान भाइयों बहनों ये चीज़ ध्यान रखिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप वैरी भी कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 भी कर सकते हैं,
1: क्योंकि मतलब
0: नमक
1: स्वादानुसार
0: डाल सकते हैं। और फिर सरसों तेल उसमें डालेंगे 200 ml। अब ताजे मशरूम को अच्छे से पानी में धो लीजिए, उसको ये ऑयस्टर मशरूम का बनाइए इस विधि से। उसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि बड़े उसके जो पंखुड़ी है वो बड़े हैं तो आवश्यकता अनुसार उसको टुकड़े में काट लें। और ऑयस्टर मशरूम का कोई भी प्रोडक्ट बनाइए एक चीज अवश्य ध्यान रखिए, उसको थोड़ा देर गर्म पानी में छोड़ करके निचोड़ करके उसके पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वो प्रक्रिया हम लोग यहाँ भी करेंगे, उसको पानी से निचोड़ देंगे, उसके बाद जो उसको आवश्यकता अनुसार साइज में काटेंगे। उसके बाद जो तेल है 100 ml 200 ml तेल जो हम लोग लिए हैं तो 100 ml तेल को कढ़ाई में गर्म करेंगे, और उसके बाद मशरूम को उसमें डाल देंगे गर्म तेल में। अच्छा। और तब तक उसको भूनते रखेंगे जब तक कि उसका जो 3/4 पानी जो है मशरूम का वो सूख ना जाए, है ना, क्योंकि मशरूम में आप जानते हैं 90% पानी रहता है। अब इस तले मशरूम को अलग बर्तन में हम रख लेंगे, और बाकी जो बचे हुए मसाला हैं उन्हें भी हम लोग तेल में डाल करके थोड़ी देर भूनेंगे, और उसके बाद उसमें मशरूम भुने हुए मशरूम को और मसाले को एक साथ मिला करके वर्तमान में बोयाम में रख देंगे, और उसमें ऊपर से एसिटिक एसिड या सिरका जो भी हम लोग परिरक्षक के रूप में रखते हैं उसको डाल देंगे, और यह अचार आपका दूसरे तीसरे दिन से ही खाने योग्य तैयार हो जाएगा।
1: तो मैम यहाँ पर विधि के बारे में बात हो गई, और सामग्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हम आम का अचार बनाते हैं उसी तरीके से सामग्री इनमें भी जरूरी होती है।
0: हाँ, बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि सामग्री आप अपने अनुसार जो आप अचार बनाती हैं बिल्कुल देखिए प्रोसेस भी लगभग आपका वही सही है, वही उसी तरह से है, सिर्फ आपका नाम बदल जाता है कि हम वहां पर आम ले रहे हैं तो यहाँ हम मशरूम ले रहे हैं। और एक चीज जैसे कि मशरूम का हम अचार बनाते हैं तो यह इसमें एक तरह का यह फंगस है, खाने योग्य कवक है, तो हम लोग को थोड़ी यह ध्यान देने बहुत ही ध्यान एहतियात से हम ध्यान देते हैं कि इसमें किसी तरह का और दूसरा संक्रमण ना हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं, नहीं तो संक्रमण होने की संभावना रहती है। और ऐसे ऑयस्टर मशरूम को 6 महीना तक इसका जो अचार बनता है उसको 6 महीना तक आप प्रयोग करें।
1: अच्छा।
0: और वो भी बीच बीच में आप धूप दिखाते रहें, उसके आगे व्यवहार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हम लोग साल भर भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि 6 महीने तक हम लोग प्रयोग करें। और अचार में एक और सावधानी रखें कि जिसे आप अचार बनाती हैं तो जो मैन वर्तमान है जो जिसमें भंडारित करके रखी है उसको डेली यूज में ना रखें। यदि डेली यूज के लिए आपको अचार निकालना है जब मन तब आप जिससे निकाल रहे हैं तो वो उससे थोड़ा अलग बर्तन में निकाल लें, और उससे फिर आप निकाल के डेली यूज करें, और उसमें कभी भी भीगा चम्मच ना डाल दें, भीगे हाथ ना डाल दें, हाथ तो किसी भी रूप में भीगा सूखा डालें ही नहीं, चम्मच जब भी डालेंगे तो वो सूखा चम्मच ही डालें, और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार खराब नहीं होगा। और यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका अचार में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, किसी अनप्लीजेंट कोई गंध आ रहा है, या कुछ आंख से कुछ उसमें ग्रोथ दिख रहा है, तो उसको ना खाएं तो बेहतर होगा।
1: तो यहाँ पर मैम ने अचार के बारे में बताया, आप सभी को सामग्री बताई और साथ ही विधि भी बताई। तो आप इसे सिर्फ घरेलू यूज में ही नहीं, अपने घरेलू किचन में ही नहीं, बल्कि आप इसे मार्केट में ले जाकर इसे बेचकर अच्छे फायदे आर्थिक स्तर पर

0: पा सकते हैं। इसके बाद मैम, अगर हमें कमज़ोरी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि मशरूम सूप पिया करो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे हम कैसे बनाएं?
1: मशरूम का सूप यदि ऐसे घर में फ्रेश मशरूम का बनाना हो तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि आप उसका पाउडर बना के रख सकते हैं तब थोड़ी तकनीक है। जैसे यदि आप डॉक्टर कह रहा है कि आपको कमजोरी है, आपको सूप पीना चाहिए, तो कुछ नहीं, मशरूम को लीजिए। ये इसके लिए फिर मैं कहूँगी ऑयस्टर मशरूम लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ऑयस्टर मशरूम को थोड़ी देर गर्म पानी में रख के 10 मिनट तक गुनगुने पानी में उसको निचोड़ करके उस पानी को निकाल दें। इसके बाद जो भी मौसमी फल सब्जी सब्जी या फिर पत्तीदार सब्जियां, फल नहीं पत्तीदार सब्जियां और सब्जी जो भी आपको मिल रहा है, टमाटर ये वगैरह सबों को काट करके प्रेशर कुकर में डाल के उसको धीमी आँच पर बॉयल करें, ठीक है। उसके बाद उसको धीमी आंच पे बॉयल करने के बाद उसको निकालें, और जब ठंडा जाए तो उसको इस छन्नी से छान लें, और उसमें आप स्वादानुसार आप जीरा पाउडर, काली नमक, नींबू, अब आपके स्वास्थ्य क्या परमिट करता है, बटर परमिट कर रहा है तो वो डालिए, और फिर उसको आप गरम गरम ही पी लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और वो जो स्ट्रेन करके छन्ना करके जो वो सॉलिड बना, उसका भी आप आटे के साथ मसल के उसकी रोटी बना सकते हैं,
0: या फिर सब्जी वगैरह बनाएं तो उसमें डाल,
1: उसका सब्जी बना रही है तो उसमें सब्जी में भी डाल सकती हैं। उसको फेंकिए नहीं, उसको किसी न किसी रूप में उसको प्रयोग में ले आइए। और यदि आप मशरूम का पाउडर बना के संरक्षित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मशरूम का सुखौता, जिसे आपको बताया मैंने, मशरूम का सुखौता बनाकर उसका पाउडर बना लें, और
0: मतलब वही प्रोसेस पे होगा सुखौता बनाने का, और उसे बस पीस लेना है।
1: हाँ, उसको पीस लेना,
0: मिक्स कर
1: पीस लेना है, उसका पाउडर बना लें, और पाउडर का 15 ग्राम लें, कॉर्न फ्लोर या फिर जो मक्का होता है उसका छिलका हटा के जो उसका आटा होता है वो आटा ले लें, दूध पाउडर ले लें, कॉर्न फ्लोर 5 ग्राम लेंगे, दूध का पाउडर लेंगे 50 ग्राम, रिफाइंड 4 ग्राम, नमक 10 ग्राम, जीरा पाउडर 2 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, चीनी 10 ग्राम, अजीनोमोटो 2 ग्राम, और इस ये सारे चीज़ को आप पाउडर बना लें। जो जितना चीज़ है सारा चीज़ को पाउडर बना के, जो मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च है, ये सब का पाउडर बना लें। इसके बाद सारे सामग्री को एक साथ, सारा सामग्री सूखा है आपको, सबको एक साथ मिला करके पॉलीथीन की थैली में उसको पैक करके सूखे स्थान पर भंडारित करें जहाँ नमी ना हो, और फिर इसे आप जब आवश्यकता हो तो पानी गर्म करें, और गर्म पानी गर्म करने के बाद उसमें आप इसे मिला करके थोड़ी देर पकाएं और उसको गर्म गर्म इसका प्रयोग करें।
0: वैसे तो सूप काफ़ी अच्छा लगता है सभी को पीना, लेकिन मशरूम में बहुत सारे ताकत भी हैं, इसके बहुत सारे गुण भी हैं, अगर आप पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भी आप इसकी लत लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है उनके स्वास्थ्य के लिए। और मैम, जब बात आती है, आजकल देखा जा रहा है मार्केट में मशरूम बड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और लोग इसे खरीद रहे हैं, घर में इसकी सब्ज़ी बनाकर खा रहे हैं, और इसके जो फीडबैक हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि मशरूम बड़ी कैसे बनाएं हम?
1: मशरूम बड़ी बनाने के लिए भी, जैसा कि अनु मैंने पहले ही कहा कि जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी उत्पाद हैं, मशरूम का हर चीज़ संभव है। बस एक जो मोटा लाइन दिमाग में डालना है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका जो मुख्य जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट है, उसके मात्रा के अनुसार हमें मशरूम वहाँ पर डालना है। दुनिया में जितना प्रोडक्ट है हर चीज़ मशरूम का बनता है, ये किसान भाइयों आप समझ लीजिए, तभी हम मशरूम को बिल्कुल घर घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम कोई प्रोडक्ट हम खाना चाहते हैं, जानेंगे नहीं इसका क्या बनता है, तो फिर हम नहीं उसको अपने डेली यूज में ला पाएंगे। तो आप यही, यदि आपको नहीं भी समझ में आता कुछ इसका ये कैसे बन सकता है, तो उसका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ जो बनता है वो बस उसका जो पारंपरिक इंग्रेडिएंट उसको हटा करके आप मशरूम डाल दीजिएगा, वो प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। इसी तरह जैसे बड़ी हम किस चीज़ का बनाते हैं, दाल का बनाते हैं मुख्य रूप से, तो बस आपको क्या करना है, दाल के डालना ही है, दाल के साथ साथ थोड़ा मशरूम को भी मिला देना है। मशरूम दाल के पाउडर को जैसे मिलाते हैं, दाल के बेसन को जैसे मिलाते हैं, उस जगह पर उस इंग्रेडिएंट में आपको मशरूम को भी ऐड कर देना है। तो इसमें सामग्री में आप मशरूम का पाउडर लेंगे जो कि मोटा थोड़ा होगा, ये दरदरा मोटा होगा, वो 100 ग्राम लेंगे। उड़द दाल या मिक्स दाल या जिस दाल को भी आप पसंद करते हैं उस दाल को भी मोटा पीस लेंगे, वो 80 ग्राम लेंगे। नमक 2 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 1 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम।

0: और इस ये सारी सामग्री को आप एक एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर जैसे कि आप मशरूम का पाउडर है और बेसन है, किसी भी दाल का जो आप बेसन लिए हैं उसको खूब अच्छे से मिला लें, और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद पानी डाल करके उसको अच्छे से गूँथ लें। ठीक है, उसके बाद ये जो गूथेंगे वो बिल्कुल जैसे कि आप मालपुआ बनाते हैं तो कैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो उस टाइप से, या फिर जैसे आप जनरल बड़ी बनाते हैं उस टाइप से भी गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए कि हम इसको यदि सूखने के लिए डालेंगे एक शेप बना करके वो भर के नहीं। तो आप बड़ी जैसे जनरल बड़ी बनाते हैं उसी तरह इन सारे सामग्री को मिला करके आप पेस्ट बना लें। ठीक है, और पेस्ट बना लेंगे और फिर खूब अच्छे से बहुत देर तक इसको फेंटना पड़ता है, वो जैसे आप जनरल बड़ी को भी हम बहुत देर तक फेंटते हैं। फेंटने के बाद उसको एक पानी रखते हैं, पानी में उसको डालते हैं, यदि डाल वो ऊपर चला आता है पानी में तैरने लगता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो आटा है, जो हमारा घोल है, यह तैयार हो गया। वह कार्यक्रम आप इसमें भी करेंगे, खूब अच्छे से उसको फेंटिएगा। जब आपको लगेगा कि यह तैयार हो गया तो फिर उसमें जो आप मसाले हम बताए हैं उस मसाले को, और आप अपने स्वाद अनुसार और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो सब भी आप और मसाले को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप मसाला और नमक को ऐड कर दें और फिर आप इसको गोल गोल इसका बना करके, या तो आप धूप में सुखा सकते हैं, या फिर आपके पास यदि कोई ओवन वगैरह है तो उसमें भी आप इसको सुखा सकते हैं। सुखा करके फिर आप इसको जैसे जनरल बड़ी को भंडारित करते हैं उस तरह से इसको पॉलिथीन में पैक करके वायुरुद्ध पात्र में इसको भंडारित करें और इसको समय समय पर प्रयोग करें। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जो भी मौसमी सब्जी है इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, मौसमी सब्जी है जैसे
1: मिला सकते हैं
0: उसको भी इसमें आप मिला सकते हैं, उसका पाउडर लेके मिला सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि फ्रेश है तो उसको पीस के मिलाएंगे तो फिर पानी हम लोग उस अनुसार से डालेंगे कि ताकि यह गीला नहीं हो जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो आपका यह बड़ी और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा।
1: तो मैम आज आपने मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि कैसे बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज हमें स्वादिष्ट जानकारी मिली है। मैं भी चाहूँगी कि आपने जैसे भी विधि बताई है और इस मूल्य संवर्धित उत्पाद को खरीदने तो नहीं जाऊंगी लेकिन हाँ बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगी, और हमारे किसान भाइयों और हमारी महिला किसानों से भी मैं अनुरोध करती हूं कि वो भी मशरूम के इन मूल्य संवर्धित उत्पादों को बनाने की तैयारी करें और कहीं ना कहीं आपको बाज़ार में और अच्छी वैल्यू इसकी मिलेगी और अच्छी कमाई भी आपको आर्थिक स्तर पर मिल सकती है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सभी से किसान भाइयों मुलाकातें होती रहेंगी और ऐसे ही चटपटे स्वादिष्ट और अलग अलग जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है।

0: जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
3: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से, अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: बाढ़ के दौरान सावधानी ही सुरक्षा है। पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी, नदी, नहर और गड्ढों के पास अकेले न जाने दें। बहते पानी में जाने का प्रयास न करें और टूटे बिजली के तारों से दूर रहें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, बल्कि समय रहते उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी की व्यवस्था रखें। बाढ़ से जुड़ी प्रशासन चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से सहायता लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
12: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद।
3: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है, और यहाँ उपज

0: है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए, लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कई जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांची टॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
1: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुंचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है, और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सिगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है, और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंची टाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है ये, जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुँचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक।

0: दवाओं का प्रयोग करेंगे तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं। और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ही रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा? लक्षण इसका जैसे पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग्र रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, स्यूडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाली अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे? तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने विपूर में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या ट्राइकोड्रमा आप ले सकते हैं, बायो एजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायो एजेंट में ट्राइकोड्रमा लेंगे तो ट्राइकोड्रमा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायादार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायादार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर ट्राइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफ फफूद होता है या सूत्रकृमि होता है, इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है।

0: आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान ख़त्म कर देता है, तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है, यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अगूठा रोग हो या पनामा रोग हो, सब एक ही तरह के हैं। तो ये फफूद जनित रोग है जो फ्यूजियरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया, वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है, वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूद की तरह से। तो फफूद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण, ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसे बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये 2-3 घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूद वाला रोग है जिसे हम पनामा विल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है, इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल विल्ट जो होता है केला में, ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं, तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो विल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में, वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उगठा रोग का लक्षण दिखाई देगा, और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: हैं। जी जी जी, वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे, जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर

0: गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है, जिसे हम सीगाटो का रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे, और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है। इसमें हम किसी स्टिकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटों का उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया, और किसान भाइयों एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है, पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता
1: है। तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया, तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटो का, ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर ये वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर तने के ऊपर इस तरह से जो ऊपर भाग होता है ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है, तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है क्योंकि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बर्ड रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
1: कापर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्ष होता है उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है, जिससे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है, तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवा के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव 2 बार कर देंगे तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने, और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को

0: को समझें, इसे अपनाएं और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा और सुनते रहें उन्नत कृषि। उन्नत कृषि
1: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कानपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से?

तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं, और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज जरूरत इसलिए पड़ गई है कि

0: सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिए, रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। अगर बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं, या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी,
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज को जो है, ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपनी खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम,
0: बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पे पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
1: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाए। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर, और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा।

0: बिल्कुल,
1: यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा मैम। तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को, मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। तो जीवामृत कहाँ से आएगा? तो जीवामृत का घर कहाँ है? तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है? जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं? तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं, वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं। और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉयल है, वहाँ का सॉयल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़, ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
0: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम, कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पोर्शन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं, तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
0: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जब मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें हो जाती है मैनेज। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
1: थैंक यू मैम।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड

रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350-400 ग्राम बीज और 20-25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फास्फोरस, 40-60 किलोग्राम पोटाश, 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1-2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800-1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फास्फोरस और 40-50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300-350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10-15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20-25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में। और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी

0: दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
1: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
0: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
1: जी,
0: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए जरूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि। ये सब है, जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना?
0: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरकुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में आया हुआ हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। आज मैं अनुषा दीदी से पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। तो अनुषा दीदी, आप ये बताएं कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाते हैं और पोषण तत्वों को शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। पोषण को
0: हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं?
1: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। सभी पोषक तत्व शामिल करें। अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट

0: प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन को शामिल करें। पानी पीते रहे, शरीर के कार्यों के लिए पर्याप्त पानी पिए, जंक फूड से बचें, शक्कर, नमक और वसा वाले प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, नियमित भोजन समय पर भोजन और स्वास्थ्य स्कीम चुनें। इस प्रकार पोषण आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
1: जी दीदी, ये तो हो गई, हम पोषण को प्राप्त कर लिए। अगर दीदी कोई दवाई ना ले, दवाई के अलावे पोषण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग कर सकता है?
0: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए संतुलित आहार अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फलियां और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, जैतून का तेल शामिल है।
1: जी दीदी, अगर आदमी को अगर सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या परेशानियां हो सकती?
0: ना हो तो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है। शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं।
1: जी दीदी, महिलाओं को पोषण से संबंधित क्या उपयोग करनी चाहिए?
0: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें आयरन से बचाव के लिए कैल्शियम हड्डियों के लिए और फोलिक एसिड प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है, खासकर गर्भावस्था और मानसिक धर्म के दौरान, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
1: जी दीदी, तो बच्चों को आप पोषण के लिए क्या सुझाव देना चाहते?
0: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, अंडा, दाल, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
1: जी दीदी, इन सभी बातों में मैंने एक चीजों को बार बार नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीन प्रोटीन नाम का वर्ड आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण श्रोता लीन प्रोटीन वर्ड को नहीं जानते हैं, तो लीन प्रोटीन आखिर क्या होता है दीदी?
0: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को खास रख रखाव में मदद करता है।
1: जी दीदी, तो इसी प्रकार से हम पोषण को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अभी अनुसार रंजन दीदी ने बताया, और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज एक मुहिम भी चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो दीदी, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में?
2: आप अगर
1: अपने घर के आसपास ही कोई क्यारी लगाते हैं जिसमें कि आप फल सब्जी अपना उपजा सकें या खा सकें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, वसा वगैरह दे देती है, क्योंकि वो आपके सामने उपजा हुआ क्या कहता फल या सब्जी है जो कि पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक होती है। तो इनमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज सभी ग्रामीणों को भी सहायता करती है, और आप लोग भी ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्यारी अपनी थाली, मतलब कि अपने घर में ही कोई क्यारी लगाता है और वो अपने क्यारी से ही फल सब्जियों को अपने खाने के रूप में उपयोग करता है तो कैसा रहेगा?
0: बहुत अच्छा रहेगा, ये करना हम सभी को करना चाहिए कि अपने पास जो भी थोड़ा जगह हो उसमें कुछ भी ना कुछ लगाए, जिससे कि हमें प्रोटीन, कुछ भी पोषक तत्व आसानी से मिल सके।
1: जी दीदी।

0: करती है। धन्यवाद दीदी।
1: बाढ़ का पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी नदी नहर और गड्ढों के पास अकेले ना जाने दें। बहते हुए पानी में पैदल या वाहन से जाने का प्रयास ना करें। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आए भोजन को खाने से बचें। बिजली के टूटे तारों और जल भराव वाले विद्युत क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। पशुओं के लिए विशेष सलाह ये है कि पशुओं को निचले स्थानों पर बांध कर न रखें। पानी बढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाएं। पशुओं

0: लिए पर्याप्त सूखा चारा और साफ पानी रखें। पशुओं को तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी में जाने से रोकें। बीमार या घायल पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
5: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
11: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी

0: आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गाँव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से डीपीएस की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से राजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, राजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करे तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVKs से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी

और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि REEE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान REEE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की REEE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्नील ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरके सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर AK शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से REEE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि REEE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे। किसान के

साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केवीके विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा। किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुँचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खास विषय को लेकर आ चुके हैं, और पिछले साल से, पिछले कुछ दिनों से हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना जो है वो हमारे साथ चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया जो पौधा है वो है तुलसी। आप देखेंगे उसके बाद से हर घर में इस पौधे को लगाया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, फ़ायदा भी हुआ इसका। तो आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ, बहुत बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। पुराने ज़माने से बात करूँ तो मैं इसकी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती थी, आयुर्वेदिक जो

0: दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती थी। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो मैं आज आपको बता दूं कि हमारा जो विषय है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती एवं विपणन। तो आज खेती के बारे में जानेंगे इसकी, क्योंकि बहुत जगह पर खेती की जा रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टि से भी आजकल। तो मैं बता दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनाथ दास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। हमारे 90.8 FM के श्रोताओं, आज जो कोरोना समय में जो महामारी चल रही है उसमें आज औषधीय पौधे का जो डिमांड है उसका महत्व काफी बढ़ा है
0: जी।
1: इसी के क्रम में आज तुलसी की खेती बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इससे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वह औषधीय सगंधीय पादप परियोजना के तहत कार्य पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में चलता है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का एक इकाई है। तो चले तुलसी की खेती। किसान भाइयों, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं उसका रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने जमाने से और गांव ग्राम से लेकर के शहरों में भी तुलसी हरेक घर के आंगन और बालकोनी का शोभा बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उसका सेहत का भी ध्यान रखता है। तुलसी मुख्य रूप से ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, मलेरिया और डेंगू में भी काम आता है। और तक कि अगर 12 पत्ते तुलसी का अगर आप च्यूइंग करते हैं एक दिन में, तो आपको वो स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है और आपका मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप जिंजर और हनी और तुलसी का पत्ते के साथ अगर काढ़ा बनाते हैं तो आपको अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, कफ और सर्दी से आपको निजात दिलाती है
0: जी।
1: अगर तुलसी के लीव्स का जो जूस और हनी के साथ अगर रेगुलरली 6 महीने तक अगर लेते हैं, तो आपको जो रेनल स्टोन जो होता है जिसको आप पथरी कहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो खत्म करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तुलसी कहती है कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं है, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण है, बहुत सारे पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध है, जैसे कि प्रोटीन उसमें उपलब्ध है, आयरन 17% है, कैल्शियम 17% है, विटामिन सी 30% है, विटामिन ए 105% है, विटामिन बी 6-10% है, मैग्नीशियम 16% है, इवन की पोटेशियम 295 mg है।
0: अच्छा।
1: और कोलेस्ट्रॉल 0 है, यानी कि इतने पोषक तत्व के रहने के कारण कोरोना में तुलसी का डिमांड और उसका महत्व काफी बढ़ा है
0: जी।
1: और इसीलिए भारत सरकार और ये खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और जिसमें कि 10,000 हेक्टेयर में खेती करने का योजना तैयार किया है हर्बल खेती के तहत। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का एक संस्था होती है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो उसमें हमारे बिहार के भी हिस्से में कुछ आने वाला है, खास करके के जो गंगा के किनारे है
0: जी।
1: बिहार के किसान भाइयों को मैं जानकारी दे दूं कि बक्सर से लेकर के भागलपुर में गंगा का जो लंबाई है 450 किलोमीटर है। तो जो गंगा के किनारे वाले किसान है वो औषधीय पौधे लगाकर खास करके तुलसी का खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं इस योजना से
0: जी।
1: अब देखें तुलसी कितने तरह का होता है
0: जी, वैरायटीज के बारे में।
1: वैरायटी हमारे किसान भाई प्रायः मुख्य रूप से तुलसी एक स्वीट वासिल कहते हैं, जिसको कि राम तुलसी आप लोग कहते हैं, या ओसिमम बैसिलिकम, और दूसरा होता है ओसिमम सैंक्टम, इसको सेक्रेट वासिल या होली वासिल कहते हैं, अर्थात क्रिस्प तुलसी इसको बोलते हैं
0: जी।
1: और इसके अलावे भी इसका सेंटेड के आधार पर यानी कि उसका सगंध के आधार पर लेमन तुलसी होता है, कपूर तुलसी होता है। तो आप इस तरह से इसका सगंध हो, औषधीय महत्व हो, इस चीज को ध्यान में आप रखते हुए आप कैसे खेती करेंगे उसके लिए आप कैसे चुनाव करेंगे ये आपको देखना है।

0: क्योंकि सीमेंट लखनऊ के माध्यम से बहुत सारे तुलसी की प्रभेद का इजाद किया गया है, जिसमें सीम सौम्या है, सीम सनिग्धा है, सीम तुरावी है, सीम अंजना है, सीम आयु है। ये सब जो चार पांच प्रभेद हैं, चाहे सौम्या हो, सनिग्धा हो, या सुरभि हो, या अंजना हो, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सब काफी इसका हार्वेज यील्ड है, इसमें काफी तेल की मात्रा होती है। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी एक वैरायटी है गैब वन, इसका भी काफी यील्ड है। और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी एक तुलसी का प्रभेद, अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पाइपलाइन में है, जो कि अंजना तुलसी से अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम है सबौर OS1, जो श्याम तुलसी का एक प्रभेद है, जो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के हर्बल गार्डन में लगा हुआ है। आप हमारे बिहार के किसान भाइयों वहां विजिट करें और वहां तुलसी का जो भी प्रक्षेत्र पर लगा हुआ है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं
1: जी।
0: अब इसकी खेती की बात करते हैं कि तुलसी की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बिहार में जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल, जितने भी तरह का सॉइल हो, चाहे रिच लोम हो या पुअर लेटेराइट हो या सलाइन सॉइल हो या अल्कलाइन से मॉडरेटली एसिडिक सॉइल हो, हर एक तरह के मिट्टी में ये तुलसी का खेती आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इसके लिए मौसम है, खास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है CRA प्रोग्राम के तहत, तो मैं आपको बता दूं ये फेयरली हाई रेनफॉल एरिया या फिर ह्यूमिड कंडीशन है, जहां की तापमान या सूर्य का प्रकाश काफी हो, हाई टेम्परेचर हो, वैसे कंडीशन के लिए तुलसी का खेती बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर तुलसी में जो ऑयल प्रोडक्शन में वो मदद करता है, लेकिन पार्शियल शेड कंडीशन में तेल की मात्रा को घटा देता है। इसीलिए जो ठंडा प्रदेश है, खासकर या गैंगटोक हो, वैसे इलाके में तुलसी की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहां शेडिंग कंडीशन रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहां तेल की मात्रा और क्वालिटी अच्छी नहीं पाए जाते। इसलिए बिहार चूंकि सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, लॉन्ग डे लाइट भी मिलता है, इसलिए आपका तेल की मात्रा काफी बढ़ेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, जब भी तुलसी की आप खेती करेंगे, आपको तुलसी का नर्सरी प्रिपरेशन पर काफी आपको ध्यान देना है कि अगर आप नर्सरी के माध्यम से अगर खेती करना चाहते हैं तब आपको ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको रेज बेस्ड सिस्टम के माध्यम से, यानी जमीन ऊपर उठा हुआ है होना चाहिए, 15x4x9 feet का बेड बना लीजिए और उसमें 200 से 10 ग्राम तुलसी का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अगर एक हेक्टेयर में आपको खेती करना है तो आपको 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज का भुरकाव कर देना है वो बेड पर। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब नर्सरी पे आप तुलसी का बीज गिरा रहे हैं तो तुलसी के साथ थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी मिला लें, और गिराने के बाद उसके ऊपर भीगा हुआ पुआल रख दें, और प्रतिदिन आपको 3 से 4 दिन सुबह और शाम में स्प्रिंकलिंग विधि से, यानी कि फुहारा विधि से उसमें पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8 से 12 दिन में आपका तुलसी का बीज का जर्मिनेशन हो जाता है
1: जी।
0: और जर्मिनेशन होने के बाद जब आपका तुलसी 6 सप्ताह का 4-5 लीव स्टेज का हो जाता है तो आप मेन प्लॉट में जाकर के आप इसकी लगा सकते हैं। लेकिन आप जब लगाएंगे खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूरी होगा 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर आप लगाएंगे, यानी कि पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब तुलसी आप लगा रहे हैं तो उस समय इमीडिएट सिंचाई करना है फुहारा विधि से, जहां तुलसी लगा रहे हैं उसके जड़ में ही पानी थोड़ा सा देना है ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए। और फिर सेकेंड इरिगेशन जब आप देने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप मुआयना करेंगे, थोड़ा सा आप खेतों को

0: बारीकी से देखेंगे कि कुछ तुलसी के पौधे अगर मर गए हों, स्वस्थ नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में आप गैप फिलिंग करेंगे
1: जी।
0: ये कंडीशन एक महीने के बाद आती है। और अब जहां तक सिंचाई की बात अगर करते हैं, तो ये सीजन और मॉइस्चर मिट्टी में जो कितना मॉइस्चर है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रायः 3 महीने पर एक सिंचाई

0: पानी का रिक्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा, तो अप्लाई जो करना है आपको पानी का, वो 3 इरिगेशन पर मंथ, 1-3 महीने पर 1 इरिगेशन आपको कर देना है। अगर जहां मॉइस्चर की कमी है वहां मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसका हार्वेस्टिंग से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जहां तक खाद की बात है कि कितना उर्वरक आप डालेंगे, तो 120-60-60 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है
1: जी।
0: तो लेकिन आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसमें कंप्लीट एनपीके की बात हम नहीं करना चाहेंगे, कि तुलसी औषधीय पौधा है, इसलिए आप इंटीग्रेटेड वे में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दें, यानी कि 50-40-30 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्लस 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो तुलसी है वो एक तरह से जैविक उत्पादन के तहत आएगा
1: जी। जी सर।
0: अब ऐसा इसमें देखा जाता है कि इसका इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या वीडिंग ऑपरेशन और अर्जिंग अब मिट्टी को चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं तो ज्यादा हवा आती है या फिर कभी कभार गलती से ज्यादा पानी अगर लग गया तो ऐसे में पौधे आपको गिर सकता है, इसलिए आपको फर्स्ट बीडिंग 1 महीने के बाद और सेकेंड बीडिंग जस्ट दूसरा महीना आपको कर देना। जब दूसरा महीना आता है तब जैसे आप आलू की खेती करते समय मिट्टी को आप चढ़ाते हैं उसी तरह तुलसी में भी आप मिट्टी को चढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग आप नहीं करेंगे, तब इसका औषधीय गुण बरकरार रहेगा। क्योंकि तुलसी हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो औषधीय पौधे होते हैं उसको इसलिए उसका महत्व रहता है कि उसके पत्ते में या उसके जड़ में या उसके फ्लावर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के चलते इसका औषधीय महत्व है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसमें बिहार के केस में ये भी देखा गया है कि लीफ स्पॉट नाम का एक बीमारी भी लगता है तुलसी के पत्ते में, धब्बे धब्बे छोटा छोटा चित्तीदार टाइप का, अगर इस तरह के किसान भाई आपके अगर तुलसी में लगा रहता है तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का दोनों मिला करके 2% सोल्यूशन प्लांटिंग के समय अगर बीमारी उसमें आ जाता है ऑन अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम अगर आपका लक्षण दिखाई देने लगता है तब 3 स्प्रे मैंको जेब का करेंगे 0.25% 15 दिन के अंतराल पर, तो आपको ये बीमारी से निजात मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप तुलसी का खेती करते हैं तो आपका अच्छा उपज मिलेगा, तब आपको उपज के क्रम में आपको हार्वेस्ट कब करना है। हमारे किसान भाइयों तुलसी में 2-3 कटिंग लिया जाता है, तो पहला कटिंग 90-95 दिन प्लांटिंग के बाद आप ले सकते हैं और दूसरा कटिंग पहला कटिंग के ठीक 65-75 दिन, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक कटिंग के बाद उसमें इरिगेशन और खाद का उपयोग करना है ताकि फिर से नया फ्लस आ सके। और हार्वेस्टिंग के समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हार्वेस्ट जो करेंगे वो जमीन से सटा के नहीं करेंगे, कम से कम 15-20 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करेंगे ताकि अगर उसका जो एस्टेबल बचा हुआ रहेगा तब फिर वो स्प्राउट करके नया पौधा फिर बनेगा, तब आप सेकेंड और थर्ड कटिंग आप ले सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर
0: साहब जहाँ तक बोलिए
1: ये तो यहाँ पर आपने बताई है पूरी नर्सरी से लेकर के ये हार्वेस्टिंग तक की बातें, और जो हमारे ये जो टॉपिक है वो है विपणन की भी बातें करनी है हमें, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी।
0: हमारे 90.8 FM के श्रोता किसान बंधुओं, ये तो अब खेती के बाद हो गई, लेकिन अभी खास करके जो औषधीय पौधे में मार्केटिंग का विपणन का समस्या से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है,
1: मुझे लगता है कि